राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम राम राम सीताराम सीताराम राम राम।

0: स्वर रंजनी कार्यक्रम में अभी आपने विपुल छाबरा द्वारा गाया राग भैरव सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपे प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और अब समय हुआ है चिंतन का। चिंतन में आप सुनेंगे सुकरात के विचार।
1: आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता सुकरात का दर्शन, आलेख डॉक्टर विजयानंद का और वाचन स्वर है नीलम मलकानिया का।
2: दार्शनिक सुकरात एथेंस यूनान में 470-399 ईसा पूर्व सोफ्रोनिक्स और आइफाइना रीति के घर जन्मे एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें पाश्चात्य दर्शन के संस्थापक और पहले नैतिक दार्शनिकों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है। सुकरात ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए उन्हें मुख्य रूप से शास्त्रीय लेखकों, विशेष रूप से उनके छात्रों और क्सेनोफोन के मरणोपरांत वृत्तांतों के माध्यम से जाना जाता है। उनके प्रिय शिष्य प्लेटो द्वारा रचित ये वृत्तांत संवाद के रूप में लिखे गए हैं, जिसमें सुकरात और उनके वार्ताकार प्रश्न और उत्तर की शैली में किसी विषय की समीक्षा करते हैं। उन्होंने सुकरातीय संवाद साहित्यिक शैली को जन्म दिया। सुकरात ने अपनी पूछताछ के तरीके और अज्ञानता को ही सच्चा ज्ञान कहा। उनके महत्वपूर्ण विचारों और दर्शनों में प्रथम है आत्मज्ञान। सुकरात का मानना था कि सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान से शुरू होता है। उन्होंने लोगों को अपने आप को जानो के लिए प्रेरित किया, ताकि आप अपने विचारों, मूल्यों, जिज्ञासाओं और कमियों को समझ सकें। दूसरा, पूछताछ का तरीका। सुकरात जाल नामक एक अनूठी पूछताछ पद्धति के लिए प्रसिद्ध थे। वे लोगों से सरल प्रश्न पूछते थे और धीरे धीरे अनुवर्ती सवालों के माध्यम से उनके तर्क में विरोधाभास उजागर करते थे। इस प्रक्रिया से व्यक्ति अपनी गलत धारणाओं को पहचान सकता था और नए ज्ञान के लिए खुला हो सकता था। उनका तीसरा तथ्य था परिभाषाओं का महत्व। सुकरात का मानना था कि स्पष्ट परिभाषाएं सार्थक चर्चा के लिए आवश्यक हैं। पुण्य और सदाचार सुकरात का चौथा महत्वपूर्ण चिंतन है। पुण्य और सदाचार सच्चा सुख, ज्ञान और सदाचरण से प्राप्त होता है। उनका मानना था कि सही काम करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है और सही काम करने से ही व्यक्ति सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। सुकरात ने लोगों को हर चीज पर सवाल उठाने और आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने परंपरा और अधिकार को सत्य मानने की बजाय स्वतंत्र रूप से सोचने पर बल दिया। राजनीतिक दर्शन पर उनका मानना था कि अच्छे शासकों को ज्ञानी और नैतिक रूप से सक्षम होना चाहिए। उन्होंने ऐसे शासकों का समर्थन किया जो जनता की भलाई के लिए काम करते थे। राजा अगर ज्ञानी, पराक्रमी, ईमानदार और सत्यनिष्ठ नहीं होगा तो प्रजा मनमानी करती रहेगी। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को अपने स्वच्छ चिंतन की योग्यता का विकास करना सिखाया। वो एक ही ईश्वर को मानते थे। उन्होंने मौलिक शिक्षा, आचार, व्यवहार पर ज्यादा जोर दिया। सोचने, सीखने, तर्क शक्ति के प्रति सभी को चिंतन करना चाहिए, ये उनका मूल विचार था। सुकरात का मानना था कि शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान पाना नहीं, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा का सिद्धांत है कि वो दूसरे को दी जाती है, परंतु जब तक उसे सच्चे मन से एकाग्र होकर ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा हवा में तिनके की भांति उड़ती रहेगी।
1: अब
0: अभी आपने जाना सुकरात के दर्शन के बारे में, और अब समय हुआ है श्री रामचरितमानस पाठ का। आज आप सुनेंगे बालकांड का 128वां भाग।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

0: द्युवाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं सार्धचतुर्वादने दृश्य श्रव्य परांतर्जालीय माध्यमेन षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतमस्य विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। विंशति प्रतिविंशतेः पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गाँवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल 10 जत्थे भेजे जाने हैं। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। अब उनकी नज़र लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussions with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
2: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
3: ऑन द 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. Union Minister Prahlad Joshi will be the new Education Minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effects. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure strict punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It'll be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the Prime Minister's Office and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Prime Minister Modi will interact with participants of the Viksit Vibrant Village Program 2026 via video conferencing this evening. Over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister. The Viksit Vibrant Village Program 2026 was organized in two phases from 4th to 30th of last month, covering 74 vibrant villages across Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. President Draupadi Murmu returned to New Delhi this morning after concluding a state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. During the visit, the president held high-level engagements aimed at strengthening India's strategic partnerships with the three European countries. The visit marked several historic milestones, including the first-ever state visit by an Indian president to Moldova and North

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय हुआ है संगीतिका का। संगीतिका में आज आप सुनेंगे अरुंधति भट्टाचार्य के गाए भजन। इनमें आज आप सुनेंगे कबीर दास, मीराबाई और ब्रह्मानंद जी की रचनाएं। तो सबसे पहले सुनते हैं कबीर दास की रचना।

आप सुन रहे हैं संगीतिका, और संगीतिका में आज सुन रहे हैं अरुंधति भट्टाचार्य के गाए भजन। आपके साथ सितार पर साते रहे हैं अकील अहमद, बांसुरी पर साते रहे हैं विनय प्रसन्ना, तबले पर संगति कर रहे हैं ऋतु मिश्रा, और हारमोनियम पर हैं दामोदर लाल घोष। सुनते हैं अगला भजन।

जो तो अभी आप सुन रहे थे संगीतिका, संगीतिका में आज आपने सुने अरुंधति भट्टाचार्य के गाए भजन। इन आपका साथ दे रहे थे सितार पर अकील अहमद, बांसुरी पर थे विनय प्रसन्ना और तबले पर संगति कर रहे थे ऋतु मिश्रा, हारमोनियम पर संगति कर रहे थे दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ, बिल्कुल सही। तो सबका सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और हम सुहाना सफ़र और मौसम हसीं, बहुत ही खूबसूरत इस गीत के बारे में कहें तो सच में ये ऐसा गीत है जब भी सुने तो मन खुश हो जाता है। सुबह की चाय के साथ मुकेश जी की आवाज़ का ये जादू मिल जाए तो दिन जो शुरुआत हम करते हैं वो और भी बेहतर हो जाती है। रास्ते में जब हम सुबह सुबह आते हैं तो पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ पौधे, हरियाली और सुबह की थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी हवा दिल में सुकून दे देती है। मैं जानती हूँ आप सभी इस वक्त बैठे होंगे अपने घर के या तो आंगन में,

स्विच ऑन कर रखा होगा और आराम से कमरे में सुकून के साथ सुबह की चाय पी रहे होंगे। भी रविवार है और रविवार को लगता है कि भागती दौड़ती जिंदगी से कुछ पल ऐसे हमें मिलें जो हमें ज़िंदगी दौड़ाए रखती है, उसे हम ऐसे पल निकालें जो सुकून के साथ हम जिएं, उन्हें महसूस करें। तो ऐसे खूबसूरत पलों को बिताने से ज़्यादा हसीन और क्या हो सकता है, बताएं आप। सुबह सुबह का सुहाना मौसम और ये हसीन नगमे, तो भाई अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं इस अगले सुहाने से मौसम से एक और खूबसूरत गीत की तरफ। तो आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग अपनी दोस्त सुषमा के साथ, और अगला गीत जो है वो है अभिलाषा फिल्म से और बहुत ही खूबसूरत गीत है। आप इस गीत को सुने फिर बताएं हमें। आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ ipradiodelhi@gmail.com। लता जी की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत,

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना अभिलाषा फिल्म से। श्रोताओं, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह देखिए, हमारा भी कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको प्रवचन दें या कुछ करें, भाई हम तो आपको सुनवाना चाहते हैं खूबसूरत गीत और आपकी सुबह के और हसीन बनाना चाहते हैं। मुझे पता है देखिए, बहुत सारे साथी चाय पी भी चुके होंगे और चाय की चुस्कियों के साथ साथ अगर खूबसूरत गाने सुनने को मिल जाएं तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है। ये देखिए अगला गीत सुरेश वाडेकर और शैलेंद्र जी की आवाज़ में, परिंदा फिल्म से।

जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे दोस्त हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे परिवार के सदस्य, उनका ये खुशी का ध्यान भी हम ज़रूर रखें। उनके ऐसी बात ना कोई कह दें कि जिससे उन्हें ठेस पहुँचे। और देखिए, सुबह सुबह अगर ऐसा करेंगे तो सारा दिन खराब होगा, और ऐसे भी कहेंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, रिश्तों को सहेज के रखें।

कहते हैं ना कि रिश्ते भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। बाकी पूरी दुनिया आपकी बात नहीं समझती, लेकिन उसी एन वक्त पर जो दोस्त होता है ना, वही हमारी उस बात को समझता है, वो हमें समझाता है और बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझ जाता है। तो आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने उस खास दोस्त को एक बार ज़रूर आप थैंक यू बोलिएगा। कहीं थोड़ा सा वक्त घूमने के लिए निकालें, थोड़ा बैठें कहीं पर, दिल की बात करें, मिलें उस अपने दोस्त से। क्योंकि अक्सर होता है कि हम भी जानते हैं आजकल इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है कि समय नहीं है एक दूसरे के लिए। तो थोड़ा सा समय निकालें और खूबसूरत लम्हे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बिताएँ। वैसे भी आज रविवार है और रविवार को ही अगर गेट टुगेदर हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि जो दोस्ती का खूबसूरत रिश्ता है ना, जो आपने मस्ती की होगी अपने दोस्त के साथ, उसे कभी ना खोने दें, उन ना ही खूबसूरत यादों को और ना ही उस साथ को। तो उस साथ के लिए हमेशा उसका हाथ थामे रखना। और अगला बहुत ही खूबसूरत गीत ये जो मैं चुन कर लाई हूँ आपके लिए, ये है पहेली फिल्म से MM करीम की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत गीत है लागा रे जल लागा। हमने पिछले रविवार को जल बचाने को लेकर एक बहुत ही अच्छा सा कार्यक्रम किया था, तो आपने जल के महत्व को भी समझा था। और ये गीत जल बरसने के लिए, जल बचाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप इसे ध्यान से सुने।

0: तो दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पिछले रविवार को एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम किया था जल बचाने को लेकर, और इस गीत से जब आप इसको सुनेंगे ना, तो बरसात के मौसम से लेकर जल बचाने से लेकर हर तरह का आपको इससे भाव पैदा होगा। क्योंकि अब जैसे देखिए, मेरी साथी हैं कुसुम, वो आ चुकी हैं स्टूडियो में, तो कब से वो वेट कर रही थी, क्योंकि गाने उन्होंने ही निकाले हैं बहुत ही खूबसूरत। तो कुसुम, आप क्या कहना चाहते हैं इस गीत को लेकर?
1: मैं तो जो आपकी सोच है ना सुषमा, उसी के बारे में सोच रही थी कि पिछली बार भी मैंने प्रोग्राम आपका सुना, वाकई जल को लेकर और बचाने को लेकर आपने बहुत सारी जितने भी त्याग हो सकते थे वो बताए कि आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबके पीछे एक ही उपाय मुझे लगता है कारगर सिद्ध होगा कि हम हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखा दें, जैसे हमसे हो। मतलब कुछ हमने हम लगाया, कुछ अपनों से लगवाया, नियरेस्ट डियरेस्ट जितने भी लोग हैं हमारे, सबसे कहें भाई अगर जल बचाना है, कल बचाना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली पैदा करनी होगी, उसको बचाना होगा, सुरक्षित करना होगा, उसको बढ़ाना होगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बार बरसात में हम एक चीज़ और आपने देखी होगी कि बस दिल्ली में एक दिन बारिश हुई, दिल्ली डूब गई, लेकिन उसके बाद बारिश ही नहीं हो रही है, गर्मी इतनी सारी हो रही है। सुबह सुबह तो मौसम अच्छा है, सुहावना है, लेकिन बारिश ना होने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। और
1: सुषमा, बारिश तो है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि अभी कल ही मैं साउथ दिल्ली के एक एरिया में थी, तो एक एरिया में हल्की सी बौछार हो रही थी जिसे ड्रिजलिंग कहते हैं, और दूसरा बिल्कुल सूखा। इसका मतलब आप हो सकता है सूखे की तरफ खड़ी होंगी
0: हाँ, मैं बिल्कुल सूखे की तरफ थी।
1: ये आपको पता नहीं चला, हो रही है बारिश, लेकिन उतनी नहीं जितनी हम मौसम से उम्मीद कर रहे हैं कि ये मौसम है बरसात का और बारिश अच्छी सी होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, बारिश का जो हमारा जो बारिश का जो छपाछप होती है ना, वो
0: हाँ,
1: बहुत थोड़ा सा परेशान कर रही
0: वो
1: है।
0: हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक बार बारिश में तो दिल्ली बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है, पर उसके बाद फिर थोड़ा ठीक हो जाती है, तो मजा आता है बारिश में भीग
1: सुषमा, यही
0: रहे
1: नहीं, बहुत सारे हमारे बाहर जो अदर स्टेट है, उत्तर बंगाल जैसे, वहाँ भी कुछ ये समस्या आ रही है, शायद ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं, या फिर कहें कि एकदम से बारिश के माध्यम जो होते हैं खेल नहीं जाते।
0: नहीं। और इसका दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि आजकल हमने जो कहते हैं ना, पत्थरों के पहाड़ खड़ा कर दिए हैं, सड़कों के ऊपर पत्थर बिछा दिए, पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता।
1: नहीं
0: हाँ
1: कर पाती है जमीन
0: जी
1: के अंदर उस पानी को, क्योंकि हर जगह जो सीमेंट ही सीमेंट है, तो एकदम
0: जी जी
1: मतलब वही आ जाता है कि आपको हरियाली पर तो ध्यान देना ही
0: और
1: पड़ेगा।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाना होगा ताकि ज़मीन के अंदर भी पानी जाए, और हम सबको वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सिस्टम को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जी जी तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ कि आप पानी बचाएंगे, क्योंकि जल ही जीवन है,
1: हरियाली को जो है आप
0: बढ़ावा
1: देंगे और बढ़ावा
0: देंगे।
1: देंगे।
0: जी, तो मुझे और कुसुम जी को दीजिए इजाज़त।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
4: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: NEET UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
4: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
5: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
6: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
8: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPay के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPay ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPay ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है। शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Prime Minister Modi will interact with participants of the Viksit Vibrant Villages Program 2026 at 4:30 p.m. today via video conferencing. Our correspondent reports that over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister.
1: The Viksit Bharat Vibrant Village Program 2026 was organized in two phases from 4th to 30th of the last month, covering 74 vibrant villages across Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. The participants were selected through a nationwide online quiz competition that witnessed participation from more than 3 lakh youth. As part of the program, participants live with local communities and undertook activities such as Swachhata drives, awareness campaigns on government schemes, Yuva Sammelans, cultural exchange programs, tree plantation drives, mini model panchayat simulations, interactions with local artisans and visits to institutions of strategic importance. With Nitika Saklain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Murmu returned to New Delhi this morning after concluding a state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. During the visit, the president held high-level engagements aimed at strengthening India's strategic partnerships with the three European countries and expanding cooperation in areas of mutual interest. More from our correspondent.
2: The visit marked several historic milestones, including the first ever state visit by an Indian president to Moldova and North Macedonia and the first state visit by an Indian president to Romania in over 3 decades. Throughout the state visit, President Murmu held delegation-level talks with the heads of state, addressed business forums, and interacted with members of the Indian diaspora. The president also received honorary recognition from the Bucharest University of Economic Studies in Romania. During the visit, she highlighted India's rapid economic growth, technological advancement, commitment to global cooperation. Subhashri Mahapatra, Akashvani News, Delhi.
0: Kargil Vijay Divas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. The main function is being held at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. More from our correspondent.
3: The Kargil War Memorial at Dras is witnessing solemn and patriotic ceremonies as the nation marks the 27th Kargil Vijay Diwas. Union Defence Minister Rajnath Singh is leading the commemoration by paying floral tributes at the Kanapath in honour of the brave heart of Operation Vijay at Kargil War Memorial. The Raksha Mantri will also inaugurate the virtual walk-through portal of the Kargil War Memorial, visit the Hut of Remembrance and Veer Bhumi, interacts with Veer Naris and Veer Matas and flag of the Shaurya Vijay Yatra motorcycle rally. The observance of Kargil Vijay Diwas is a solemn reminder of the courage, sacrifice and unwavering commitment of Indian Armed Force in safeguarding the nation's sovereignty. From Dras, Zainad Ali for Akashwani News.
0: On the occasion of Kargil Vijay Diwas, Defence Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah and External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar paid tribute to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the nation. In a social media post, Mr. Singh said, "The nation will forever remain grateful to the valiant soldiers who displayed extraordinary courage on the inaccessible heights of Kargil in 1999. As part of our series, Person Behind the Story, in our upcoming episode, we speak to Major D.P. Singh, a Kargil War veteran and India's first Blade Runner. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today at 12:30 p.m. FM. You can also listen to the program on the News on AIR app and the News on AIR official YouTube channel. In a major escalation of protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has announced a two-day agitation beginning today, which will culminate in a long march to Muzaffarabad. Rights leaders Umar Nazir Kashmiri and advocate Khwaja Mehran have called for a complete shutdown in Dadiyal and urged people across the Mirpur division to join the movement. In squash, top seed Anahat Singh has scripted history by becoming the first Indian to clinch the World Junior Championships. Anahat defeated Egypt's Ruqayya Salim 3-0 in the girls' singles final of the World Junior Championships at Niagara on the Lake, Canada. The 18-year-old Indian prodigy overcame second seed Salim 11-3, 11-7, 11-9 to win the gold medal. This is a significant achievement as a player from Egypt had won this title for 16 consecutive years and Anahat broke that monopoly without dropping a game. Union Minister Mansukh Mandaviya congratulated Anahat Singh after winning the title. In a social media post, Mr. Mandaviya said, "History has been made and it is a proud moment for every Indian." Indian sub-junior men's team thrashed arch rivals Pakistan 3-1 in the gold medal match of the FIH Youth Hockey F5S Asian Championship. Goals from Romit Pal, Captain Ketan Kushwaha and Shahrukh Ali crowned India as the Asian champions. With this victory, the Indian men's team also finished at the top of the elite pool table. By virtue of reaching the final, both India and Pakistan have qualified for the inaugural FIH Youth Hockey 5S World Cup. In the women's competition, the Indian sub-junior women's team bagged the silver medal after a hard-fought contest in their final against China, ensuring both Indian contingents return home with medals. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall over Madhya Maharashtra and Odisha today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sara Mujtaba.
4: Thank you, Sunil. The resignation of Dharmendra Pradhan is the top news in most dailies. Pradhan steps down, Gen Z steps up, headlines Hindustan Times. With the withdrawal of the protest by CJP, all 18 Delhi metro stations in Delhi, which had remained shut due to security reasons, have reopened, reports the Asian Age. To curb unfair practices in examinations, the centre is tabling its amended bill in the Lok Sabha tomorrow, which proposes 2-month deadline for a probe, writes the Tribune. A day after the US announced permanent tariffs on imports from 60 trading partners, the centre said that about 45% of India's exports to US remain outside the purview of the new 10% tariff, reports The Hindu. A US federal appeals court has rejected President Trump's bid to revive the H-1B visa fee of $100,000 for highly skilled foreign workers, reports Hindustan Times. Flood situation in Assam remained grim even as water level has started receding, reports The Pioneer. India's ancient Buddhist site of Sarnath has been inscribed on the UNESCO World Heritage List after a 28-year wait, reports The Statesman. The Times of India has quoted an international study that reveals that over half of world's migratory bird species are on a decline. And finally, in a significant technological step forward for the tea plantation sector and in a first, a tea company in Munnar is using drone-based transport to move freshly harvested green leaves to weighing centres and processing factories in Kerala, writes The Hindu. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. And Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championships. Women's team back silver medal. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहा सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता, जबकि खवातीन की टीम ने चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल CJP के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में CJP के वफद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब JP नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने CJP के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
6: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
5: इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात के लिए CJP की जानिब से पेश किए गए 5 निकाती चार्टर के बारे में जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत इन तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करेगी और CJP के साथ मुशावरत के बाद जो कुछ मुमकिन हो सकेगा वो किया जाएगा। CJP के आला तर्जुमान सौरभ दास ने नेक नियति के इजहार के तौर पर एहतजाज वापस लेने का ऐलान किया और उम्मीद जाहिर की कि तयशुदा शराइत पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाएगा।
7: The Congress Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
8: तो हम immediate effect से protesters से request करते हैं कि आप withdraw करें, peacefully अपने घर वापस जाएं।
5: इस दौरान CJP के कौमी तर्जुमान आशुतोष रानका ने तमाम मुजाहिरीन से अपील की कि वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज ख़त्म कर दें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के अलावा वजारत तालीम का भी चार्ज दिया गया है। जनाब जोशी फ़िलहाल गजा सारिफिन के उमूर और अवामी निज़ाम तकसीम और नई और काबिल तजदीद तवानाई जैसी वजारतों के भी वजीर हैं। ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़्यादत और रहनुमाई के तहत महकमे में उम्मीदों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे।
9: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
5: इस दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर से मरकजी वजारती कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। ये बिल ऐवान की कल की कार्रवाई के एजेंडे में शामिल है। इस बिल का मकसद सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 में तरमीम करना है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। मरकजी

अबीना ने जुमे को तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सज़ा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मुसव्वदे को मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां

0: ज़मीर रज़वी।
1: करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क करगिल की नाकाबिले रसाई पहाड़ियों में साल 1999 में बेमिसाल शुजात का मुजाहरा करने वाले बहादुर फौजियों का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ते एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज से 2 रोज़ा मुजाहरों का ऐलान किया है, जिनका इख्तिताम मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से होगा। हुकूक का मुतालबा करने वाले रहनुमाओं उमर नाजिर कश्मीरी और एडवोकेट ख्वाजा मेहरान ने दादियाल में मुकम्मल बंद की अपील की है और मीरपुर डिवीज़न के लोगों से तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की है। कल जहर की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद की जानिब होने वाले लॉन्ग मार्च से पहले मीरपुर के मुजाहरीन के काफिले रावलकोट में जारी धरने में जम हो सकते हैं। ये ताज़ा एहतजाज बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़ते दाम और सिविल हकूक पर आयद पाबंदियों के मामले में बढ़ते अवामी गुस्से की अलामत हैं। इस दौरान मुंतजमीन ने पूरे एहतजाज के दौरान मुजाहरीन से नज्म व ज़ब्त और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है। आला दर्जाबंदी की हामिल अनाहा सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाहत ने कनाडा के निगारा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी की हामिल सलीम को 11-3, 11-7 और 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मिस्र के खिलाड़ियों ने लगातार 16 साल तक ये खिताब अपने नाम किया, ताहम अनाहत ने एक भी मैच हारे बगैर इस इजादारी को ख़त्म किया। FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत के मर्दों की सब जूनियर टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खिलाड़ी रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियन बनाया। इस जीत के साथ ही मर्दों की भारतीय टीम ने इलीट पूल टेबल में सबसे ऊपर जगह बना ली है। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने FIH यूथ हॉकी 5 आलमी कप के इफ्तिताही मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात की आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा, इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने लिखा है कि विकसित द्राक्षा गांव प्रोग्राम 2026 के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुरका से आज बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम कौमी यकजहती, तरक्की, नीज सरहदी गांव की हिकमत अमली की अहमियत की गहरी समझ बूझ को फ़रोग देता है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफ़ा, प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का कलमदान सौंपा गया। जंतर मंतर पर CJP ने अपना एहतजाज वापस लिया, इस खबर को आज के सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। उत्तर प्रदेश का कदीम बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत की जानिब से मुतालबा तस्लीम किए जाने के बाद CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की कल लोकसभा में सरकारी इम्तहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम भी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं कहते हैं कि एक सच्चे लेखक की पहचान यही है कि जब वो किसी का दर्द लिखे तो पढ़ने वाले की आंखों में अनायास ही पानी आ जाए, और जब वो उम्मीद की बात करे तो सोए हुए मन में
3: एक नई रोशनी जग उठी। हिंदी साहित्य में मिट्टी से जुड़े ऐसे ही एक रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। क्यों आज भी गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों की गलियों तक प्रेमचंद के लिखे शब्द उतने ही सच्चे और अपने से लगते हैं। तो आइए सुनते हैं शब्दों के इस खास सफ़र से और महसूस करते हैं कि कैसे एक संवेदनशील रचनाकार समाज में किस तरह परिवर्तन लाते हैं। इन्हें सबको समेटे आइए सुनते हैं परिचर्चा मुंशी प्रेमचंद का साहित्य संवेदना से जागरण तक। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर विवेक मिश्र, वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर अजय नावरिया और प्राध्यापक डॉक्टर राकेश कुमार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष मंच पर मैं आप सभी श्रोताओं का आत्मीय अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रचनाकार की साहित्यिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जिनके बिना भारतीय समाज, उसकी मिट्टी की सौंधी महक और उसके अंतर्विरोधनों को समझना लगभग नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं कलम के सिपाही, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। जब हम संवेदना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेमचंद के यहाँ इसका मतलब किसी के दुख पर तरस खाकर आंसू बहा देना नहीं है। प्रेमचंद की संवेदना वह पारदर्शी लेंस है जिससे वे होरी के फटे कुर्ते की बेबसी को देखते हैं, हामिद के 3 पैसे के चिमटे के पीछे छिपे अपनी बूढ़ी दादी के प्रति अगाध प्रेम को महसूस करते हैं और गंगी के उस सन्नाटे को सुनते हैं जो ठाकुर के कुएं पर पानी की एक बूंद के लिए पसरा हुआ है। उनकी संवेदना समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की धड़कनों से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने कहा था, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उनका यही विचार उनके साहित्य को केवल संवेदना तक सीमित नहीं रहने देता बल्कि उसे जागरण का माध्यम बना देता है। वे पाठकों को केवल रुलाते नहीं, वे उन्हें झकझोरते हैं, बेचैन करते हैं और अंततः सोचने और बदलाव के लिए मजबूर करते हैं। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, तब प्रेमचंद का साहित्य हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में 2 बेहद प्रबुद्ध वक्ता मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा विवेक मिश्र जी से। विवेक जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के साहित्य की शुरुआत सोजे वतन जैसी देशभक्ति की कहानियों से होती है और अंत गोदान के कठोर यथार्थ पर। उनकी कहानियों में जो संवेदना है वह केवल आंसू बहाने वाली सहानुभूति नहीं बल्कि पाठक के भीतर एक बेचैनी पैदा करती है। एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद की सहानुभूति से बेचैनी तक की यात्रा को आप कैसे देखते हैं?
5: बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रेमचंद अपने कथा संसार में, अपनी कहानियों में संवेदना को पकड़ते हैं, उसे साथ लेके चलते हैं, लेकिन वो केवल भावुक करने तक का प्रयास नहीं होता है, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी कहानी में मात्र एक कहानीकार नहीं है जो एक भाषा में, एक देश काल परिस्थिति में विशेष कहानियां लिख रहे हैं। वे भाषा और भाषा में विधा दोनों का निर्माण करते हुए एक साथ चल रहे हैं। वो उस समय आते हैं कहानी की दुनिया में, तो वहाँ पे वो अपनी कथा में, अपनी भाषा में, अपने शिल्प में उतनी संवेदना जरूर रखते हैं कि आप उस विषय से जुड़ सकें, लेकिन आप उनकी कहानियों में पढ़ते हुए जब आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो बहुत जल्दी यथार्थ के धरातल पे उतरती हैं। वो आपके सामने प्रश्न खड़े करती हैं और आपको सोचने पे विवश करती हैं। ये उनकी कहानियों की विशेषता भी है और मैं कहूँगा कि उनकी वो जो ताकत है वो आज भी हमें दिखाई देती है, क्योंकि आप ये समझिए कि उनके लिए वो समय भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस समय प्रेमचंद की कहानियाँ हमारे सामने आ रही हैं। तो एक जो विशेष चीज़ हम वहाँ देखते हैं वो चेंज ऑफ हार्ट है, हृदय परिवर्तन उनकी कथा का विकास बिंदु है। जब भी आप देखेंगे कि वो यथार्थ में उतरते हैं तो कोई भी चरित्र प्रेमचंद की कहानी में जैसा प्रारंभ में होता है अंत तक वैसा नहीं रहता, वो एक विकास यात्रा करता है, यानी कि वो हृदय परिवर्तन में भरोसा करने वाले बहुत बड़े कथाकार हैं और इसलिए वो उन परिस्थितियों को आपके सामने जस का तस रखते हैं, उस यथार्थ की कई परतों को आपके सामने जस का तस रखते हैं। इसलिए वो संवेदनशील कथाकार होते हुए भी यथार्थवादी कथाकार, मैं इसे कहूँगा, और यथार्थ के कई स्तरों को उजागर करके सामने रखने वाले और हर कहानी से एक समाज के सामने, पाठक के सामने एक प्रश्न रखने वाले कथाकार के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ।
4: जी विवेक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो प्रेमचंद में जो चेंज ऑफ हार्ट वाली बात है वो एक बात ये भी कहती है उस दौर के अंदर एक ये भी

0: गांधी का भी एक बड़ा योगदान रहा और एक बड़ी चेतना के तौर पर गांधी उस पूरे युग में मौजूद हैं, और एक बदलाव का एक स्वरूप वहाँ चल रहा था, सामाजिक बदलाव का भी एक दायित्व तो प्रेमचंद के यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं इसी विचार को लेकर अजय जी के पास जाना चाहूँगा, अजय जी से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि अजय जी निरंतर इन विषयों पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अजय जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं, सदगति और मंत्र जैसी कहानियों के जरिए जातिवाद और छुआछूत की अमानवीयता पर सीधा प्रहार किया। आज जब दलित विमर्श, वंचितों की आवाज़ साहित्य के केंद्र में है, तो प्रेमचंद के इस सामाजिक जागरण को आप किस रूप में देखते हैं?
1: देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि आपने जैसा कि हमारा परिचय दिया कि हम कहानीकार हैं, तो हम कहानीकार के तौर पर उनको देख सकते हैं। और दूसरा, चूंकि मैं ख़ास तौर से विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदी साहित्य को पढ़ाता हूँ, तो एक आलोचक की दृष्टि से भी देख सकते हैं। मैं कहानीकार की दृष्टि से देखता हूँ पहले, तो मैं पाता हूँ कि प्रेमचंद हमारे एक पूर्वज के रूप में है। पहली बार ऐसा होता है हिंदी कहानी में, ख़ास तौर से हिंदी कथा साहित्य में, कि एक लेखक आता है जो सामाजिक यथार्थ को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ऐसा सामाजिक यथार्थ जो वास्तव में भारत का वास्तविक सामाजिक यथार्थ था और जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। होता यह है कि अगर आप प्रेमचंद से पहले के कहानीकारों को देखें, तो जो चीज़ सिरे से गायब दिखती है, या कहना चाहिए कि जिसकी तरफ कथाकारों का ध्यान नहीं गया, वह थी जाति व्यवस्था। और भारतीय समाज का यथार्थ है जाति व्यवस्था। प्रेमचंद पहली बार जब आते हैं कथा साहित्य के परिदृश्य में, और प्रेमचंद के आगमन के साथ साथ तीन चार चीज़ें बहुत मुख्य तौर पर आती हैं। एक आता है जो भारतीय ग्रामीण जीवन है, किसान जीवन। दूसरी चीज़ आती है स्त्रियों का जीवन। तीसरा, जिसे हम वंचित समाज कह सकते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो सब अस्मिताएं, वो सब पहचान जिनको अब तक जगह नहीं दी थी उनके लिए। और चौथा आता है जो उस समय का, जिसका आपने जिक्र भी किया, गांधी जी के बारे में, तो पूरा स्वतंत्रता संग्राम की झलक उनके साहित्य में दिखाई देने लगती है। तो ये बताता है कि एक कहानीकार कितना सामाजिक रूप से सजग है, उसके अंदर अपने देश के लोगों के प्रति, जनता के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है, वह उनको कितना जागृत कर देना चाहता है। ये जागरण उनकी पहली कहानी में, मैं तो कहूँगा कि उर्दू में जब उन्होंने लिखना शुरू किया था, और सोजे वतन जिस तरह जब्त किया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा, उसमें एक कहानी आती है। पहले वो यही मेरा वतन नाम से कुछ ऐसा था, बाद में यही मेरी मातृभूमि ऐसे उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और ये हिंदी साहित्य में पहली कहानी है जो प्रवासी जीवन पर लिखी गई। मतलब लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लोग सोचते हैं कि प्रवासी जीवन को लेकर प्रवासी विमर्श जो हुआ है उसी से वहीं से हुआ है। प्रेमचंद ने उस जमाने में एक व्यक्ति के बारे में लिख दिया जो वहां से चलकर आता है, भारत आता है, और भारत में भारतीयता की तलाश कर रहा है। और ये भारतीयता कहाँ मिलती है? उसे शहरों में नहीं मिलती, उस व्यक्ति को वह भारतीयता भारतीय ग्रामों में मिलती है, भारतीय गाँवों में मिलती है। वह गाँव तक जाता है और वहां जाकर उसको ये सब। तो ये जो जागरण है, ये बड़ा व्यापक है, ये जागरण बहुत व्यापक है। ये एक स्तर पर जाति के साथ है, तो दूसरे स्तर पर किसानों के साथ है, तो तीसरे स्तर पर स्त्रियों के साथ है, तो चौथे स्तर पर उन पूरे के पूरे जो स्वतंत्रता संग्राम के जितने डायमेंशंस थे समाज के ऊपर, जो प्रभाव डाल रहे थे, उन सबको भी समेटता है। यानी आप पढ़ते हैं, जब गबन पढ़ते हैं, तो आपको दिखाई देता है देवी दीन खटीक, दिखाई देते हैं वहाँ पर उनके बेटों की शहादत दिखाई देती है। कर्मभूमि में आपको कितने चरित्र दिखाई देते हैं, वो पगली लड़की दिखाई देती है जो अंग्रेजों द्वारा सताई गई थी, जिसका बदला अमरकांत लेते हैं। और दूसरे रचनाओं में
0: जी
1: आप देखेंगे कि लगातार उनके यहाँ पर हर तरह के प्रश्न को जगह दी गई
0: जी।
1: और ये जो प्रश्नों को जगह देना है, वास्तव में उस समाज को, मुझे रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पंक्ति याद आ रही, परिचय प्रेम का प्रवर्तक है
0: जी जी।
1: तो जिस साहित्यकार को, जिस रचनाकार को अपने देश का, अपने समाज का परिचय नहीं होगा, उससे उसको प्रेम भी नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल।
1: प्रेमचंद को मैं कहता हूँ, प्रेमचंद ऐसे पहले, मैं सच में अगर इसमें अतिशोक्ति में भी कुछ कह रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल, मैं इसको ओन करता हूँ कि प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जिन्होंने इतनी शिद्दत से भारत की आत्मा को समझा
0: जी।
1: और उन्होंने जाति व्यवस्था, क्योंकि जाति व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ कोई एक वर्ग है जिसे हम वंचित समाज कहते हैं, नहीं, जाति व्यवस्था का मतलब पूरा वह है समाज
0: जो हाशिए पर
1: जो
0: डाल दिया
1: जो जो नहीं जो सिर्फ हाशिए पर नहीं, हाशिए पर डाल दिया गया ये अलग बात है, मगर उसमें जाति व्यवस्था का मतलब है कि वो प्रिविलेज क्लास भी है
0: जी,
1: और वो क्यों सफरिंग में है, वो क्यों दुख पा रही है, वो क्यों कष्ट पा रही है, कष्ट वह भी पा रही है,
0: वह भी पा रही है, उसके अपने
1: मझोली जातियां हैं
0: जी,
1: जिन्हें हम पिछड़ी जातियां कहते हैं, वो भी कष्ट पा रहे हैं, यानी पूरा गोदान किस पर है, होरी महतो पर है
0: जी,
1: ना वो सवर्ण है ना वो दलित है, वो किसी किसी ऐसी जाति का है जो इन तीनों से अलग है
0: जी।
1: अगर पूस की रात का हल्कू आप याद करें तो आप ये कहानी पढ़कर यह तय नहीं कर सकते कि हल्कू की जाति क्या है, मगर हल्कू का दर्द आपको लगता है एक किसान का दर्द है, और वो है इतना कष्ट पा रहा है कि आखिर में उसे अपने कुत्ते जबरा से गर्मी मिल रही है, तो उस गर्मी को भी वह छोड़ देना नहीं चाहता है।
0: नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही अजय जी, क्योंकि ये पूरा दौर इस प्रकार का था, और प्रेमचंद लगभग एक जैसे लाइट हाउस की तरह से आज के रचनाकारों को भी देखें तो जैसे आपने कहा कि वो हमारे पूर्वज हैं, हमें लगता है कि वो एक लाइट हाउस हैं, जैसे वे किनारा दिखाते हैं, एक राह दिखाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो स्त्रियों के जीवन से जुड़ी हुई, तो इसी बात से मैं विवेक जी के पास आना चाहूँगा कि क्योंकि कई अनोखे और बहुत शक्तिशाली स्त्री पात्र प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में कहानियों में दिए हैं, जैसे बड़े घर की बेटी की आनंदी का त्याग है, गोदान की धनिया का मुखर विरोध है, निर्मला की त्रासदी है, ऐसे अनेक पात्र आपको मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ मात्र शोषण ही नहीं दिखाते बल्कि उनके भीतर जो आत्मसम्मान है, जो विद्रोह है, वो भी दिखाते हैं। आप प्रेमचंद की स्त्री संवेदना को किस प्रकार से देखते हैं, प्रेमचंद के यहाँ पर जो स्त्री पात्र हैं वो किस प्रकार के थे, या उनमें किस प्रकार का सामाजिक जागृति का क्या उद्देश्य प्रेमचंद के यहाँ पर रहा होगा?
2: आप जैसे अजय जी ने कहा, मैं कहूँ कि प्रेमचंद ने कहानी में अभी तक बाहर रहे आए विषय और उन चरित्रों को स्थान दिया जिस पर विशेष ध्यान पहले नहीं दिया जाता था। आप अगर स्त्री चरित्रों में आप निर्मला की तरफ देखते हैं, आप और आगे बढ़ें गबन के स्त्री पात्रों को देखते हैं, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि वहाँ वो केवल भावुक चरित्र नहीं है, वहाँ ऐसे चरित्र नहीं है जिनका शोषण किया जा रहा है, बल्कि वो उठ खड़े होते हैं और कई बार तो वो बिल्कुल धनिया का चरित्र वो पुरुष जो किरदार है उसके भी बदलाव का कारण बनता है, उसके प्रेरणा का कारण बनता है, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो उसकी जो इनसाइट आ रही है, आप ये देखें जो उसकी समझ आ रही है वो उसके साथ डिस्कशन से आ रही है, वो उसका जो धिक्कार कई जगह आ रहा है, जो झगड़े में आता है, नाराजगी में आता है, तो वो स्त्री चरित्र ऐसे नहीं है कि जो खुद मुखर होकर अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, केवल वो अपने आसपास के इकोसिस्टम को बदलते हैं, वो आसपास अपने परिवेश को बदलने वाले किरदार हैं जो अपने आप में मिसाल बनते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब प्रेमचंद अपने चरित्रों को गढ़ते हैं, खासतौर से स्त्री चरित्रों को गढ़ते हैं, तो उनके अंदर एक आशावाद आपको हमेशा दिखाई देता है, एक उम्मीद हमेशा दिखाई देती है, जो जैसे मैंने पहले कहा कि एक चेंज ऑफ हार्ट हमेशा दिखाई देता है, एक बदलाव दिखाई देता है। वह हिंदी कहानी में आप देखेंगे कि मार्क्स का साम्यवाद, गांधीवाद और तोल्स्टॉय के लेखन का प्रभाव उनके लेखन पे दिखाई देता है, लेकिन सबके विचार जो अभी अजय जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि अगर आप अपने देश काल परिस्थिति को जानते नहीं हैं तो उससे प्रेम भी नहीं कर सकते, और जब तक आप उन परिस्थितियों से, उन हालात से, उन जगहों से प्रेम नहीं करते, अपने चरित्रों से वो जुड़ाव महसूस नहीं करते, आप उनकी कथा व्यथा भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये मौलिकता उनके अंदर दिखाई देती है, और स्त्री मन को जिस तरीके से, जिस बारीकी से उस दर्द को वो पकड़ते हैं, वो उनके कथा संसार में आपको हर जगह दिखता है और कहानियों में तो बहुत मार्मिक रूप से दिखता है। एक और चीज़ है कि उस समय जब शिक्षा से वंचित है पूरी आधी आबादी, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, फिर भी जो उनकी अंतः चेतना है वो इतनी स्पष्ट है, उनकी सोच कितनी मुखर है, और वो अपने आसपास के चरित्रों को और अपने आसपास के वातावरण को चरित्र किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, बदल रहे हैं, वो उनके लेखन में हमें बार बार दिखाई देता है।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही विवेक जी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बदलाव का अजय जी जो स्वरूप है वो धार्मिक समाज, भारतीय समाज में जो जड़ता है, जो पाखंड हैं,
2: बिल्कुल
0: जो धार्मिक अंधविश्वास हैं, उनको लेकर भी प्रेमचंद के यहाँ पर एक बड़ी सजग दृष्टि रहती है। तो इसी से जुड़ा मेरे आपसे एक प्रश्न है कि प्रेमचंद ने धर्म के ठेकेदारों, पुरोहितों और पाखंड पर बहुत तीखा व्यंग्य किया है, जैसे सवा सिर गेहूँ या मोटे राम शास्त्री के जो प्रसंग आते हैं, आज के समय में जिस प्रकार समाज बन रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हुए दिखते तो हैं, लेकिन अंधविश्वास आज भी भारतीय समाज में मौजूद हैं।

0: प्रेमचंद का जो साहित्य है वर्तमान के वैचारिक जागरण के लिए कितना आप उपयुक्त समझते हैं?
1: देखिए, एक चीज़ तो ये पहली बात में एक भी चीज़ छूट गई थी, मैं उसको और जोड़ देता हूँ कि प्रेमचंद इस अर्थ में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार, जहाँ तक मैं चूंकि साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो जानता हूँ, और नवजागरण का कथा साहित्य मैं याद कर रहा हूँ, चाहे वो भाग्यवती हो, चाहे वो परीक्षा गुरु हो, ये या 100 अजान 1 सुजान हो, पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, ये सब उपन्यास हैं, और उससे पहले किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती है, और बहुत सारी कहानियाँ हैं, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, दुलाई वाली जो है बंग महिला की कहानी, इन सब में आप देखते हैं यहाँ एक भी मुस्लिम चरित्र नहीं होता। पहली बार मुस्लिम समाज को जगह देने वाले प्रेमचंद, यानी माइनॉरिटी को, अब अल्पसंख्यक समाज को भी जगह देने वाले प्रेमचंद ही हैं।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात
1: हाँ,
0: आपने कही जी,
1: और
0: अजय जी, ये बात बहुत
1: ये
0: महत्वपूर्ण है।
1: इसलिए कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि मैंने जो पहले कहा था रामचंद्र शुक्ल जी के उस कथन के आलोक में, वह व्यक्ति जो अपने देश को ठीक से पहचानता है, जो उसके उसकी जड़ों को पहचानता है, वह किसी के प्रति द्वेष, नफरत, ईर्ष्या नहीं रख सकता, उसके मन में दूरी नहीं होगी एक रचनाकार के तौर पर। तो जो ये बात आपने कही कि जो जाति के कारण, दो कहानियों का जिक्र किया आपने, सवा सेर गेहूं का और मोटे राम शास्त्री का, एक मुझे वो याद आ जाता है, उस जमाने में कुछ एक सज्जन थे जिन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया था,
0: जी
1: प्रेमचंद जी के ऊपर, और उनको कहा गया कि ये एक जाति विशेष के प्रति द्वेष रखते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक ऐसा रचनाकार जो अपने जीते जी कोर्ट में केस लड़ता है, वो जीत जाते हैं, प्रेमचंद जीत जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो, उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य एक प्रवृत्ति को रेखांकित करना था जो कि दूसरों के अंदर दूरियां पैदा करती है, भेदभाव पैदा करती है, एक तरह का पाखंड को बढ़ावा देती है। हमारी पूरी कोशिश जो आज़ाद भारत में थी वो वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने की थी, उससे पहले भी जो शिक्षा का, जो आधुनिक शिक्षा का जो उद्देश्य था, वह एक तरह की वैज्ञानिक चेतना और तर्कवाद को बढ़ाने का था, तो हम अंधविश्वास को पीछे छोड़ देना चाहते थे, मगर कुछ लोग उस धर्म के नाम पर अंधविश्वास को ही पकड़े रहना चाहते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि वही प्रेमचंद एक लंबे समय के बाद उस वर्ग के द्वारा भी प्रश्नांकित होते हैं, लांछित
0: बिल्कुल
1: होते हैं,
0: जी,
1: जिनके लिए वे लड़ रहे थे,
0: कफन के लिए,
1: कफन
0: बिल्कुल
1: कहानी के लिए।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: मेरा कहना यह है कि होता यह है कि कुछ ऐसे लोग, एक जो, चूंकि भारत जो एक देश है, वो एक पूरा का पूरा महाद्वीप है, महादेश है,
0: महादेश जी,
1: तो इस महादेश में आपको उस प्रवृत्ति के लोग भी मिल जाएंगे जो आप अच्छा करने वाले व्यक्ति को भी रोकते हैं, और इधर भी मिल जाएंगे, उधर भी मिल जाएंगे, और तीसरी तरफ भी मिल जाएंगे। तो प्रेमचंद उस समय भी लांछित हुए, प्रताड़ित हुए, और इतने लंबे समय के बाद भी प्रताड़ित हुए और लांछित हुए, परंतु क्या इससे प्रेमचंद छोटे हो गए? नहीं, उत्तर है कि प्रेमचंद की इससे प्रासंगिकता का पता चलता है हमें, कि प्रेमचंद इस अर्थ में प्रासंगिक हैं कि उन्होंने उस जमाने में ऐसी कहानियां लिख दी जो कहानियां बहुत लंबे समय तक बीच में सिरे से विलुप्त रहे, उस तरह की कहानियां नहीं मिलती, आप नई कहानी के दौर में एक भी कहानी नहीं पाते,
0: सही कह रहे हैं, सही कह रहे
1: आप अज्ञेय के यहाँ पर एक भी कहानी नहीं पाते हैं उस तरह की, यशपाल के यहाँ पाते हैं,
0: बिल्कुल
1: आप उनके यहाँ नहीं मिलेगी आपको कहानी इस तरह की जैसी कि प्रेमचंद ने कहानी लिखी जैनेन्द्र कुमार के यहाँ,
0: नहीं
1: मगर आपको जयशंकर प्रसाद के यहाँ मिल
0: मिल
1: जाएगी।
0: जाएगी।
1: तो आप ये देखें कि प्रेमचंद किस अर्थ में महत्वपूर्ण है, कि वह जागरण, वास्तव में जागरण के लेखक है, जागरण के कथाकार हैं, संवेदना का तो कथाकार होता ही है
0: जी
1: कथाकार,
0: जी बिल्कुल
1: मगर
0: बिल्कुल
1: अगर वह वास्तव में सामाजिक जागरण का, राजनीतिक जागरण का, मूल रूप से किसी जागरण का, क्योंकि जागरण क्या है, कोई जागरण सिर्फ सामाजिक परिवेश पर घटित नहीं होता, जागरण पहले अंतस में होता है, बौद्धिक स्तर पर होता है, फिर वह बौद्धिक स्तर जो है वो समाज में एक परिवर्तित रूप
0: जी
1: आता है। तो प्रेमचंद इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ प्रेमचंद जो उर्दू में लिख रहे थे सोजे वतन, और फिर वहां से छोड़कर हिंदी में आते हैं, और फिर 1936-16 में पंच परमेश्वर छपती है, और आप सोचिए कि पंच परमेश्वर जैसी कहानी लिख रहे हैं, और जिसमें इतना मशहूर, इतना जबानों पर चढ़ गया खाला का
0: मुहावरा,
1: जो, तो क्या तुम
0: बिगाड़
1: इस
0: की
1: बिगाड़ के डर
0: डर
1: से
0: से
1: जो है
0: बेईमान की बात नहीं
1: ईमान
0: होगी,
1: की
0: ये
1: बात
0: बात
1: ना
0: बिल्कुल
1: कहोगे?
0: होगी।
1: आप
0: हाँ
1: सोचिए कि वो मुहावरा बन गया।
0: मुहावरा,
1: हाँ, ये प्रेमचंद की शक्ति है कि वो
0: बिल्कुल
1: प्रेमचंद जुम्मन को और अलगू चौधरी को दोस्त बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं।
0: प्रस्तुत कर,
1: ये
0: ये
1: एक महत्वपूर्ण
0: महत्वपूर्ण बात थी।
1: प्रस्थान है कथा
0: जी
1: साहित्य
0: जी
1: में, कहानी में।
0: जी
1: मैं समझता हूँ
0: जी
1: प्रेमचंद इस अर्थ में भी जागरण, सिर्फ जाति के अर्थ में नहीं, धर्म के अर्थ में, जेंडर के अर्थ में, तमाम तरीके के जागरणों को अगर बीज आप देखते हैं तो आपको वहां
2: बिल्कुल
1: मिलते हैं।
2: प्रेमचंद के
1: प्रेमचंद
2: किसान की बात करते हैं तो मिल
1: किसान,
2: मजदूर की
1: हाँ
2: बात
1: बिल्कुल
2: करते हैं, मिल
1: बिल्कुल
2: मजदूरों पे जो फिल्म
0: जी
2: की
0: जी
2: बनती है वो
0: बिल्कुल
2: मजदूरों की
0: बिल्कुल।
2: बात करते हैं।
0: तो विवेक जी वही बात मैं कह रहा था, क्योंकि सिर्फ जैसे अजय जी ने लगभग वो पूरे इस जैसे पूरे विस्तार को उन्होंने अपने संक्षिप्त उत्तर में समेट लिया है। एक भाषा को लेकर भी मुझे मन में सवाल उठता है कि जो प्रेमचंद की जो भाषा है वो भी एक प्रतिमान के तौर पे स्थापित हो जाती है कि आप जब भी असामाजिक यथार्थ की बात करेंगे, ये सामाजिक
2: बिल्कुल
0: जागरण की बात करेंगे तो उस भाषा में आप
2: बिल्कुल
0: लिखें जैसे जो प्रेमचंद लिख रहे थे।
2: बिल्कुल
0: तो आप स्वयं एक कथाकार हैं और आप खुद प्रयोग करते हैं भाषा को लेकर, प्रेमचंद के इस महत्वपूर्ण योगदान को आप किस तरह से देखते हैं जो भाषा और संवेदना के स्तर पर हुआ कर रहे थे?
2: बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्रेमचंद हिंदी कहानी में मात्र एक कहानीकार नहीं है, वो एक जागरण के प्रवर्तक हैं। साथ में जब वो साहित्य में आते हैं तो वो एक साथ भाषा की निर्मिति भी हो रही है, विधा को भी समृद्ध करते हुए चल रहे हैं। उनके सामने या उनके पहले ऐसा कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं है जिसको देख के वो इस चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि वो अपनी मौलिकता से, अपने अध्ययन से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदी भाषा और भाषा में कहानी विधा को जिस तरीके से वो समृद्ध करते हैं, उनकी भाषा कहाँ से आ रही है? वो लोक से आ रही है, वो उस जनजागरण के संघर्ष से आ रही है, वो आज़ादी के उस आंदोलन से आ रही है। सो इसलिए आप ये देखेंगे कि आपको उनकी सोच और तेवर में कहीं मार्क्सवाद दिखाई देगा, लेकिन कहीं उनकी भाषा और लोक संस्कृति में आपको गांधी खड़े दिखाई देंगे। और इसीलिए उनकी भाषा आज मैं समझता हूँ कि हिंदी कहानी में एक मानक की तरह आप अगर देखें कि उस समय के कथाकार, इसलिए उस पूरी धारा को ही उनकी भाषा की वजह से भी खासा पहचान भी मिली और बड़े लंबे समय तक उसका लोगों ने अनुकरण भी किया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चरित्र, जो अभी अजय जी ने भी कहा कि जिस तरह से उनके किरदार जिस जमीन से आते हैं, वो अपनी जमीन के शब्द, वो संवेदना अपनी भाषा में लाते हैं, और ये आसान नहीं है। जो भाषा प्रेमचंद के यहाँ आपको मिल रही है और उसको वो सहज पाठ के लिए तैयार भी कर दे रहे हैं, उनकी जो उसमें आप अगर शिल्प में देखें तो कोई बहुत साहित्यिक व्यक्ति ना भी हो या जिसका लोक भाषा से उतना जुड़ाव ना भी हो, तब वो भी अगर प्रेमचंद को पढ़ता है तो वो बहुत आसानी से उसको आत्मसात कर सकता है, समझ सकता है। ये है क्योंकि वो हर चरित्र को जहाँ से उठाते हैं उसकी ज़मीन को वो बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, पकड़ते हैं। तो जब वो संवेदना के स्तर पे आप उस जमीन से उठाते हैं तो उसके शब्द आपके साथ चले आते हैं और लोक हिंदी में उस तरीके से आ जाता है कि आपको वो अपठनीय नहीं लगता, आपको कहीं नहीं लगता कि हम इसे पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बल्कि वो सबके लिए वो सहज, सरल और सामान्य बना देते हैं। यही कारण है कि उनकी मतलब विषयों के विविधता के बाद भी उनकी कहानियां कहीं अपठ नहीं होती। पठनीयता उनका एक विशेष गुण है कि किसी उम्र का पाठक भी उन कहानियों से बड़े आसानी से और बहुत सहजता से जुड़ जाता है। ये और बात है कि सब अपनी समझ से उसका पाठ अपने अपने तई अलग अलग निर्मित करते हैं, तो उनकी भाषा ये एक ये विशेष।
0: बिल्कुल सही बात कही, और इसलिए कहा भी जाता है कि प्रेमचंद हमारी आत्मा के शिल्पी हैं।
2: शिल्पी हैं।
0: और विवेक जी और अजय जी, आपने बहुत बारीकी से और प्रेमचंद के साहित्य के अवदान को याद किया है, आपने ये बताया है कि किस प्रकार से भारतीय समाज को पूर्ण रूप में अगर जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद के पास जाना ही पड़ेगा, और प्रेमचंद दादा के भी उतने प्रिय हैं जितने पिता के, और उतने ही प्रिय हैं आज की जो जनरेशन है वो भी प्रेमचंद से शुरुआत कर सकती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ कि जब तक समाज में कर्ज के बोझ तले दबे किसान रहेंगे, जब तक अभावग्रस्त घीसु माधव रहेंगे, जब तक गंगी को कुएं से पानी लेने से रोका जाएगा, तब तक मुंशी प्रेमचंद का साहित्य हमें झकझोता रहेगा और जगाता रहेगा। विवेक मिश्र जी, अजय नावरिया जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इस गंभीर विषय पर इतनी सार्थक चर्चा की, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: मुंशी प्रेमचंद का साहित्य संवेदना से जागरण तक, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर विवेक मिश्र, वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर अजय नावरिया और प्राध्यापक डॉक्टर राकेश कुमार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर राकेश कुमार। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रही हैं युवा पत्रकार डॉक्टर गायत्री सक्सेना।
4: दिल्ली में जुलाई का तीसरा सप्ताह मानसून की भीनी भीनी बारिश के साथ साहित्य प्रेमियों के लिए भी सुहाना रहा। शनिवार 18

0: 17 जुलाई हिंदी भवन गाजियाबाद में गोपाल दास नीरज जी की पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथियों में श्री नारायण गिरी महाराज, श्री संतोष यादव, श्री नरसिंह नंद उपस्थित रहे। आमंत्रित कवियों में सर्वश्री सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, सर्वेश अस्थाना, पवन कुमार, महेश श्रीवास्तव, शशांक नीरज, डॉक्टर सीता सागर, डॉक्टर किरण शामिल रहीं। इन कवियों ने अपने सुमधुर काव्य से समा बांधा और श्रोता दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी दिन एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारतीय भाषा परिषद पुस्तकालय में प्रथम साहित्य व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास का महत्व विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के स्वागत वक्तव्य में श्री आशीष झुनझुनवाला ने कहा कि परिषद युवाओं और विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि के लिए हर महीना ऐसे व्याख्यान आयोजित करता रहेगा। साथ ही हिंदी के 1000 साल के साहित्यिक गौरव को भी उजागर किया। उन्होंने ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी लोक भाषाओं के साहित्य को हिंदी के इतिहास का अंग बनाया, जिसका लाभ लाखों विद्यार्थी उठा रहे हैं। अंत में कार्यक्रम का समापन श्रीमती विमला पोद्दार ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए किया। रविवार 19 जुलाई को SS स्टूडियो निर्माण विहार दिल्ली में शब्द राग साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे श्री गोपाल दास नीरज जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पर्पल पैन संस्था द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन श्रीमती वसुधा कनुप्रिया ने किया। कार्यक्रम का आरंभ नीरज जी के काव्य संसार, उनके गीतों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किया गया। इस अवसर पर आमंत्रित कवियों में सर्वश्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अनिल मीत, मनोज मिश्रा कप्तान आदि शामिल रहे। इन कवियों ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से वातावरण को पूरी तरह काव्यमयी बना दिया और आमंत्रित गायकों ने नीरज जी के कालजयी गीतों को अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत कर श्रोताओं की भरपूर सराहना प्राप्त की। इसी दिन एक अन्य कार्यक्रम NEA भवन सेक्टर 6 नोएडा में श्री सुरेश चौरसिया द्वारा लिखित पुस्तक दहकते अंगारे का विमोचन किया गया। आमंत्रित अतिथियों में सर्वश्री चंचल साधक, श्रीमती किरण सिंह, श्रीमती अंजलि करण सरधाना, श्रीमती शशि पांडे शामिल रहीं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि में सर्वश्री राजीव नारायण मिश्रा, MP सिंह स्वामी, स्वामी पद्म नारायण आचार्य, विपिन मलहन, शालिनी सिंह, आलोक द्विवेदी, US शर्मा, कपिल शर्मा शामिल रहे। मंगलवार 21 जुलाई को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में जानी मानी लेखिका डॉक्टर वर्तिका नंदा के उपन्यास ज से जेल का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी, न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता और प्रोफेसर वर्तिका नंदा शामिल रहीं। समारोह में बोलते हुए न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता ने कहा कि यह पुस्तक कैदियों की जिंदगी में उम्मीद और रोशनी लाने के लिए एक प्रेरणादायी पुस्तक हो सकती है। जा से जेल केवल एक शब्द का सफर नहीं, बल्कि एक मानवीय संवेदनाओं, संघर्षों, जीवन के उन अनकहे पहलुओं का दस्तावेज है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बुधवार 22 जुलाई को जानी मानी लेखिका चंद्रकांता शिवाल का प्रथम काव्य संग्रह माँ फूलों में काव्यमोचन देवनगर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कवि श्री अनिल वर्मा मीत, डॉक्टर अलका सिन्हा, डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन, डॉक्टर सुधाकर पाठक, डॉक्टर चंद्र सेन सहित अनेक साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। इस समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामचंद वर्मा साहिल ने की। कार्यक्रम का संचालन युवा कवित्री डॉक्टर भावना शुक्ला ने की।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रही थी। प्रस्तुत कर रही थी युवा पत्रकार डॉक्टर गायत्री सक्सेना। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: और अब समय हुआ है कार्यक्रम हमारे अतिथि का। आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर मनोज वर्मन, जाने माने टनल एक्सपर्ट व रंगकर्मी, भेंट करता व प्रस्तुति काजल सूरी।
3: नमस्कार श्रोताओं, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर मनोज वर्मन। डॉक्टर मनोज वर्मन देश के अग्रणी टनलिंग और रॉक इंजीनियरिंग विशेषज्ञों में से एक हैं। उनके पास इस क्षेत्र में 4 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारत और विदेशों में अनेक महत्वपूर्ण भूमिगत निर्माण, टनलिंग, रॉक मैकेनिक्स और स्लोप इंजीनियरिंग परियोजनाओं से जुड़कर कार्य किया है। डॉक्टर वर्मन IIT दिल्ली से शिक्षित हैं और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर रॉक मैकेनिक्स के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वे वर्तमान में इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सलाहकार मंच से भी जुड़े हुए हैं। तकनीकी कार्यों के साथ साथ डॉक्टर वर्मन ज्ञान विनिमय और पेशेवर संवाद को बढ़ावा देने के लिए भी सक्रिय हैं। वे टनल टाइम्स इंडिया पत्रिका के संस्थापक हैं और टनल टेक तथा टनल FEM जैसे मंचों के माध्यम से टनलिंग और भूमिगत निर्माण क्षेत्र में संवाद, प्रशिक्षण और समावेशता को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर वर्मन रंगमंच से भी गहराई से जुड़े हैं और एक सक्रिय अभिनेता है। वे मानते हैं कि इंजीनियरिंग केवल गणना और डिजाइन तक सीमित नहीं है, उसमें संवाद, संवेदना और अभिव्यक्ति की भी उतनी ही आवश्यकता है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो मैं आपका जानना चाहूंगी, जो आपका सफर रहा है, कैसा सफर रहा है जिंदगी का आपका सफर?
4: जी, मेरी यात्रा बहुत सीधी रेखा में नहीं चली, बल्कि धीरे धीरे बनती चली गई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय मुझे ये महसूस होने लगा था कि जमीन के नीचे जो दुनिया है ना, वो जितनी जटिल है उतनी ही या उससे भी ज्यादा रोमांचक है।
3: जी।
4: और जैसा आपने कहा कि मेरा एक शैक्षणिक पड़ाव IIT दिल्ली भी रहा, और वहाँ मुझे
3: यहाँ मैं कहना चाहूंगी आपको, जैसे आपने IIT दिल्ली की बात कही, तो आपकी जो यात्रा है IIT दिल्ली से टनलिंग तक, टनलिंग एक्सपर्ट तक की यात्रा के बारे में भी आप हमें बता रहे हैं।
4: जी जरूर। तो वही मैं बता रहा था कि IIT दिल्ली में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ की पढ़ाई ने मुझे गहराई से सोचने, सवाल पूछने और जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याओं को एक साइंटिफिक रूप से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की आदत दी।
3: जी।
4: तो वहीं से मेरा रुझान इस क्षेत्र की तरफ हो गया था। लेकिन इस क्षेत्र की यानी कि टनलिंग और रॉक इंजीनियरिंग में झुकाव इसलिए भी हुआ क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है, क्योंकि देखिए हर पहाड़ अलग होता है, हर चट्टान अलग होती है, हर सुरंग की अपनी कहानी है, हर शहर में जो मेट्रो बनती है उसकी अपनी अलग कहानी होती है। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको इंजीनियर तो होना ही पड़ता है, जो मैं हूँ, एक जियोलॉजिस्ट की तरह भी सोचना पड़ता है, जो मैं नहीं हूँ, और कई बार आपको निर्णय बहुत प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के साथ, बहुत व्यावहारिक परिस्थितियों में निर्णय लेने पड़ते हैं। हर समय किताबी ज्ञान काम नहीं आता है। और धीरे धीरे, आपने यात्रा की बात की, धीरे धीरे इस क्षेत्र में काम करते हुए मेरा अनुभव बढ़ता चला गया और भारत में और विदेशों में बहुत सारे प्रोजेक्ट से, परियोजनाओं से मैं जुड़ा, वहां से सीखने का अवसर मिलता गया। तो काजल जी, आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं मैं, तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि टनलिंग ने मुझे केवल एक प्रोफेशन नहीं दिया, एक पेशा नहीं दिया, बल्कि सोचने का एक तरीका दिया है। वो है गहराई में जाकर सोचने का तरीका।
3: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही। और जिंदगी को गहराई से सोचने वाले ही अक्सर आगे बढ़ते हैं, सफलता मिलती है। तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टनलिंग की जब हम बात करते हैं तो वो आम आदमी के जीवन से कैसे जुड़ती है?
4: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अक्सर लोग टनलिंग को केवल इंजीनियर्स का विषय मानते हैं।
3: जी।
4: लेकिन सच तो ये है कि टनलिंग बहुत गहराई से आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए, जब हम मेट्रो में सफर करते हैं या पहाड़ों में किसी पहाड़ी सुरंग से गुजरते हैं या हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बनती है, जल विद्युत परियोजनाओं से, या शहर में जो पानी की लाइन है, सीवरेज की लाइन है, जो भूमिगत है, उनको देखते हैं, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं टनलिंग और भूमिगत निर्माण होता है। सुरंग देखिए केवल रास्ते को छोटा करने के लिए नहीं बनती, हालांकि वो उसका मुख्य उद्देश्य है। ये टनल्स जो हैं, ये सुरंगें हैं, वो जीवन को सुरक्षित, तेज और कन्वीनियंट भी बनाती हैं, सुविधाजनक बनाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंगें एक बहुत बड़ा काम ये करती हैं कि लोगों को साल भर संपर्क में रख सकती हैं। अभी पिछले दिनों जोजीला टनल का शुभारंभ हुआ, तो वो अब 12 महीने वो इलाका जोड़ा रहेगा आपके जम्मू कश्मीर से,
3: जबकि बहुत खतरनाक रोड है वो जोजीला वाली।
4: जी जी, तो अब टनल के माध्यम से वो 12 महीने खुला रहेगा, ये नहीं कि बर्फ गिरा और बंद हो गया। और शहरों में जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, भूमिगत मेट्रो है, जो यूटिलिटी टनल्स हैं जिसके जरिए बहुत सारी लाइंस निकलती हैं, उनके लिए, और शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए, जगह की कमी को की समस्या का समाधान करने के लिए ये सुरंगें बड़ी काम आती हैं। तो ये लोगों की जिंदगी से बहुत जुड़ी है। और मुझे एक बात ये कहनी है कि आम लोगों को ये समझना चाहिए कि सुरंग जो उन्हें कुछ मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसके पीछे कई सालों की मेहनत, कई वर्षों की योजना, सर्वेक्षण, डिजाइन, जोखिम का प्रबंधन और पता नहीं कितने

0: हजारों लोगों का परिश्रम होता है, क्योंकि देखिए टनल्स दिखती कम है लेकिन समाज को जोड़ने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने जी। अभी हमने जोजिला टनल के बारे में बात की, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि भारत विशेषकर हिमालय में टनलिंग की जो मेन चैलेंजेस हैं, मुख्य चुनौतियां हैं, वो क्या हैं?
0: जी हाँ, आपने बहुत सही बात की, क्योंकि जो हिमालय पर्वतमाला हमारे पास है वो भारत के उस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल टनलिंग मीडिया है हिमालय।
1: जी, जी, जी।
0: बहुत चुनौतीपूर्ण है, हिमालय में कई गुना बढ़ जाती है टनल्स की चुनौती, क्योंकि हिमालय अगर भूगर्भीय दृष्टि से देखें, जियोलॉजिकल दृष्टि से देखें, तो ये बहुत युवा पर्वत हैं। यहाँ चट्टानों की स्थिति जो है वो अक्सर जटिल होती है, तो कहीं आपको कमजोर चट्टान मिलती है, कहीं फॉल्ट जोन शेयर जोन मिलते हैं, ये वो नाम है फॉल्ट जोन शेयर जोन में, बिल्कुल एक तरह समझ लीजिए पिसी हुई चट्टान होती है, बहुत खराब। कहीं पे आपको अचानक बहुत सारा पानी मिलता है, वाटर इंडेक्स बोलते हैं, और कहीं पे जल्दी जल्दी अचानक बदलती हुई जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती है, भूगर्भीय स्थिति बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, और टनल चूंकि लंबी होती है, किलोमीटर तक चलती है, तो ये बहुत समस्या करती है कि आप किस चीज के लिए तैयार हो, क्योंकि बार बार जियोलॉजिकल कंडीशन बदल जाती है। क्योंकि जमीन के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो आपको वास्तविक स्थिति मिलेगी जब आप टनल की खुदाई कर रहे होंगे, उसका पूरी तरह से अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं होता, हमेशा संभव नहीं होता। आप जितनी भी जांच कर लें या जितने भी इन्वेस्टिगेशन कर लें, सुरंग खोदते समय पहाड़ आपको कई बार चौंका देता है, खासतौर से हिमालय में। तो इसलिए हिमालयी टनल्स में केवल डिजाइन बनाकर आगे बढ़ जाना काफी नहीं होता, आपको लगातार निगरानी रखनी पड़ती है, लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, फील्ड से सीखना पड़ता है, और आवश्यकता पड़ने पर जो डिजाइन जिसके साथ आपने शुरू किया है प्रोजेक्ट उसमें बदलाव भी जरूरी होता है। और आपने चुनौतियों की बात की, चैलेंजेस की बात की, तो दूसरी बड़ी चुनौती है सुरक्षा, सेफ्टी। सुरंग में जो सुरंग निर्माण के दौरान जो उसमें काम करते हैं लोग, उनकी सुरक्षा, आसपास के एनवायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा। और देखिए बहुत जरूरी चीज है कि जब टनल बनके तैयार हो जाएगी तो भविष्य में उसका सुरक्षित संचालन, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। और हिमालय हमें सिखाता है, अब ये सुनने वाली बात है काजल जी, कि हिमालय हमें ये सिखाता है कि इंजीनियरिंग में जल्दबाजी नहीं, विनम्रता चाहिए।
1: क्या बात,
0: हमें पहाड़ को हराना नहीं है, उसके साथ मिलकर, उसे समझकर, उसके साथ काम करना है।
1: क्या बात, वाह, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो डॉक्टर बर्मन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टनल टाइम्स इंडिया, टनल टेक और टनल FEM शुरू करने के पीछे आपकी क्या सोच रही?
0: जी ये सवाल मेरे दिल को छू गया है, क्योंकि कई वर्षों तक इस क्षेत्र में काम करते हुए मुझे महसूस हुआ कि भारत में टनलिंग में, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में काम तो बहुत हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उस पर एक गंभीर और लगातार निरंतर संवाद की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के जरिए, उसका दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, उस पर चर्चा, उस पर ज्ञान का आदान प्रदान उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो इसी सोच से हमने टनल टाइम्स इंडिया की शुरुआत की, जो मैगजीन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैगजीन है, दुनिया में बहुत मशहूर है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि टनलिंग पर केंद्रित एक ऐसा मंच बने जहाँ पे तकनीकी लेख हैं, प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, नई तकनीकी हैं, और जो इंडस्ट्री की आवाज़ है वो एक साथ आ सके। और जो बाकी दोनों आपने नाम लिए, टनल टेक और टनल FEM, ये कॉन्फ्रेंस की तरह की चीज़ें हैं। टनल टेक की शुरुआत इस विचार से हुई कि जितने विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर्स हैं, कंपनियां हैं, युवा इंजीनियर्स हैं, और जो डिसीजन मेकर्स हैं, निर्णय लेने वाले लोग, वो एक मंच पर आएं और खुलकर तकनीकी चर्चा करें। वहीं जो टनल FEM है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, ये महिलाओं पे केंद्रित है, क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन कई बार उन्हें वो विजिबिलिटी, वो दृश्यता और वो मंच नहीं मिलता जिसकी वे महिलाएं हकदार हैं। टनल FEM का उद्देश्य महिलाओं की अचीवमेंट्स को, उपलब्धियों को सामने लाना, उन्हें सम्मान देना, और खास तौर से युवा महिला इंजीनियर्स को प्रेरित करना है। तो काजल जी, ये मेरे लिए सिर्फ आयोजन नहीं है, ये मेरी तरफ से उस इंडस्ट्री को, उस क्षेत्र को वापस देने का प्रयास है जिसने मुझे ताउम्र इतना कुछ दिया है।
1: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत ये सोच रही है आपकी। और किस तरह से जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे आपने टनल FEM की बात की, जो महिलाओं के लिए, आपने जो महिलाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं या जिन महिलाओं को प्रेरित किया जाता है इस फील्ड में आने के लिए, किस तरह के चैलेंजेस रहे आपके?
0: देखिए मैं कहूँ तो मुझे चैलेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए, और ये मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 2024 में, अब 3 साल हो गए हैं, तो मुझे लगा कि शायद जो कंपनीज हैं या बाकी लोग हैं वो महिला इंजीनियर्स को इसके लिए पार्टिसिपेंट्स की तरह भेजने के लिए शायद उतने इच्छुक नहीं होंगे, लेकिन लोगों ने बहुत मुझे इनकरेज किया इस चीज़ के लिए। और जो पहला हमने किया था उसमें हॉल में, जो हमें आदत नहीं है, 40 महिलाएं बैठी हुई थी। हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पुरुष प्रधान हमारा फील्ड है, उसमें एक दो महिला दिख गई तो दिख गई, वरना तो मर्द ही होते हैं। तो वो मुझे इतना इनकरेजमेंट मिला उससे, और फिर वो 2025 में हुआ, 2026 में हुआ, तो चैलेंजेस के बदले, बल्कि मुझे, मैं तो गदगद हो गया जो मुझे जो रिस्पॉन्स मिला इस टनल एफएम के लिए
1: जी। इंजीनियरिंग और थिएटर, आप थिएटर से कैसे जुड़े? इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग फील्ड, थिएटर बिल्कुल अलग फील्ड, तो कैसे आप थिएटर से जुड़े? और ये भी जानना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग थिएटर इन दोनों ने मिलकर आपको कैसे गढ़ा? पहले तो ये जानना चाहूंगी किस तरह से आपका सफर रहा थिएटर में, कैसे आप थिएटर में आए?
0: जी, शुरू में जब बचपन में मुझे याद है, एक बार हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने स्कूल में मुझे खड़ा किया कि देखिए ये एक कॉम्पिटिशन है डिबेट का, उसमें आपको जो पक्ष और विपक्ष में बोलते हैं उसमें बोलना है। और मैं बहुत घबराता था, मंच का जो डर होता बहुत था मुझे, और उन्होंने जबरदस्ती खड़ा कर दिया और मैं बुरी तरह फ्लॉप हो गया उसमें। तो पहला प्रयास बिल्कुल ऐसा रहा कि मैं शायद जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर कॉलेज में एक बार ऐसी एक अंदर एक चिंगारी सी उठी कि शायद थिएटर में कर सकता हूँ। मैंने अपना उसमें जाके अपना कोशिश की और फिर होता चला गया, तो शायद मेरे अंदर था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लोग ये मानते हैं कि इंजीनियरिंग और थिएटर बिल्कुल अलग दुनिया है, ऐसा लगता है उनको, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग तर्क गणना और संरचना की दुनिया है, उधर थिएटर भावना अभिव्यक्ति और मानवीय संबंधों की दुनिया है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो एक दूसरे को, ये दोनों फील्ड एक दूसरे को बड़ी सुंदरता से, बड़े सुंदर ढंग से पूरा करते हैं, क्योंकि इंजीनियर ने मुझे अनुशासन दिया, किसी भी प्रॉब्लम को गहराई से समझने की क्षमता दी और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना सिखाया।
1: क्या बात।
0: तो वहीं थिएटर ने मुझे मनुष्य को समझना सिखाया, उसकी चुप्पी, मनुष्य की भाषा, उसका डर, उसका हास्य, उसकी संवेदना। थिएटर ने सबसे बड़ा योगदान ये दिया मेरे जीवन में कि जो मेरा एक्सप्रेशन है, मेरी अभिव्यक्ति को बेहतर बनाया और मुझे समझाया कि देखिए आपके अंदर नॉलेज कितनी भी हो, ज्ञान कितना भी हो, लेकिन ज्ञान प्रभावी तभी होगा जब वो सही ढंग से आप संप्रेषित कर पाए, सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाए। तो आज जब मैं टेक्निकल लेक्चर्स देता हूँ या ट्रेनिंग का काम करता हूँ या मंच पर बोलता हूँ, तो मुझे लगता है थिएटर ने मेरी बहुत मदद की। एक इंजीनियर के रूप में मैं सब्जेक्ट को तो समझता हूँ, लेकिन एक रंगकर्मी के रूप में मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वाला भी उसे महसूस करे। तो मेरे लिए काजल जी इंजीनियरिंग और थिएटर का संगम यही है कि एक मुझे गहराई देता है, दूसरा मुझे अभिव्यक्ति देता है।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। कोई ऐसी बात आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जिसने आप पर बहुत गहरा असर डाला हो या आपको लगा हो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है इस एक घटना से, इस एक बात से, कोई ऐसी बात?
0: जी हाँ, देखिए थिएटर और इंजीनियरिंग दोनों में ही कोई एक घटना को बताना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो जहन में आ भी रही हैं, लेकिन एक तो वक्त की कमी है, लेकिन सभी घटनाओं ने मुझे धीरे धीरे धीरे जो मैं हूँ वो बनाता चला गया हूँ मैं। और मुझे जो ये प्रभावित किया एक चीज़ ने कि बहुत सारे युवा प्रोफेशनल्स को मैंने देखा कि किस तरह से इन दोनों ही क्षेत्रों के जरिए वो आगे बढ़ते गए। तो आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो अपनी जीवन का जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो मुझे दोनों ही क्षेत्र में ये लगता है कि अगर मैंने टनलिंग में काम ना किया होता या मैंने थिएटर में काम नहीं किया होता तो मैं आज वो नहीं होता जो मैं आज हूँ। तो किसी एक घटना को बताना बड़ा मुश्किल है, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे सुन के वो बातें।
1: जी, तो युवा इंजीनियरों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको?
0: जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं पूरी संजीदगी से इसका जवाब देना चाहूंगा कि युवा इंजीनियर से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए डिग्री लेना ही काफी नहीं है। इंजीनियरिंग एक लगातार सीखने वाली यात्रा है। किताबें जरूरी हैं, नो डाउट, लेकिन फील्ड से सीखना, लोगों से सीखना, गलतियों से सीखना और जो लगातार नई टेक्निक्स आ रही हैं उनसे सीखना उतना ही जरूरी है। एक बात और युवा प्रोफेशनल्स के लिए कि अपनी जो आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटी है, तकनीकी क्षमता के साथ साथ संवाद कौशल पर भी ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छा इंजीनियर वही है जो समस्या को समझ सके, समाधान सोच सके, लेकिन उसको अच्छे सरल भाषा में स्पष्ट तरीके से समझा भी सके। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, अगर ज्ञान आपके व्यक्ति नहीं हो पाया तो उसका प्रभाव बहुत सीमित रह जाता है। तीसरी बात युवा इंजीनियर्स के लिए कि धैर्य रखिए, पेशेंस। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, गहराई समय के साथ आती है। इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस, तुरंत प्रसिद्धि, तुरंत सफलता की चिंता न करें, उसके बजाय अपने काम में ईमानदारी रखिए और निरंतरता रखिए, लगातार सीखते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात युवा इंजीनियर्स के लिए कि जो भी काम करें उसमें एक पर्पस ढूंढिए, उसमें उद्देश्य खोजिए। इंजीनियरिंग केवल कंस्ट्रक्शन करने का काम नहीं है, केवल संरचनाएं बनाने का काम नहीं है, ये समाज को जोड़ने, जीवन को सुरक्षित बनाने और हमारे सबके भविष्य को बेहतर बनाने का एक लाजवाब माध्यम है।
1: जी डॉक्टर बर्मन, आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने, आपसे जो बातचीत रही बहुत ही सार्थक रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी जी, धन्यवाद काजल जी।
2: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। हमारे अतिथि में आज आपने डॉक्टर मनोज बर्मन, जो कि जाने माने टनल एक्सपर्ट व रंगकर्मी हैं, उनसे भेंट सुनी काजल सूरी की। भेंटकर्ता और प्रस्तुति इस कार्यक्रम की थी काजल सूरी। और अब समय हुआ है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी में।

0: शिव कुमार बटालवी दा लिखिया ए गीत जगजीत सिंह दी आवाज़ विच हुणे तुसी सुन रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नूं इजाजत दिओ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है।

0: है उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। इस बीच दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुल गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। समग्र राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफल और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। भारत की युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी बन गई हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held the third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
3: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
2: On the 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson Saurav Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines. Union Minister Prahlad Joshi will be the new education minister following the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio.

0: polio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Talking to media after the announcement, Mr. Joshi said he will try his level best to meet the expectations from him.
1: Thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility, and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department with full strength. I will try to work with all humility and honesty.
0: President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effect. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honour the bravery of Indian soldiers who had sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. Yemen's Iran-backed Houthi rebels have said that they launched missiles and drone attack on Saudi Arabia in response to Saudi airstrikes on the strategic Red Sea port city of Hodeidah, marking a fresh threat over the security of key shipping routes. Houthi military spokesperson Brigadier General Yahya Sari said the attack targeted Aramco facilities in the Red Sea cities of Yanbu and Jizan. Meanwhile, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi called for diplomacy and dialogue to resolve the Yemen conflict, urging all sides to avoid further military confrontation in remarks published by Iran's state-run newspaper. IMD has issued a red color warning for extremely heavy rainfall over Madhya Maharashtra and Odisha today. IMD has forecast heavy to very heavy rainfall conditions over Chhattisgarh, Gujarat, Konkan and Goa till tomorrow. In Delhi, prediction is of cloudy sky with a spell of very light to light rainfall during the day. And in squash, top seed Anahat Singh has scripted history by becoming the first Indian to clinch the World Junior Championships. Anahat defeated Egypt's Rukhaya Saleem 3-0 in the girls' singles final of the World Junior Championships at Niagara on the Lake, Canada. And that is the end of this news bulletin. नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 10:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, लीजिए पूरे 30 सेकंड, और ये समय हो गया है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद का। जी आपकी पसंद का। देखिए मुझे तो लगा था आप किसी याद में खोई हुई थी।
3: नहीं, मैं सोच रही थी जैसे ही टाइटल आएगा ना तभी सुषमा का साथ दूंगी, और आज हम जो दोस्त हैं आपके साथ, सुषमा का नाम तो मैंने ले ही दिया, और मैं अपना भी बता दूं, मैं हूं आपके साथ कुसुम
2: जी। तो सुषमा और कुसुम दोनों से आज खूब सारी बातें आपसे करने वाले हैं, और मैं तो देखिए इतना आज ना, पता है मैं कुसुम से बात कर रही थी कि याद जो है ना, मुझे आज बड़ी आ रही है अपनी कोई ऐसी बचपन की याद, मतलब मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती ऑन माइक, लेकिन सच में वो मेरी शरारत थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह की बातों को जब हमें जो यादें आती है ना, ये कभी शरारतों की, कभी अपनों की, कभी किसी घटना की, हाँ बिल्कुल। तो ये ना, मतलब कभी कभी ना आंखें नम करती है, कभी चेहरे पर मुस्कान लाती है, और कभी थोड़ा उदास कर देती है,
3: कभी कभी घबरा घबराहट भी पैदा कर देते, भाई किया तो बड़ा खराब काम था लेकिन हम बता नहीं पाए। खैर यादें है ना,
2: जी
3: कभी ना
2: जी
3: कभी एक यादों की पोटली ही तो है जिसको हम समेटे बैठे रहते हैं, और कहीं भी कभी भी बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी की इजाजत के हम उनका पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं।
2: बिल्कुल सही, क्योंकि यादों में ना हमें किसी की इजाजत लेनी ही नहीं पड़ती।
3: बिल्कुल, यही तो वो चीज है जो हमें अपने में बांधे रखती है। और हम भी आपसे कहेंगे, आप भी कोई अपने पिटारे से अपनी एक खूबसूरत सी याद निकालिए, अपनी कोई एक शिकायत जो आपने सबसे पहले की हो, वो एक शिकायत या आपसे किसी ने की हो, तो आज आपकी पसंद के कार्यक्रम में मेरे और सुषमा की तरफ से ये टास्क बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। आप हमसे जुड़े, और हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो ईमेल का एड्रेस है सुषमा हम बता दें।
2: जी हाँ, iprradiodelhi@gmail.com इंतजार रहेगा आपकी यादों के बारे में जानने का। जी तो सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और ये जी जी और ये बहुत खूबसूरत गीत हरिहरन जी की आवाज में, यादें फिल्म से।

दोस्तों, यादों का जो हमने आपसे सवाल पूछा कि अपने खूबसूरत यादों को ज़रूर हमारे साथ साझा करें, हमें इंतज़ार है आपकी मेल्स का। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com।

देखिए की बात हम यादों की कर रहे थे, अभी एक बहुत छोटी सी बात, अभी का हम एक वाक्य साझा करते हैं आपको, मैं और सुषमा।

0: हुआ क्या कि हमने यादों की एक पोटली बना ली और आपको कहा उसमें से एक कोई एक शिकायत जो आपने सबसे पहले किसी को की हो या आपको किसी ने की हो वो हमसे साझा कीजिए। सारी बात कर गए और ये बात हमारी एक यादों में समा गई। वो कैसे? वो ऐसे कि सुषमा ने मेरे वाला फेडर ही नहीं दिया था, वो भूल गई बातों में आपसे, मतलब बात करने के लिए इतना एक्साइटेड थी भूल गई। और शायद कह सकते हैं कहीं कहीं ऐसा तो नहीं किया सुषमा कि मेरी आवाज जाए नहीं, लोग मेरी बात ना सुन
1: बिल्कुल, ये कोई साजिश नहीं थी मेरी, लेकिन हाँ मैं इतना खो गई, इतना खूबसूरत गीत अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, और मुझे लगा, और इस चक्कर में तभी श्रोताओं आपने कुसुम की जो आवाज सुनी होगी ना, वो थोड़ी हल्की हल्की सुनी होगी, तो मैं इस बात को मैं एक्सेप्ट करती
0: पर एक याद बन गई।
1: हूँ जी, बिल्कुल सही। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा संदेश हमारे पास आया है कि यादें तो बहुत सी हैं, मुझे जब बैंक में सर्विस के लिए लेटर आया था वो मेरी लाइफ की कभी ना भूलने वाली याद है।
0: भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक जॉब के लिए लेटर आना ही अपने आप में बहुत बड़ा मतलब
1: बहुत बड़ा
0: वाक्या
1: मौका
0: है।
1: होता है ये। हाँ
0: हाँ,
1: जी,
0: और ये
1: और
0: संदेश भेजा है
1: जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया के साथ, और अच्छा लगा, इन्होंने हमें गुड मॉर्निंग भी विश किया, तो आपको भी गुड
0: तुलसी मस्कीन
1: मॉर्निंग।
0: जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं होस्ट कुसुम जी, सुषमा जी, गुड मॉर्निंग, हमारी सारी
1: जी
0: यादें रेडियो के साथ जुड़े, क्या बात है।
1: जी जी
0: लगभग 55 साल से अब क्या करें, आपका साथ छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा। 22 मिनट हो गए हैं, एक भी संदेश नहीं लिया। भाई क्या करें, हम और भी यादों में खो गए थे ना।
1: नहीं देखिए, 22 मिनट आपने 10 मिनट समाचार के भी उसमें शामिल कर लिए, जबकि अभी
0: हाँ,
1: प्रोग्राम तो हमारा 10:10 पर शुरू होता
0: और
1: है।
0: सिर्फ अभी तक 15 मिनट ही हुए हैं अगर काउंट करें तो।
1: जी। और इन्होंने ये संदेश भेजा है एवर ग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, बीना मस्कीन, आशीष और चैतन्य और चंडीगढ़ से भी अपने कुछ साथियों के साथ है।
0: राहुल, रचिता, केशु, रिधान खुराना जी ने।
1: जी, और अगला संदेश हम लेंगे अब, और ये भी बड़ा खूबसूरत सा संदेश लग रहा है।
0: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से ये संदेश भेजा है हमें रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने। कहते हैं, मेरी यादें मेरे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। इसमें बचपन की मासूमियत, परिवार का प्यार, दोस्तों का साथ और जीवन के अनेक दुख सुख समाए हैं। समय बीत जाता है लेकिन यादें हमेशा दिल के किसी कोने में जीवित रहती हैं। 6 वर्ष की उम्र में पिता का देहांत हो गया, बाकी पूरा जीवन माँ ने संभाला, अब वो भी नहीं है। टू मच मिस यू एवरीवन।
1: हाँ, ये तो देखिए, एक कहते ना, कड़वी सच्चाई है, लेकिन सबकी लाइफ में ये कमी रहती है, ये मौका, मतलब क्या कहें, मौका ही क्या बोलें, ये होता है, ये एक
0: ये
1: नेचुरल
0: जीवन
1: थिंग
0: का
1: है,
0: एक सत्य
1: सत्य
0: है,
1: है। हाँ
0: हम
1: जी,
0: सभी को, आपको, हमें सभी को इसको, इसका सामना करना
1: करना
0: है।
1: है। हाँ जी,
0: ये भी लिखते हैं कि हम भी आपके नियमित श्रोता हैं और बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं। गुजारिश है आपसे, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखेगा। जी बिल्कुल।
1: और ये बहुत ही इमोशनल सा संदेश है आपका, और सच में हम सब भी इमोशनल हुए, और लगता है जब सोचते भी हैं इतना तो ऐसे दिल घबरा जाता है, लेकिन हाँ यादें हैं तो यादें तो कहते हैं ना, मैंने जैसे कहा था कि आंखें भी नम करती हैं, चेहरे पर मुस्कान भी लाती हैं, और कई बार थोड़ा गुदगुदी भी करती हैं यानी गुदगुदाती हैं
0: और ये देखिए ना, दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी जी ने संदेश भेजा है।
1: और ये इन्होंने कहा कि हमें किसी भी गीत में शामिल करें।
0: और
1: ये
0: ये
1: हैं
0: है
1: मास्टर अशोक वर्मा जी हैं, और इन्होंने संदेश भेजा है हमें जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई जान और राजकुमार बोडाना के साथ ही संदेश भेजा, और अपनी पसंद की फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा है।
0: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, इन सभी ने अपनी यादों के पिटारे में से एक याद करके हमें संदेश भेजा है
1: जी
0: कि मेरी कॉलेज के दिनों की यादें आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए, वे मेरे परिवार की तरह थे, लेकिन ग्रेजुएशन के ठीक बाद नौकरी और रोजगार की तलाश में हम अलग-अलग हो गए। जीवन की व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बीच आपसे संपर्क छूट गया, और इन पुरानी यादों को तरोताजा करने के लिए हमने लगभग 35 साल बाद एक
1: एक
0: गेट टुगेदर का आयोजन किया। वाह
1: सच,
0: क्या
1: मैं
0: बात
1: देख
0: है।
1: रही हूँ, पुनर्मिलन किया
0: हाँ,
1: इन्होंने
0: उस
1: आयोजित।
0: मुलाकात में हमने अपने कॉलेज के दिनों की अनगिनत यादें ताजा की, बातें की। मजेदार ये है कि एक दूसरे को मजाक किया और अनोखे नामों से पुकारा जो हमने कॉलेज के दिन में एक दूसरे को दिए थे, और ये पल हमारे लिए भाव

0: यादगार था, ऐसा लगा हमने फिर से अपने पुराने दिन में हम लौट आए हों।
1: मैं इनको इनका मैसेज पढ़ते पढ़ते, आप मैसेज पढ़ रही थी ना, और मेरे दिमाग में अपनी यादें आ रही थी, यानी
0: हाँ
1: कॉलेज में हम भी अपने दोस्तों को कैसे कैसे बुलाते
0: बिल्कुल,
1: थे।
0: अलग अलग नाम बड़े मजाकिया अंदाज में
1: हाँ
0: होते थे, है
1: जी
0: ना।
1: हाँ
0: सभी
1: जी
0: शनेजा जी का हमें संदेश मिल रहा है, कहते हैं नमस्कार प्यारी बहनों, यादें दिल को सुकून देती हैं, वो कितनी भी पुरानी हो जहन में बिल्कुल समाई होती है। जब मैं गांव 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो स्कूल में 15 अगस्त को झंडा फहराने जिला जो शिक्षा अधिकारी थे आए थे, उन्होंने मुझे, प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाया, मैं घबरा गया। उन्होंने मुझे 100 रुपये का इनाम दे कहते हुए कि मैथ के अध्यापक की गैर मौजूदगी में क्लास को पढ़ा दिया करता था, मैथ में मैं बहुत ज़्यादा होशियार था, 100 में से 98 अंक हासिल
1: बिल्कुल
0: भी किए
1: सही,
0: थे।
1: बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे
0: वो खूबसूरत
1: हैं।
0: याद आज भी मुझे गर्व से बांधे रखती है, और ये है सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ सिटी से। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर टीचर नहीं है और आपने उस समय का सदुपयोग किया।
1: जी बिल्कुल सही। और देखिए, क्योंकि कहते हैं ना, ऐसी बहुत सारी यादें हैं अनगिनत, तो हमारे और श्रोता जो थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि ipradiodelhi@gmail.com पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज कुसुम, आपने क्या सवाल पूछा अपने श्रोताओं से?
0: उसका जवाब कुछ तो आ गया है, बाकी जो भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें। आज हमने जो यादों में समाये हुए आपके पिटारे हैं, उस पिटारे में से कोई एक शिकायत जो आपने सबसे पहली बार किसी से की हो, या आपको वो पहली शिकायत संदेश के माध्यम से हमें भेज दीजिए, ताकि आपको भी याद आएगी वो खट्टी मीठी यादें अपने यादों के पिटारे में से।
1: जी, आपकी मेल्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाएंगे आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: हम भी तो
1: यादों की पिटारे में सुषमा हम और आप दोनों खो गए, क्योंकि आपके संदेशों में यादें हैं, हम उसमें खो गए। हम देख रहे थे किस किस ने क्या क्या लिखा, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए ना,
0: और मैं कह रही थी ना, मैं आपको इसलिए बीच में बोल रही कि हमने सिर्फ यादों का रंग खोल रखा है।
1: भाई वो भी बहुत जरूरी है, है ना?
0: बिल्कुल।
1: देखिए ना, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार ने संदेश दिया और कहते हैं, आप दोनों बहनों को हार्दिक नमस्कार।
0: तो हम दोनों की तरफ से
1: नमस्कार। बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं, बेहतरीन नगमे सुनवा रहे हैं, आप यादों के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं। अब यादें तो हमारे जीवन बहुत कुछ कहती हैं। यादें, हम अपने बचपन और स्कूल के दोस्तों की अतीत खूबसूरती यादों को दिल से संजोए हुए हैं। कुछ खुशियों और कुछ गम की यादें हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे जीवन की यादें यदि हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। सभी अब तो रेडियो की यादें भी बहुत कुछ है। लास्ट में आपने बहुत अच्छा लिखा।
0: बिल्कुल। देखिए, हमारा बिल्कुल इनके साथ ऐसा ही साथ है ना, मतलब बस हम मिलते नहीं है लेकिन हम रोज गुफ्तगू करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना? देख नहीं पाते लेकिन रोज बातें करते हैं। अपने दिल की भड़ास भी निकालते हैं, गुस्सा भी होते हैं और अपनी अपने जज्बातों को भी शेयर कर देते हैं।
1: देखो सुषमा, कहते हैं ना, मीठा मीठा रहेगा तो वो तो फिर नुकसान दे जाता है ज्यादा मीठा।
0: बिल्कुल सही। तो कभी कभी तकरार भी जरूरी है।
1: खट्टी मीठी
0: बिल्कुल
1: वो बैलेंस कर देता है मिठास को। और अगला संदेश हम लेते हैं
0: रवि कुमार जी का है, और इन्होंने कस्बा बराड़ा अंबारा हरियाणा से भेजा है, और इन्होंने अपने साथी रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल के साथ ये संदेश हम तक पहुंचाया है और अपनी पसंद का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। अगला संदेश जो है वो भेजा है,
1: ये है मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे कुमार, संचित, प्रथमेश, सर्वत, प्रणाली, सानवी, हर्षता, समस्त देशमुख, राजे यादव, वायल परिवार।
0: और इन्होंने लिखा बहुत अच्छा है कि आकाशवाणी जलगांव केंद्र महाराष्ट्र में पहली बार आकाशवाणी पे 1981 में आया था, वही याद अभी तक मेरे को याद है। आने से तो बहुत खुश हुआ था जब मैं आकाशवाणी सुनता था।
1: हाँ, कहते नाम आने से बहुत खुश हुआ।
0: जी,
1: क्या बात है? ये अपने

0: की उम्मीद पूरी हुई।
1: दीजिए एक और
0: नीशु मल्होत्रा
1: संदेश।
0: जी कहते हैं, जवाब तो दिया है, हमें शामिल नहीं करोगे क्या? क्यों नहीं करेंगे, देखिए ना, यादें जीवन से बहुत, यादों का जीवन से बहुत गहरा रिश्ता है दीदी जी। यादें नहीं होती तो जीवन में कौन किसको याद करता। वाकई खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का।
1: और अगले हमारे साथी हैं सुदर्शन मुखी। इन्होंने भी लिखा है कि ये संदेश अपना भेजते हैं शांतिनगर सोनीपत से। सादर प्रणाम लिख रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग आपको। और साथ में लिखते हैं कि हमें तो अपने बचपन और स्कूल और कॉलेज की यादें बहुत मीठी लगती हैं, क्योंकि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि बस वो ही होता ना जिसमें किसी की परवाह नहीं होती हमें।
0: और इन्होंने हमें कहा भी है कि आपका हर दिन सुखद हो।
1: जी तो
0: राधेश्याम देवांगन जी का हमें संदेश मिला इंदिरा नगर भवरपुर से। राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा, राजू, जगदीश देवांगन।
1: अनुवर
0: और
1: जाथिया का भी संदेश आया है मुंबई से। शमशुल खान और अनुराज बेनारा, इन साथियों के नाम भी वो साथ में मेंशन कर रही हैं। इन्होंने अपनी पसंद की फिल्म का गीत सुनना चाहा है और ये
0: उसके बारे में भी कुछ बता रही
1: बता
0: हैं
1: रही
0: ये।
1: हैं। हाँ जी,
0: और अगला संदेश हमें मिला है,
1: इन्होंने लिखा अपनी याद के बारे में कि खूबसूरत डार्क ग्रीन शरारा पहना हुआ था जो इनकी
0: जी जी का 13वां बर्थडे था,
1: बर्थडे था। जी तो जी हाँ, कभी
0: परी
1: कभी
0: जैसी लग रही थी, लिखा है,
1: जी
0: मंजर आज भी याद है। ये याद
1: और वो
0: है।
1: सेम ड्रेस थी जो महबूब की मेहंदी फिल्म में जो पहनी थी लीना चंद्र
0: लीना चंद्रवरकर
1: वरकर
0: ने, क्या
1: ने।
0: बात है।
1: देखिए पूरी याद है,
0: हाँ,
1: बहुत अच्छी सी बात।
0: मीनम, ये है मीनम देव, नाम देव, कहते हैं कि ये एक गाने की इन्होंने फरमाइश की है। याद तो हमारे साथ कोई नहीं साझा की, बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शोरे नामदेव। कोई कॉमा लगा दीजिए, थोड़ा दूर कर दीजिए, क्योंकि सारे नाम एक साथ हैं। इनका संदेश हम ले चुके हैं
1: जी
0: राजस्थान
1: ठीपा
0: से।
1: जी हैं, आपने ये
0: हाँ,
1: संदेश भेजा और देखिए आपका संदेश हम शामिल कर चुके हैं। अनिल जैन हैं, इन्होंने मलियान सरधना मेरठ से संदेश भेजा है। जैन साहब संयम और मुस्कान जैन के साथ ये हैं
0: मोहनराज खोरवाल जी हैं
1: जी।
0: ये, उत्तम नगर दिल्ली से। कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश ने हमें संदेश भेजा।
1: और ये भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते
0: रोशन
1: हैं।
0: देवांगन जी संदेश भेज रहे हैं, रोशन देवांगन जी के साथ है कौशल्या देवांगन। और ये संदेश इन्होंने भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ है हेमलता, डिंपल देवांगन। कहते हैं, बचपन में मेरा एक दोस्त था, साथ रहते, दिन भर खेलते, एक दिन ऐसा आया बिछड़ गए, क्योंकि उनके पापा डॉक्टर थे, ट्रांसफर हो गया। मुझे दोस्त की बहुत याद आती है, फ़ोन का ज़माना नहीं था, सालों बाद आखिरकार वो दोस्त मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिल ही गया, बात हुई, बहुत अच्छा लगा। दोस्त ने बताया कि मैं सागर मध्य प्रदेश में कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। क्या बात है।
1: वाह, ये तो एक बड़ा वाला सरप्राइज था।
0: हाँ,
1: जी और संदीप मकर हैं ये, इन्होंने ये अपना संदेश भी अपने साथियों जैसे ज्योति, मन्नत, भारत, कमल साहनी और पिंगा वाला चौक से इन्होंने ये भेजा है
0: जालंधर से
1: जालंधर से।
0: जी।
1: और अपनी पसंद की फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा है।
0: हाँ, और लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ, ये भी अपनी पसंद का गीत, कहते हैं किसी में भी शामिल कर लीजिए। और अगला संदेश हमें मिला है सिद्धार्थ गोंधाने जी का, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। इनके साथ हैं अर्चना ताई, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंधाने जी, और शंभुल ये हैं श्याम,
1: शंभू दयाल
0: हाँ, गांव
1: खटक
0: जाखोद से हैं ये, विमला
1: जी
0: देवी, पूजा खटक, इन सभी ने संदेश भेजा। और गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का ये।
1: जी आप चाहें तो आप यादों के बारे में आज हमने
0: हाँ,
1: पूछा है
0: शेयर कर
1: क्या।
0: सकते हैं। एमडी इरशाद जी ने हमें संदेश भेजा है, ये है सुषमा।
1: कस्बा बिलराम से इन्होंने अहमद शाह शाह शाहजहां बेगम और मरियम जैनब के साथ अपना संदेश पहुंचाया है और ये भी अपनी पसंद का ही गीत सुनना चाहते हैं।
0: मुकेश कश्यप जी का हमें संदेश मिला, कहते हैं किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से हैं ये। इनके साथ है सोनू, शीतल, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। ओम प्रकाश राय जी ने संदेश हमें भेजा है, ये हैं कहते हैं आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को गुड मॉर्निंग, आपसे एक शिकायत है, हम लोगों को मेल में शामिल नहीं करते, तो ये क्या हो रहा है सुषमा।
1: आज सबके शिकायती मेल्स आ रहे हैं हमारे
0: हम लोगों
1: पास।
0: से नाराज़ है, प्लीज़ हम लोगों

0: अपने मेल किसी भी गीत में शामिल करें। कोटवा नारायणपुर बाबा भट्टी बलिया से ये है श्रीमती उषा राय।
1: अमित कुमार राय के साथ हैप्पी राय से के साथ इन्होंने संदेश भेजा, और साथ ही कुछ साथी हैं इनके दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, इनके साथ भी इन्होंने भेजा है अपना संदेश हम तक। मधु किरण ने भी संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि हमारी ये भी शिकायती मेल, अभी हमने तो यादों की बात की, अब तो शिकायत पे शिकायत लगाए जा रहे
0: नहीं भाई सुषमा,
1: हैं
0: ये सही है हमारे श्रोता,
1: आज
0: क्योंकि हमने कहा पहली शिकायत, इनकी पहली शिकायत ही अब है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, नवी हसन जी
1: बिल्कुल
0: संदेश भेज रहे हैं, और ये एक और संदेश मिला राजी शर्मा का, आदर्श नगर मलौट पंजाब से। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा।
1: जी। और इन्होंने जैसे कि हमने यादों की बात की थी तो कुछ नहीं, इन्होंने कुछ भी अपने मैसेज में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है।
0: दिग्दर्शन जी का हमें संदेश मिला मेरठ कैंट से, इनके साथ है कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया, दर्शन भाई। कहते हैं आदरणीय उद्घोषक उद्घोषिका को नमस्कार। मतलब इन्हें ये नहीं पता आज के कौन है इनके साथ, भाई हमें आपसे
1: ये तुक्का
0: शिकायत
1: मारे,
0: है।
1: तुक्का ये
0: तुक्का,
1: पहले क्या।
0: हाँ,
1: हाँ
0: उद्घोषक
1: जी
0: और उद्घोषिका जो भी हो।
1: हाँ जी। और देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, अब अपनी बारी का जो काफी देर से इंतजार कर रहा था वो आपके कानों तक पड़ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि चलते चलते जब तक म्यूजिक है एक और मेल शामिल करेंगे। लीजिए, अब तो बहुत ही खूबसूरत गीत शुरू हो चुका है, तो हम ऐसा करते
0: उसके
1: कुसुम
0: हाँ
1: इसके
0: पहले
1: बाद
0: गीत, उसके बाद आपके संदेश।
1: जी।

0: और देखिए ना, संदेशों की बरसात हो रही है। मौसम है बरसात का, ठीक है, लेकिन हम तो बरसात के मजे ले रहे हैं, वो भी मौसम के, यादों के, शिकायतों के, जो हम तक पहुंच रहे हैं हमारी ही शिकायत के जरिए कि आपने संदेश नहीं लिया। भाई संदेश ले रहे हैं, लेकिन आप इतने सारे संदेश एक के बाद एक डबल ट्रिपल और चार पांच बार भेज देते हैं, तो एक ही बार भेजिए, लेकिन भेजिए ज़रूर। और अपनी जो है शिकायत दर्ज करानी है कराइए, याद अगर शेयर करनी है वो भी कराइए। अब देखिए ना, हमें संदेश मिला है नवी हसन जी का, रमेश चौहान जी का, दिग्दर्शन कौर, राजी शर्मा, MD इरशाद और रमेश चौहान, हीरामन शिंदे, अनिल बी गोड़के, और ये है रविंद्र मोहनदास, RL देवांगन, अनिल बुरांडे, अनिल जैन, अनिल
1: कटारिया जी,
0: अकरम हुसैन प्रिंस, रविंद्र मोहन, अकरम हुसैन प्रिंस का एक बार फिर, मतलब दो तीन मैसेज है रविंद्र मोहनदास जी, और ये ताज मोहम्मद जी हैं, इनके साथ बहुत सारे इनके साथ ही हैं, सुभाष योगी जी हैं, पंकज शर्मा जी हैं, रुपेश शंघाई जी हैं, और आप सभी ने हमें संदेश भेजा। आप सभी को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत
1: धन्यवाद,
0: आपने कार्यक्रम में शिरकत की, क्योंकि समय कम है, हमारे पास समय की कमी है। तो फिर मिलेंगे, मैं और सुषमा आपसे फिर किसी दिन मुलाकात होगी इस वादे के साथ, लेकिन कुछ बात सुषमा ने भी कहनी है, कहिए सुषमा।
1: बस मैं, क्योंकि देखिए आज मन की बात कार्यक्रम होता है, तो आप आज ज़रूर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मन की बात, रेडियो कार्यक्रम मन की बात ज़रूर सुने सुबह 11 बजे। लेकिन हमें आपसे 55 पर भी विदा लेना होगा, लेकिन उससे पहले एक खास बात ये कि जुगल हंसराज और हमारे जो फेमस, एक तरह से कहें ना कि
0: का फेमस डायलॉग है, हाँ, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ
1: कहते हैं,
0: शत्रुघ्न सिन्हा
1: जी आज उनका जन्मदिन है, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और बस हम आपसे विदा चाहते हैं, आप यूं ही बने रहें हमारे साथ।
2: आज तो पार्टी चाहिए,
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे,
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी, RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं, नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या कहा?

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
5: चलो,
4: कहाँ
5: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
2: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुँचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली

दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में
यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहाँ के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं।
उन्होंने इस काम में कई तरह

की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गिर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी
अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूँ, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।

ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृंखलाः दुष्करं वातावरणं शत्रु समाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मा भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे अहं सर्वान् हुतिंगतान् वीर सैनिकान् च प्रति श्रद्धापूर्वकं नमनाञ्जलिं प्रस्तौमि। सखायः, अद्यतनं भारतं केवलं स्ववीराणां स्मरणमेव न करोति, अपितु नूतन संततिं यावत् तदीय गाथाः अपि प्रापयति। अनया भावनया अस्मिन् वर्षे विशिष्टा एका शौर्य विजय यात्रा प्रवर्तिता। जुलाई मासस्य चतुर्दशे दिनांके दिल्ल्याः राष्ट्रिय समर स्मारकतः समारब्धा एषा मोटर साइकिल यान यात्रा द्रासस्थितं कारगिल समर स्मारकं यावत् प्राप्नुयात्। एतस्याः सन्देशः अस्ति वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट इति। एषा यात्रा अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्राय प्रदत्तं बलिदानं कथमपि विस्मृतियोग्यं न भवति। सखायः, अद्यत्वे भारतं स्वकीयानां सैनिकानां साहसवर्धनेन सह स्वीयाः प्रविधिक्षमताः अपि सततं दृढाः करोति। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरि इत्याख्यः योद्धृजलपोतः सम्मिलितः जातः। एषः आधुनिकः योद्धृजलपोतः भारते एव परिकल्पितः निर्मितश्च वर्तते। एतस्य निर्माणे प्रतिशतं 75 मितादपि अधिकानां स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः जातः। आत्मनिर्भर भारतस्य वर्धमानायाः शक्तेः प्रतीकभूतः अस्ति एषः। एतस्मिन्नेव मासे DRDO इत्यनेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इत्याख्यस्य प्रक्षेपकस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतम्। एतस्याः सफलतायाः कारणभूतः अस्माकं वैज्ञानिकानां अभियन्त्रीणां च सामूहिक परिश्रमः अस्ति। द्वित्रदिनेभ्यः पूर्वं DRDO इत्यनेन कुशा मिसाइल इत्याख्यस्य प्रक्षेपकास्त्रस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतमेव। सखायः, कामं अद्य रक्षोत्पादनं भवतु, रक्षा निर्यातो वा, उत मित्रदेशैः सह राजनीतिक सहयोगः, अद्यत्वे भारतं सततं नव शिखरं प्रति वर्धमानम् अस्ति। एतस्य मासस्य आरम्भे अहं इण्डोनेशिया देशे आसम्, यत्र ब्रह्मोस इति एतेभ्यः प्रक्षेपास्त्रेभ्यश्च विशिष्टा सहमतिः सञ्जाता। विश्वस्य विश्वासः भारतस्य रक्षोपकरणेषु प्रविधिषु च वर्धमानः अस्ति। आयान्तु ऐषमः कारगिल विजय दिवसावसरे वयम् अमरान् हुतिंगतान् वीरान् नमामः, अथ सुरक्षितस्य सक्षमस्य च आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे स्वकीयं संकल्पं दृढतरं कुर्याम। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इति कार्यक्रमस्य विगते अंके अहं भवद्भिः सह कैच द रेन इत्याख्यस्य अभियानस्य चर्चाम् अकरवम्। अहं आग्रहं कृतवान् आसम् यत् वृष्ट्याः प्रत्येकं बिन्दुं संरक्षयितुम् एतदभियानं जनान्दोलन रूपं करणीयम्। कैच द रेन इत्यस्य सन्देशः अत्यन्तं ऋजुः अस्ति। यत्र वृष्टिर्भवेत्, यदा वृष्टिर्भवेत्, जलं तत्रैव संरक्षन्ताम्। एतदर्थं जुलाई मासस्य चतुर्थ दिनांकात् समग्र देशे एकं विशेषाभियानं प्रचाल्यमानमस्ति। एतस्य अन्तर्गतं वृष्टिजलस्य संचयः, भूमौ जलपूरणं, प्राचीनानां जलस्रोतसां पुनर्जीवनं, वृक्षारोपणं इत्येतेभ्यः गतिः दीयमानास्ति। मम अत्यन्तं प्रसन्नता अस्ति यत् ग्रामाः भवन्तु, नगराणि वा, पंचायत केन्द्राणि स्युः, सामाजिक संस्थाः वा, प्रतिस्थलं जनाः सोत्साहम् एतस्मिन् अभियाने सहयोगं कृतवन्तः। कुत्रचित् प्राचीनेषु तडागेषु मालिन्यं निष्कास्यमाणमस्ति, कुत्रचित् च कूपेभ्यः बावडी इति जलाशयेभ्यः पुनर्जीवनं प्रदीयमानमस्ति। पिहिताः बोर्वेल इति भूगत जल नलिकाः अधुना भूमौ जलपूरणार्थं माध्यमाः जायमानाः सन्ति। सखायः, मध्यप्रदेशस्य सीधी जनपदे प्रायः 1500 सरोवराः निर्मिताः सन्ति। नरसिंहपुरे अमृत सरोवराः परिष्कृताः सन्ति। महाराष्ट्रस्य नासिक इत्यत्र प्रभूत मात्रायां जलसंरक्षण पराक्षमता विकसिता अस्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य नान्द्याल इत्यत्र सर्वाणि ग्रामपञ्चायत केन्द्राणि एतेन अभियानेन सम्पृक्तानि सन्ति, अथ पुरातनाः तडागाः पुनरपि उपयोगयोग्याः क्रियमाणाः सन्ति। अस्माकं नगराणि अपि पृष्ठे न सन्ति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य कोरबा नगरे, ओडिशायाः भुवनेश्वरे, आंध्रप्रदेशस्य विजयनगरम् इत्यत्र एतस्मिन् अभियानेन उत्साहजनक परिणामाः दृश्यमानाः सन्ति। आयान्तु वयमपि अस्मान् परितः कस्यापि एकस्य तडागस्य, कूपस्य उत बावडी इति जलाशयस्य दायित्वं स्वीकुर्याम। जलस्य प्रत्येकमपि बिन्दुं संरक्षयाम। अद्य संरक्षितः प्रत्येकं जलबिन्दुः आगम्यमानानां सन्ततीनां भविष्यार्थं सर्वतः विशिष्टः अमूल्यनिधिः अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, केवलं कतिपयदिनपूर्वमेव ग्लास्गो नगरे राष्ट्रमण्डल क्रीडास्पर्धाः प्रारब्धाः सन्ति। प्रत्येकं देशवासी निरन्तरं भारतीय क्रीडादलाय स्वशुभकामनाः प्रेषयति। तस्य कामना अस्ति यत् सर्वे क्रीडकाः उत्कृष्टतमं प्रदर्शनं कुर्वन्तु, जनानां च हृदयान्यपि जयन्तु। सखायः, अस्माकं युवभिः नातिचिरमेव क्रीडाक्षेत्रे कतिपयाः विलक्षणाः

0: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defense production, defense exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today."
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची-ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: The Prime Minister said that a special Shaurya Vijay Yatra has been organized this year, which began on the 14th of July from the National War Memorial in Delhi. This motorcycle rally will reach the Kargil War Memorial in Dras. Its message is one ride, one nation, one salute. Mr. Modi said that this journey reminds everyone that the sacrifice made for the nation can never be forgotten. Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
1: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS Mahendragiri शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। दो तीन दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
0: Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. He elaborated that it is India's first rocket developed by the private sector. Mr. Modi praised young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago. The Prime Minister exuded pride that Indian youth have achieved remarkable feats in sports recently. Concluding his address, Mr. Modi spoke about the Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Divas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and ensure stricter punishment in cases of paper leaks and examination malpractices. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। दोपहर के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी बहनों का प्रिय कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली सभी हमारी प्यारी प्यारी सी बहनों को
1: राम राम।
0: राम।
1: और प्यारी प्यारी के साथ एक बात आज कहना भूल गई हूँ मनीषा, सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी, लंबी पतली
0: बिल्कुल बिल्कुल, इतना एहसास
1: गोरी,
0: दिला दिया
1: मन
0: है
1: की
0: उन्हें
1: मन की मन
0: मैंने
1: की बहुत ही निर्मल, अपने घर को बनाने वाली, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देने वाली, बुजुर्गों की सेवा करने वाली
0: जवाब वाह वाह, क्या महिमा मंडन किया है आपने बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: लेकिन लेकिन ये इसमें सार्थकता है कमलेश, क्योंकि महिला ना हो, हमारी नारी ना हो, तो एक परिवार की जो रीढ़ है ना, वो टूटकर बिखर जाएगी।
1: तभी तो हम आते ही पहले अपनी बहनों को जब राम राम करते हैं, उसके साथ ही साथ उन्हें बताते हैं कि आपके अंदर जो इतनी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, जो आपके अंदर इतने अच्छे भाव छुपे हुए हैं, उनकी जब हम तारीफ कर देते हैं तो फिर आपको भी थोड़ा सा लगता है, चलो घर परिवार वाले लोग नहीं कह पाते, वो इन बातों को नहीं कहते हैं, तो कोई तो है हमारी सखियाँ जो कह देती हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, सखियाँ हम तो हैं ही कहने के लिए, और साथ में यदि हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग हमारे लिए थोड़ी सी तारीफ कर देना, तो वो तारीफ के शब्द हमारे लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं, और हमें और हिम्मत आ जाती है कि यार जी आज तो हमारी तारीफ हो गई, हम और कुछ भी करके दिखाएंगे, भाई चार पकौड़े और तल दो
1: और अगर सब्जी एक बनाई है तो चलो आज दो सब्जी बना दो। तो जब घर में ऐसी बातें होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और जो घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, हमारी बगिया बहुत अच्छी महकने लगती है,
0: जी
1: क्योंकि हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं, हम अपनी जब बातें करते हैं वो अच्छी होती है, और जब पूरा परिवार बैठकर एक दूसरे के बारे में बातें करता है, कई बार एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं, लेकिन वो हंसी हंसी में खिंचाई जो है ना वो अच्छी भी लगती है।
0: जी हाँ, अच्छी भी लगती है, और चेहरे के भाव जो हैं वो छुप नहीं पाते, तो इसीलिए कहते हैं ना हम कि छुपाना भी नहीं
1: नहीं आता।
0: आता।

0: कमलेश, आज है 26 जुलाई और आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। ये दिन बड़ा ही खास है क्योंकि कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की हमेशा याद दिलाता रहेगा।
1: बिल्कुल। और ये जो दिन है ये भी बता दें कि 27वां कारगिल दिवस हम मना रहे हैं,
0: जी
1: और कारगिल विजय दिवस जो है 1999 में इसी दिन भारत

0: सेना ने जो ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान के खिलाफ 3 महीने तक चले युद्ध में जीत हासिल की थी उसके उपलक्ष्य में जो है वो मनाया जाता है। और मैं कहती हूँ कि जो प्राणों की आहुति देने वाले हमारे वीर सैनिक थे उनके सर्वोच्च बलिदान को आज हम याद कर रहे हैं, उनको हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
1: जी हाँ, और ये दिवस युवाओं देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। जगह जगह पर बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं और शहीदों को दिल से शत शत बार नमन किया जाता है।
0: और इसमें कैप्टन बत्रा, मनोज कुमार पांडे और अनुज अय्यर जैसे वीरों से हम ये सीख सकते हैं कि देशभक्ति ही हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि जब मौसम बिल्कुल ही अनुकूल हो तब तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब
1: जी
0: प्रतिकूल परिस्थितियां हो उस पर आप विजय प्राप्त करके और अपना तिरंगा फहराते हैं तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। देश की रक्षा हमारा मान है, भारत हमारी जान
1: जान
0: है।
1: है।

0: अभी हम बात कर रहे थे आज के दिन की कमलेश, और आज 26 जुलाई का दिन है, और आज के दिन ही एक और बड़ा खास दिवस है जो है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन भी हर साल 26 जुलाई को बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, और यूनेस्को ने 2015 में ये दिवस मनाने की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य था मैंग्रोव वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना।
1: बिल्कुल। और अगर जब हम बात करते हैं अपने देश की, तो भारत में मैंग्रोव जो है वो वन प्रबंधन के लिए जाना जाता है, और वो जो वन है हमारे यहाँ पर वो है सुंदरबन और गंगा डेल्टा का हिस्सा है,
0: जी
1: और इसमें खारे पानी के मगरमच्छ भी रहते हैं और विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनकी प्रजातियाँ होती हैं, उनका घर भी होता है। तो अगर
0: जी
1: ये वन होंगे तो वो जो प्रजातियाँ हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी ना मनीषा?
0: जी हाँ, और तटों की सुरक्षा भी की जा सकेगी, और साथ ही साथ जो हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद है कार्बन, उसको सोखने का एक महत्वपूर्ण कार्य हमारा मैनग्रोव वन करता है।
1: और मैनग्रोव वन जो है वो जैसे अभी पहले मैंने बताया था कि एक तो होता है कि सम विषम परिस्थितियों में चीज़ें उग जाना, एक होता है कि बिल्कुल ही ऐसी परिस्थितियां जहाँ पर कि मौसम जो है उनका साथ ना देता, और उसके बाद भी ये वन जो है वो
0: जी
1: हमारी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ, यानी कि पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा तो जीव जंतु और पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित भी रहेगा।
1: और इसका तो हमें विशेष रूप से ख्याल रखना ही है।
0: बिल्कुल।

0: कमलेश, गीत संगीत हम अपनी बहनों को सुनवाते रहेंगे, लेकिन अभी करते हैं कुछ ज्ञान की बातें, कुछ काम की बातें। और
1: अच्छा
0: इसी के तहत हम सुनवाएंगे महिलाओं को बातचीत, और बातचीत का विषय रहेगा गर्भवती महिलाओं को दें पोषण और संतुलित आहार। बातचीत में भाग ले रही हैं अदितिका अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रही हैं यमुना गर्ग।
1: तन और स्वस्थ मन हर किसी का होना जरूरी होता है, लेकिन जब बात हमारी गर्भवती बहनों की आती है तो फिर उनके स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहा शिशु का आहार माँ के द्वारा लिए गए आहार से जुड़ा होता है। तो ऐसे में प्रश्न यही उठता है कि गर्भवती बहनों का आहार कैसा होना चाहिए, उनका वजन, उनकी देखभाल किस तरीके से होनी चाहिए कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो आज इन्हीं ढेर सारे प्रश्नों का जवाब पाने के लिए, जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अदितिका अग्रवाल को, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर आहार पोषण विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रश्न तो बहुत से आते हैं गर्भवती बहनों को लेकर के, लेकिन सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि गर्भ धारण करने का सही समय कब से कब तक का है?
2: जैसे बात करते हैं गर्भ धारण की, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि उम्र हमारी जो है एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है इस चीज में।
1: जी
2: और उम्र अगर आदर्श, जैसे आइडियल एज बोली जाए, तो 25 से करीबन 30 के करीब या ज्यादा से ज्यादा 35 में हमें देखना चाहिए।
1: अगर ये जैसे होता है ना कि करियर की तलाश में हमारी बहनें जो है आगे बढ़ती, शहर में जो देखने को मिलता है तो वहां पे थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन गांव में भी होता है ना, एक चीज ये देखने को मिलता है कि बहनें 50 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो रही है। वजह क्या है कि बेटी बेटी हो रही है, तो बेटे की चाहत में 7 बेटी के बाद 8 बेटी के बाद, ऐसे में खतरा नहीं है उनके स्वास्थ्य?
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत ही गलत है। बढ़ती हुई उम्र में भी प्रेगनेंसी को नहीं देखना है। प्रेगनेंसी अर्ली हो, पहले हो, जैसे सही उम्र में हो, तो वो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही सुरक्षित होती है। आपने जैसे कैरियर की बात की, वो बहुत ही जरूरी है कि हम एक बैलेंस बनाएं अपने कैरियर और गर्भ धारण के समय में।
1: क्योंकि अब तो गांव में शिक्षा फैल चुकी है, सारी शिक्षित हो रही है हमारी बहनें, तो बालिकाएं अब चाहती हैं हम भी शहर की तरह थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन जहां तक गर्भ धारण करने की बात आती है तो जो एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए इतने से इतने उम्र तक का, तो उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
2: बहुत जरूरी, क्योंकि इसका ये निष्कर्ष निकलेगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो माँ और बच्चा दोनों की सेहत पे ये प्रभाव पड़ेगा। अगर वो कमजोर हैं, अगर वो कुपोषित हैं, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा और बच्चे का भी उसके साथ साथ बिगड़ता जाएगा।
1: गर्भ धारण करने से पहले बहनों का स्वस्थ होना चाहिए ना, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे में खाने में उन्हें क्या लेना चाहिए?
2: आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है। आजकल हम अपने जब भोजन की बात करते हैं, तो भोजन हमारा बहुत ही कुपोषित हो रहा है। हम कुपोषण का मतलब एक चीज और बताना चाहूंगी, ये नहीं है कि हम कमजोर हैं तभी हम कुपोषित हैं, हम मोटे होने पे भी, हम फूले हुए होने पे भी हम कुपोषित होते। तो कुपोषण के ये दो पहलू हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, और इसको देखते हुए हमें एक संतुलित आहार की, हम जब भी बात करते हैं पोषण में, तो हम संतुलित आहार की बात करते हैं। संतुलित आहार बेसिकली हम उसको 5 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें हमारे सीरियल्स आते हैं जो कि हमारा अनाज है, प्रोटीन्स आते हैं जो कि हमारी दालें हैं, दूध और दूध युक्त पदार्थों से जो भी मिलता है प्रोटीन वो हम उसमें रखते हैं, फिर हमारे सब्जियां और फल आते हैं जो कि हमारे विटामिन और खनिज लवण जो कि मिनरल्स हैं वो हमें प्रदान करते हैं। एक और बहुत अहम चीज है, वो है वसा या फैट, हमारे आहार में जरूर होना चाहिए, और उसके साथ साथ पानी बहुत जरूरी है।
1: गर्भ धारण के बाद जैसे 1-2 महीना बीता, तो कभी कभी बहनों को पता ही नहीं चलता कि गर्भ धारण हो गया, तो ऐसे में बहनों को चेकअप कराने या टीकाकरण कराने का क्या करना चाहिए?
2: बहुत जरूरी है कि हम नियमित तौर पे अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे परामर्श लेते रहें। प्रेगनेंसी का 3 ट्राइमेस्टर्स है, एक ट्राइमेस्टर्स 3-3 महीने के होते हैं, तो हमें हर ट्राइमेस्टर पे अपने डॉक्टर से मिलते रहना है, उनकी उनसे जानकारी लेते रहना है, जो भी टीकाकरण है जैसे कि थायराइड हो गया या शुगर हो गई,
1: हाई बीपी है,
2: आयरन हो गया, क्योंकि अनीमिया जो है बहुत ही बड़ी एक समस्या है, उसके साथ साथ कैल्शियम, थायराइड, ये सारे चेकअप भी होते हैं।
1: बात एक और आती है सुनने में, जैसे 2-3 महीने बीता तो होता क्या, खुद ब खुद जो है गर्भपात हो जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है?
2: गर्भपात के पीछे देखिए एक तो कुपोषण बहुत बड़ा कारण होता है, हम शारीरिक रूप से इतने समर्थ नहीं है कि हम बच्चे को मतलब डिलीवर कर सकें, कम आयरन होना शरीर में तो वो भी प्रीमेच्योर भी करता है, मरा हुआ बच्चा पैदा करता है।
1: अभी जैसे बात आती है स्वस्थ मनोदशा की, तो आहार विहार आचार यानी घूमने फिरने के साथ साथ स्वस्थ मन या मन की मनोदशा बेहतर बनी रहे, तो इसके लिए हमारी बहनों को क्या करना चाहिए?
2: बहुत जरूरी प्रश्न आपने पूछा। आजकल हम जहाँ वैसे देखते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रेगनेंसी एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, एक सामाजिक है जिम्मेदारी, और सबको ही आगे बढ़कर एक प्रेग्नेंट महिला की मदद करनी है। आहार भी तभी असर करता है जब हमारा माहौल खुशनुमा हो, हम देखें तो ये सारे से कारक हैं।
1: प्रेगनेंसी होती है तो ये भी कहा जाता है पता नहीं लड़का होगा कि लड़की होगी। हाँ,
2: प्रेगनेंसी में भी बहुत ध्यान देनी है कि हमें कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं उत्पन्न करनी है। थोड़ा सा घूमना फिरना हो रहा है, व्यायाम हो रहा है, योगा आजकल हम देख रहे हैं, हमारा तो देश ही योगा का है, प्रेगनेंसी में भी योगा का बहुत अच्छा रोल है, तो हम उसको छोड़ना नहीं है। प्राणायाम हो गया, टहलना हो गया, बहुत अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है ये सब, क्योंकि उससे हमारा तनाव है, हमारे अच्छे हॉर्मोन्स जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स कहते हैं जब हम साइंटिफिकली बोलते हैं, तो ये हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं अगर हम योगा करते हैं, तो ये सारी चीजें ऑक्सीजन क्रिएट करती हैं, तो बहुत ही वो जरूरी है।
1: एक बात और है ना कि अगर हम योगा करते हैं तो जो हमारा बच्चा जो पल रहा है हमारे गर्भ में उस पर भी तो उसका असर पड़ता है हमारी सारी मनोदशा का। अब मन्नी वाली बात आपको याद होगी।
2: हाँ जी बिल्कुल सही आपने इसको लिया है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बच्चा भी हम देखेंगे अगर हम एक्टिव रहे हैं, हम अगर कार्यरत रहे हैं अच्छे से पूरे अपने प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो हमारा आने वाला बच्चा होगा वो भी एक्टिव होगा। आजकल मोटापे की बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो ये जैसे शुगर की जांच की इसीलिए बात जरूरी थी कि अगर माँ को डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नवजात शिशु में भी हो सकते हैं। तो ये सब रोजमर्रा की बताएंगे, जो भी प्रेग्नेंट है महिला है उसको अगर हम बताएंगे वो ध्यान रखें ये सब चीजें, तो वो चीज उनके नवजात शिशु में भी आएगी और उनकी कम टेंडेंसी होगी कि वो आगे भविष्य में इन बीमारियों से ग्रसित।
1: आपने जो ये बात कही ना कि अगर स्वस्थ मन हो वाकई में और मनोदशा अच्छी हो, परिवार का सहयोग हो, तो जाहिर सी बात है बच्चा जो होगा
2: कुल मिलाकर
1: स्वस्थ समझदार बुद्धिमान होगा। और बच्चों के पोषण के लिए जब कोई बात आती है तो क्या बच्चों के पोषण के लिए भी कोई सप्लीमेंट है?
2: हाँ बिल्कुल, जो भी माताएं ले रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड की जैसे हमने बात की, फॉलिक एसिड बिफोर डिलीवरी डॉक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं लिखते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, ये मानसिक विकार होते हैं इससे बचाता है। तो फॉलिक एसिड फोलेट ये खाने में भी हमारे जैसे बीन्स हो गई, संतरा हो गया, इन सब में होता है, पर जो प्रेग्नेंट महिला है उसको इसके अतिरिक्त की जरूरत है, इसे सप्लीमेंट्स आजकल डॉक्टर्स बताते हैं आयरन के।

0: फॉलिक एसिड के, जो कि आपके प्रेग्नेंट महिला के साथ साथ उसके बच्चे के विकास के लिए भी बहुत जरूरी।
1: जी, अभी तो बहुत सारी दवाइयां चलने लगी, बहुत सारी मेडिकल जांच होने लगे, लेकिन ये शुरू से ये प्रक्रिया है कि कभी जब गर्भवती होती है महिला, 2-3 महीने बाद उसको उल्टी सी आने लगती है, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी दवाइयां लेने लगती हैं, उन दवाइयों का असर जो है गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो ऐसे में क्या उसे सामान्य प्रक्रिया मान के शांत हो जाना चाहिए या दवा लेना

0: उसमें लोग सोचते हैं, अरे महिला खुद भी सोचती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज्यादा वो उठते ही खाना शुरू कर देती हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें नियमित लेना है, जो भी लेना है पर हम कम मात्रा में लेना है, और उससे क्या होगा, उपकाई नहीं आएगी। तो कोई खट्टे फल या कुछ हम ले सकते
1: नींबू वगैरह
0: हैं,
1: पानी में
0: नींबू
1: लेकर के डाल
0: पानी
1: लें।
0: के रूप में, या संतरा जो कि बहुत अच्छा माध्यम है, को लेके हम आगे अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं, ना कि हम बहुत भारी खाने के बजाय। तो उससे क्या होगा, ये मॉर्निंग सिकनेस जो होती है ये उनमें कम होगी और वो काबू पा सकती हैं समस्या से। और फिर भी अगर उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो, असहनीय हो, तब हम डॉक्टर की बिल्कुल सलाह लें।
1: संतुलित आहार की बात आती है तो गर्भवती बहन की थाली में क्या-क्या शामिल होना चाहिए?
0: जैसे मैंने आपको आहार के कुछ ग्रुप्स की बात की, तो वो सारे हमें शामिल करने हैं उसमें, हमारे
1: जी
0: अनाज। जबकि आजकल एक चीज़ और हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की हमने जब बात की, तो उनका जो भोजन है वो हमसे, शहरी लोगों से काफ़ी अच्छा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा भागने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे खड़े अनाज होते हैं, श्री अन्न हम जिन्हें कहते हैं आजकल,
1: जी
0: उनको बढ़ावा देना, क्योंकि उनमें क्या है कि आयरन, कैल्शियम ये सब तो है ही, फाइबर भी है, तो ये हमारे होल सीरियल्स यानी पूरी तरह से पूर्ण है हमारे ये अनाज, तो
1: जी
0: इन्हें इंक्लूड करना है हमें। इसके साथ साथ फल सब्जियां हो गई, जो भी हरी फल सब्जियां हैं, क्योंकि ये हमें आयरन और कैल्शियम में मदद करती हैं। दालें हो गई हमारी,
1: जी
0: जो भी है, जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वो चिकन, फिश, अंडे ये सब ले सकते हैं, मछली, अंडे ये सब ले सकते हैं, बल्कि जो शाकाहारी हैं वो भी निराश ना हो, वो भी अपना बहुत अच्छे से दूध
1: शाकाहारी
0: की,
1: में भी बहुत सी चीजें उपलब्ध
0: बहुत
1: हैं।
0: चीजें हैं, बहुत सारे
1: जी
0: दुग्ध उत्पाद हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीजें भी हमें प्रोटीन दिलाने में बहुत सहायक हैं। तो 55 ग्राम के जितना प्रोटीन प्रेगनेंसी में जरूरी है, उसके साथ साथ 10 ग्राम एक्स्ट्रा जो हमारे हर ट्राइमेस्टर पे हम देखते हैं, तो वो
1: जी
0: सारी जरूरी है। तो ये सारी हम अगर लेते हैं इस तरह से, जो भी मूंगफली ले ली हमने, नट्स की जब से बात करी, फैट्स में हमारे तेल हो गए, तिल का तेल हो गया या सरसों का तेल, घी, घी को
1: जी
0: भी पीछे नहीं रखेंगे क्योंकि
1: जी
0: घी भी जरूरी है।
1: बहुत जरूरी।
0: हाँ, इसके साथ साथ पानी, जैसे पानी का भी रोल बहुत अहम है, तो ये भी एक संतुलित थाली में इसके साथ हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं।
1: जी एक बात और है कि बहनों का बड़ा मन करता है कुछ खट्टा मीठा मिर्च सा खाने का, तो ये जो चटपटे जो की बात आती है ना, स्वाद आता है मन में, जो बच्चा जो गर्भ में पल रहा होता है, तो बहुत तीखा खा ली, बहुत खट्टा खा ली, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ऐसा लेना चाहिए उनको?
0: बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। ये खट्टा बहुत ज़्यादा तो इतना नुकसान नहीं करता, क्योंकि विटामिन सी है, वो तो ज़्यादा भी हो हमारे शरीर से तो वो निष्कासित हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादा तीखा खाने से क्या होता है, गैस इस सब की शिकायत होगी, तो फिर उससे क्या होगा कि माताएं खुद भी परेशान होंगी, महिलाएं खुद भी परेशान होंगी, तो इसलिए ज़्यादा तीखा खाने से बचें, ज़्यादा ऑयली जो कि फ्राइड से, डीप फ्राइड हो गया, ये सारी चीज़ें खाने से बचें, लाइट और खाएं, तो वो ना तो एसिडिटी करेगा ना गैस की हमें समस्या
1: जी
0: होगी।
1: एक प्रश्न हमारे दिमाग में गूंज रहा है कि समय से पहले शिशु का जो जन्म होता है, ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? जैसे सतवा सा बच्चा हो गया कहते हैं, तो बड़ा प्रीमेच्योर, जिसे बहुत ध्यान रखना पड़ता था, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है?
0: देखिए, वही घूम फिर के सारी बात आहार पर आ जाती है। आयरन की कमी जो होती है,
1: जी
0: कई बार सही तरह से जांच नहीं होती है, या कई बार महिलाएं खुद भी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होती हैं आयरन की तरफ, तो
1: जी
0: उसकी कमी की वजह से ऐसे बच्चों का जन्म होता है। तो हमें हर अवस्था में प्रेगनेंसी की ध्यान देना है कि हमें आयरन और कैल्शियम जैसे जो तत्व हैं उनके
1: जी
0: ध्यान देना है।
1: गर्म चीजें जो है, जैसे जब
0: हाँ
1: गर्भ धारण करती है तो
0: बिल्कुल,
1: गर्म
0: और
1: चीजें
0: कुछ
1: भी नहीं
0: ऐसे,
1: लेनी
0: हाँ
1: चाहिए।
0: बिल्कुल आपने सही बताया, ये प्रतिबंधित कुछ भोजन उनको नहीं हमें लेना चाहिए, जैसे कि पपीता हो गया, अनानास हो गया, ये सारे ऐसे फल होते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि मिसकैरेज या जल्दी डिलीवरी
1: कर देना,
0: करने
1: हाँ
0: में वो
1: समय
0: होते
1: से
0: हैं
1: पहले।
0: समय से पहले, और इनके दुष्प्रभाव पड़ते हैं बच्चों पर,
1: जी
0: तो हमें ऐसे भोजन पदार्थों से थोड़ा सा बच के।
1: बच्चे के जन्म लेने के बाद कभी कभी माँ को ना दूध ही नहीं आता है, कुछ माँ को तो बहुत ज्यादा आता है और कुछ माँ को बिल्कुल नहीं आता है, तो ऐसे में विकल्प के तौर पे क्या किया जाए जिससे बच्चा पूर्णतया स्वस्थ रहे, माँ का दूध के रूप में कुछ पा सके?
0: हमें ये ध्यान देना है कि गर्भवती महिलाएं जो है तनाव से दूर रहें, और उनके साथ साथ एक उनको एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे वो अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करा सकें। उनकी जो मनोदशा है वो एकदम, स्तनपान कराते वक्त एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, वो कुछ सोच नहीं रही हो, कोई चिंता नहीं करनी है उन्हें।
1: जिस माँ को आता ही नहीं है दूध, उसके पीछे क्या रीजन है?
0: कई बार महिलाएं यही सोचती रहती हैं, हम नहीं करा पाएंगे, हम नहीं करा पाएंगे, जबकि ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है।
1: नेचुरल है ये।
0: हाँ जी, ये रिफ्लेक्सेस होते हैं शिशु के, जब बच्चा स्तनपान करता है तो महिलाओं में खुद से ही ये स्टिमुलस होता है हमारे मस्तिष्क में कि हमें बच्चे को स्तनपान कराना है, तो वो अपने आप ही रिलीज होता है, तो हमें बहुत ज्यादा उस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं। और ऐसे कुछ इसके साथ साथ

0: कुछ गैलेक्टोगॉग्स हम बोलते हैं जो दूध को निकालने में हमारे भोजन है, ऐसे कुछ जैसे कि अजवाइन हो गई, जैसे जीरा हो गया, ये सारे मसाले हमारे आमतौर पे
1: गोंद के लड्डू हो गए, और सतावर, खास करके सतावर दूध बढ़ाने में सहायक होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो पीपर हुआ, सतावर हुआ, ये सारी चीजों के मसाले को पीस करके दूध में खौला के दिया जाता था, उससे भी दूध आने लगता था। गर्भवती बहनों और उनके स्वास्थ्य के बारे में और क्या कहना चाहेंगे?
0: हमारा जो आहार है वो कंसेप्शन के पहले, प्रेग्नेंट होने के पहले से हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम जो नींव डाल रहे हैं आगे वही हमारा रिजल्ट होगा, वही हमारा निष्कर्ष होगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रेगनेंसी के पहले ही जो महिलाएं विचार कर रही हैं वो अपने आहार में संतुलन रखें। आजकल बहुत ज्यादा शुगर, जो कि मिठाई वगैरह या फिर बाहरी चीजों का बहुत ज्यादा, पैकेट फूड्स जिसको कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक्स का पड़ गया है, तो हम इन सब चीजों से दूर रह के जो हमारे नेचुरल फूड्स हैं उसको लें,
1: समय से लें
0: और अपने अवस्था पे लें। जो भी हमारी, अगर हम प्रेग्नेंट नहीं है तो हम इस तरह से अपने शरीर को बनाएं कि हम आगे प्रेगनेंसी के जब दौर में जाएं तो हम अच्छे से उसको, जांच भी जरूरी है, डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है।
1: इस समय हमारे साथ डॉक्टर अदितिका अग्रवाल, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर आहार पोषण विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में और उन्हें कैसे पोषण युक्त आहार लेना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारी बहनें सुन रही थी ये बातचीत गर्भवती महिलाओं को दें पोषण व संतुलित आहार, डॉक्टर अदितिका अग्रवाल से बात कर रही थी यमुना गर्ग।
3: गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे जरा, छोरी जरा हंस दे तू।

0: आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ढेरों बातें की हमारी श्रोताओं से। उसमें सबसे अभी पहली जो बात निकल के आई, कमलेश की कारगिल विजय दिवस पर उन्होंने शहीदों को नमन किया और सैनिकों को तकनीकी रूप से सक्षम और सशक्त बनाने पर जोर दिया।
1: और आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी उन्होंने बात करी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं जल संरक्षण की, तो
0: जी
1: जल संरक्षण पर भी जोर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा, बचाई गई हर बूंद भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
0: जी हाँ, देश की रक्षा को मजबूत बनाने के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, ये भी बताया उन्होंने। और विक्रम 1 की सफल लॉन्च को ऐतिहासिक पल बताया, जो पूरे भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है।
1: और हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने के भी अपने देशवासियों से उन्होंने अपील की है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमसे मन की बात करते हैं, और उनकी एक एक बात जब होती है और फिर हम उसको बड़े गौर से पहले सुनते हैं और उसके
0: जी
1: बाद अपने ऊपर अमल भी करते हैं।
0: जी हाँ, और जब देश की बात आती है कमलेश, तो हमारे जो देशभक्त हैं वो भी हमें बड़े याद आते हैं। और ऐसी हमारी महिला वीर समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रहीं एनी बेसेंट, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी और 1893 में पहली बार वो भारत आईं।
1: और 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की। वो प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजवादी भी थी। और कहा जाए तो हमारे अधिकार क्या हैं और हमें कैसे अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, तो अधिकार कार्यकर्ता भी थी और उसके साथ साथ शिक्षाविद भी थी। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए और बताने के लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों का संपादन भी किया और उनका प्रकाशन भी किया।
0: जी हाँ, और 1848 में सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना।
1: यानी उनका पूरा जो एक
0: हाँ
1: काम था वो ये था कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा को जब तक हम अपने साथ अपनाएंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते।
0: जी हाँ, और हमें सबको आगे बढ़ाना है, तभी हम देश से असली प्रेम प्रदर्शित कर पाएंगे।
2: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का

0: कमलेश, देश से असली प्रेम जताना है तो बेटियों को बचाना है, और
1: बिल्कुल
0: साथ ही साथ पढ़ाना है और खिलाना भी है। अब तो बहुत कुछ बदल चुका
1: बिल्कुल,
0: है।
1: लेकिन तब भी हमारा प्रयास यही रहता है कि वे जहाँ नहीं बदला है वहाँ बदलाव की बयार आ जाए,
0: जी।
1: क्योंकि देख तो रहे हैं कि बदलाव की बयार आ चुकी है, पर ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्से जो हैं अभी उस बदलाव को अपने
0: अपना
1: कहते हैं
0: नहीं पाए
1: अपनाने के लिए थोड़ा
0: जी।
1: सा पीछे रह गए हैं, क्योंकि बेटी नहीं है भार, ये है जीवन का आधार।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बहुत
1: आज हम
0: बिल्कुल।
1: बात कर रहे हैं एक योजना जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से शुरू की थी।
0: जी हाँ, आइए कन्या के जन्म को उत्सव मनाए।

0: बड़ी ही प्यारी पंक्ति है। और इस योजना का उद्देश्य रहा है बाल लिंग सुधार करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना। साथ ही ये योजना महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
1: और हम तो यही चाहते हैं कि अगर जब बेटा पैदा होता है तो हमारे यहाँ पर कई जगह पर कुआं पूजन का रिवाज है, तो मैं तो
0: जी
1: यही चाहूँगी कि जब बेटियाँ पैदा हो तो उस पर भी कुआं पूजन का जो विधान है वो किया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। यानी हमें उत्सव मनाना, हमें खुशियाँ मनानी है
0: बिल्कुल
1: कि आज हमारे घर हमारी प्यारी प्यारी बिटिया आई
0: आई
1: है।
0: है।

0: तो हमारी बहनों को हम अपना ईमेल बता देते हैं ताकि वो हमें अपना फीडबैक जो भी दे पाएँ, कुछ अच्छाई हो कुछ बुराई हो सब समेटेंगे हम अपने आंचल में।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: और समेटने के बाद ही तो हमें पता चलेगा ना कि हमें और क्या आगे बढ़िया करना है।
0: बिल्कुल, तो ईमेल है हमारा feedback@gmail.com।
1: और पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी दिल्ली, 110001।
0: जी हाँ, और कार्यक्रम के प्रस्तुत
1: और जब हम कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता और संयोजक के बारे में बताते हैं तो उनके बार बार हम यही कहते हैं कि भी वो पूरा पहले सोचते हैं बहनों के लिए ये करना है
0: जी
1: वो करना है। और जब आप हमें ईमेल के द्वारा या जो हम पता बताते हैं उस पर अपने विचार नहीं भेजेंगे तो फिर तो
0: हाँ
1: लगता है कि भाई हम इतनी बार आपको बता रहे हैं तो शिकायत भी तो है ना हमें आपसे कि आप भेज नहीं रहे हैं।
0: बिल्कुल। और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर।
1: और संयोजक हैं शिव नंदन लाल। और जब हम अपनी बहनों से मिलने आते हैं तो ये भी कहते हैं देखो बारिश आ रही है तो जो बारिश का पानी है उसको भी हमें जो है बचाकर रखना है क्योंकि जल है तभी तो कल
0: कल
1: है।
0: है
1: और इसके साथ ही जब हम अपनी बहनों के लिए यही कहते हैं कि हमारी बहनें अपने घरों में ऐसे ही हंसती रहें, चहचहाती रहें, उनकी जो ये छोटी सी दुनिया है, उनकी जो ये छोटी सी आंगन है। तो इसी के साथ ही अब अपनी बहनों को कहें बहनों राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी हमारी महिलाएं सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र पर सिग्नल से बोल रहे हैं, मीडियम व्यू 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
2: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
2: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
2: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
2: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन

0: रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today."
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
2: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS Mahendragiri शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
1: The Prime Minister said, "Every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday." He elaborated that it is India's first rocket developed by the private sector. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, "A special nationwide campaign has been underway since the 4th of July." In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said, "Every Indian is cheering for the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago." The Prime Minister exuded pride that Indian youth have achieved remarkable feats in sports events recently. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. On the occasion, the President, the Vice President and the Prime Minister paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. In Ladakh, Union Defense Minister Rajnath Singh today paid homage to the brave hearts of the Kargil War at the Kargil War Memorial in Dras. Addressing the gathering, Rajnath Singh said the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valor of Indian soldiers. The Indian Embassy in Ukraine has said that it is closely monitoring the situation following the incident involving the cargo vessel MV Aegean Ragnar, which was struck at the port of Odessa yesterday. In a social media post, the embassy said 2 out of 4 Indian nationals on board have been confirmed safe, while information about the other 2 is still awaited. External Affairs Ministry today issued an advisory urging Indian nationals intending to undertake employment on commercial vessels operating in or transiting Black Sea region to carefully assess the prevailing security risks before accepting such assignments. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज में सुन रहे इस गाने को आप जब सुन रहे हैं तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। जी हाँ, आज एक ही फिल्म से हम बात करेंगे, फिल्म मेरे महबूब की। और आज मैं हूँ आपके साथ, आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

मेरे महबूब, ये 1963 में आई सुपर डुपर हिट हिंदी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया था हरनाम सिंह रवैल साहब ने।

दोस्तों मेरे महबूब, ये 1963 में आई थी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इस फिल्म में अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, साधना, निम्मी, प्राण, जॉनी वॉकर और अमिता ने अभिनय किया था। और यह उस साल की सुपर डुपर हिट हिंदी फिल्म थी। और इस फिल्म की कहानी क्या थी और इस फिल्म से जुड़े कौन सी ऐसी बातें थीं, ऐसे रोचक किस्से थे जो आज आपको ज़रूर सुनने चाहिए, और ये सब मैं आपको अपने इस कार्यक्रम एक ही फिल्म में बताऊंगा। बस शर्त है सिर्फ इतनी कि आपको हमारे साथ बने रहना है और इस कार्यक्रम को सुनते रहना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक और प्यारा सा नगमा इस फिल्म से सुनाते हैं, उसके बाद बात होगी इस फिल्म की कहानी की।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप ये जो गाना सुन रहे हैं ये मेरे महबूब फिल्म से है और संगीत दिया है नौशाद।

दोस्तों, अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये है लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म थी, और इसका जो ताना बाना था वो एक मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ ड्रामा है। और इस फिल्म में इस अनवर नाम का जो किरदार निभाया है वो राजेंद्र कुमार ने निभाया है। और जो एक बुर्का पहनी हुई लड़की यानी मुस्लिम समुदाय से जो लड़की है उसका किरदार निभाया है साधना ने। और इस पूरी फिल्म में, इसकी कहानी में, उनके प्यार, परिवार और सामाजिक उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द पूरी कहानी इस फिल्म की है। कहानी बेहद अच्छी है क्योंकि उस दौर में हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए हम सभी के बीच में जो प्यार होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति केयरिंग होनी चाहिए, उसी का एक बहुत ही सकारात्मक संदेश इस फिल्म के जरिए दिया गया है। और आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन उस दौर में साधना कट हेयर स्टाइल, जी हाँ, जो इस फिल्म की हीरोइन है साधना, उनके जो हेयर स्टाइल है, दरअसल उनके बाल पहले पूरे उनके माथे पर आते थे, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर H.S. रॉयल साहब चाहते थे कि उनका माथा साफ दिखे, और इस वजह से उन्होंने उनके बालों को थोड़ा सा हेयर स्टाइल में चेंज लाए, और बाद में वो हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि साधना कट नाम से ही सारी लड़कियां हमारे देश की साधना कट हेयर स्टाइल को पसंद करने लगीं। और ज़रा सोचिए, अगर वो दौर आज का दौर होता, सोशल मीडिया का दौर होता, तो वो रील, वो साधना कट का अंदाज कितना वायरल होता। तो है ना ये एक दिलचस्प बात। तो दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक और प्यारा सा गीत।

इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। शुभलता प्रेम सागर का मैसेज आया है अमृतसर से, और इन्होंने लिखा है कि आज आपके इस कार्यक्रम को सुनकर हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, भूली बिसरी यादें ताज़ा हो गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए।

और एक संदेश आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का, और इन्होंने लिखा है कि प्रस्तुतकर्ता द्विवेदी जी प्यार भरा नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आज आप एक ही फिल्म में मेरे महबूब फिल्म के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं, और उस फिल्म के गाने भी हमारे दिल को छू रहे हैं। आज हमें बहुत सुकून मिल रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है अवनीश भाई, थोड़ा सा हो सकता है टाइपो एरर हो गई हो, अवनीश नहीं अरुणीश मेरा नाम है, और ये है दिग्दर्शन और कविता गौड़, इन्होंने लिखा है कि आपका कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी और दिलचस्प किस्से जो अभी आपने साधना कट हेयर स्टाइल से के संबंध में सुनाए वो बेहद अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ। और दोस्तों, आज की फिल्म है मेरे महबूब, और आज हम बात कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म के से जुड़े जो गाने हैं वो भी आपको सुना रहे हैं, और साथ ही साथ में इस फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से, कुछ सुनी कुछ अनसुनी और कुछ कही और कुछ अनकही बातें भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस फिल्म की कहानी की, तो आपको पता

है कि इस फिल्म का बैकड्रॉप एक सामाजिक और मुस्लिम परिवार से जुड़ा हुआ ताना-बाना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जी हाँ, जिसे हम AMU अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, वहाँ पर पढ़ाई के दौरान अनवर हुसैन, ये जो करेक्टर है, ये प्ले किया गया है, ये रोल निभाया गया है राजेंद्र कुमार के द्वारा। तो पढ़ाई के दौरान अनवर हुसैन को एक घूंघट वाली महिला से प्यार हो जाता है और वो उसे भुला नहीं पाता है, और वो लखनऊ का रहने वाला होता है। तो जब पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो लखनऊ जाता है, तब उसकी मुलाकात नवाब बुलंद अख्तर चंगेजी से होती है, और तब नवाब साहब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अनवर को एक पत्रिका में संपादक की नौकरी दिलवाने की कोशिश करते हैं, और नवाब अनवर से अपनी बहन हुसना, और हुसना का किरदार निभाया है हुसना बानो, ये रोल प्ले किया है साधना ने। साधना ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस रोल को निभाया है। और जब नवाब साहब अनवर से कहते हैं कि वे उनकी बहन हुसना को, यानी साधना को, कविता सिखाएं, जिसके बाद वो उनको कविता सिखाने लगता है, और कुछ जबरदस्त और दिलचस्प नाटकीय मोड़ आते हैं इस फिल्म में। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि अनवर साहब को पता चल जाता है कि दरअसल ये जो घूंघट वाली महिला है, ये वही महिला है जो उनके साथ AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। और इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, और फिर शादी का ऐलान होता है, और औपचारिक तौर पर सगाई समारोह होने से पहले, वही आपको पता ही है कि किस तरीके से दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते को लेकर पहले नाराज़ होते हैं, बाद में दोनों को मना लिया जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन तभी एक मोड़ आता है कि कर्ज में डूबे नवाब को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि जल्द ही वो अनवर को एक एक नजमा के साथ, नजमा का जो रोल है वो अनवर की बहन है, और ये रोल निभाया है निम्मी के द्वारा, और उनका जो ये रोल है वो एक वेश्या की का रोल है, और इसके बाद उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वे उनके साथ दिख जाते हैं, और तब तो हंगामा हो जाता है। और इसके बाद अनवर की हवेली और संपत्ति की नीलामी के का दौर आ जाता है, ऐसा जो है फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। लेकिन क्या अंत में हुस्ना की शादी अनवर हुसैन से हो पाती है या नहीं, या फिर नवाब, नवाब का जो किरदार निभाया है ना, वो हुस्ना के भाई हैं, और ये किरदार निभाया गया है अशोक कुमार के द्वारा, और जबकि मुन्ने राजा यानी बुलंद अख्तर के चचेरे भाई का किरदार निभाया गया है प्राण के द्वारा, और अनवर का दोस्त बिंदादिन रस्तोगी, ये किरदार निभाया गया है जॉनी वॉकर के द्वारा। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत में क्या होता है कि क्या हुस्ना की शादी अनवर हुसैन से हो पाती है या नहीं हो पाती, और क्या नवाब को उनका सारा सामान वापस में मिल पाता है या नहीं, उनकी हवेली और बाकी सामान, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, क्योंकि अगर हमने आपको यहाँ पर ये बता दिया तो फिर फिल्म का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इस वजह से आपको इस फिल्म का अंत हम आपको नहीं बताते हैं, लेकिन ये फिल्म बेहद अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म का एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का संदेश आया है और उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है और कहा कि कार्यक्रम पसंद आया।

दोस्तों, अगर इस फिल्म से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्सों की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया कि मशहूर साधना कट हेयर स्टाइल की शुरुआत इसी फिल्म के जरिए हुई। और आपको शायद ही पता हो कि इस फिल्म का पहले जो नाम था वो था सिर्फ महबूब, और बाद में इस टाइटल को और अधिक रोमांटिक बनाने के लिए और यूं कह लें कि थोड़ा सा पर्सनल टच देने के लिए इसमें मेरे शब्द को जोड़ा गया और इस तरह से इस फिल्म का नाम हुआ मेरे महबूब। और अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के टाइटल ट्रैक की, यानी जब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में इस फिल्म का टाइटल ट्रैक मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम ये रिकॉर्ड किया गया, तो जो इस फिल्म के निर्देशक हैं H.S. रवेल साहब, वो कुछ खास खुश नहीं थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस गाने में म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा बहुत कम है तो शायद नहीं चलेगा। लेकिन जाने माने संगीतकार नौशाद साहब इस फिल्म में संगीत दे रहे थे और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि ये गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, और हुआ भी ऐसा। और ये गाना हिंदी फिल्मों के इतिहास में सबसे रोमांटिक गानों में से एक है। और अंत में आपको ये भी बता दें कि 1963 में रिलीज हुई ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट ये फिल्म साबित हुई थी। और एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसी फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को बॉलीवुड का जुबली कुमार बनाए रखने में बड़ी मदद मिली थी, क्योंकि राजेंद्र कुमार की जो फिल्में आती थीं वो अक्सर सुपर डुपर हिट हुआ करती थीं और उनकी फिल्में जुबली मनाती थीं और इसीलिए उनका नाम जुबली कुमार बन गया।

था। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर आपसे किसी न किसी मोड़ पर इसी चैनल में किसी न किसी कार्यक्रम में होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: 4474 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜਥਾ ਜੰਮੂ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਲਟਾਲ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਥੇ ਵਿਚ 166 ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जाबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाक्वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे असवद के खत्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलहूज़ ख़ातिर रखें। और भारतीय मौसमियात महकमे ने वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर ये कहते हुए मुल्क के जाबाजों को खराज अकीदत पेश किया है कि खाह ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हों या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई की तारीख एक ऐसा दिन है जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल एक खसूसी शौर्य विजय यात्रा का अहतमाम किया गया है, जो दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से 14 जुलाई को शुरू हुई। ये मोटरसाइकिल रैली द्रास में करगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी। इसका पैगाम है, एक सफ़र, एक मुल्क, एक सलाम। जनाब मोदी ने कहा कि ये सफ़र सभी को इस बात की याद दिलाता है कि मुल्क के लिए की गई कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत लगातार अपनी तकनीकी सलाहियत को मुस्तहकम बना रहा है। उन्होंने भारतीय बहरिया में INS महेंद्र गिरी को हाल ही में शामिल किए जाने का तज़किरा किया।
2: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता इतवार को विक्रम 1 के कामयाब लॉन्च के बाद हर भारतीय फ़ख्र से सरशार हो गया। जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत का ऐसा पहला रॉकेट है जिसे प्राइवेट शोबे ने तैयार किया है। उन्होंने काबिले कद्र हुनरमंदी, जज्बे और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर नौजवान इख्तिराकारों की सताइश की। कैच द रेन मुहिम के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 4 जुलाई से पूरे मुल्क में एक खसूसी मुहिम चल रही है।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: मन की बात के अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर भारतीय शहरी दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स का जोश बढ़ा रहा है जो कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारतीय नौजवानों ने हाल ही में खेलों के शोबे में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने साइंस ओलंपियाड का तذکرہ करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में तलबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ओलंपियाड मुकाबले इसी महीने हुए हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के आज के नशरिये में कश्मीर की रिवायती वगू चटाई का तذکرہ किया जो सरकंडे और धान के तिनकों से बनाई जाती है। माहौलियात के लिए साजगार इस तरह की चटाई बनाने की रिवायत बरसों से चली आ रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कश्मीर की वगू चटाई को अपने घर का हिस्सा बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क भर में लोग एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के जरिए फितरत के तहत अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि तकरीबन 60 साल बाद गुजरात के गिर जंगलात में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल परिंदा फिर से वहां अपना मस्कन बना रहा है। मन की बात के आज के नशरिये में जनाब मोदी ने त्रिपुरा के मौसीकी चोंग प्रेंग साज का भी जिक्र किया।
2: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ, इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है, पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी मनाई जाएगी। इस तनाजुर में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत में कई बाईसे तरगीब पहलू शामिल थे, लेकिन एक टीचर का रोल उनके लिए सबसे अजीज था। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने अगले महीने मनाए जाने वाले योम आज़ादी का तذکرہ किया और सभी लोगों पर जोर दिया कि वो MyGov पर 15 अगस्त से पहले बड़ी तादाद में अपने अपने ख्यालात और तजवीज़ें शेयर करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल ज़िले के इलाकों को दोबारा हासिल किया था। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मादर वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी जारी करके बहरे असवद में चलने वाले या वहां से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर रोजगार के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो इस तरह का काम कबूल करने से पहले मौजूदा सिक्योरिटी खतरात का पूरी एहतियात के साथ जायजा लें। एडवाइजरी में कहा गया है कि जो लोग इस तरह के रोजगार पर जाने का इरादा रखते हैं उन्हें इंतहाई मोहतात अंदाज से काम करना चाहिए। भारतीय मौसमियात महकमे ने वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन के दौरान शदीद बारिश से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जांबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाक़वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की, और सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे असवद के खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलहूज़े खातिर रखें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Man Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to country scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
3: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
2: Catch the rain का संदेश बहुत सीधा है। जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
3: In his Man Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम

0: उनका पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
0: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
1: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom craft and further strengthen the spirit of being vocal for local.
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
0: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said, Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who had laid down their lives in the defense of the motherland. In a social media post, President Murmu said, "The unparalleled valor, unwavering resolve and supreme patriotism of the soldiers exemplify the finest traditions of the Indian Armed Forces." In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. रक्षा मंत्री लिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रह्लाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी और आज हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के उस विलक्षण अभिनेता को जिसने अपने अभिनय से हर किरदार को अमर बना दिया, चाहे खलनायक हो, हास्य पात्र हो या संवेदनशील चरित्र, हर भूमिका में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान अभिनेता अमजद खान की। आइए जानते हैं उनके जीवन और फिल्मी सफर से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं के बारे में। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे, ये तो आपको पता ही है। अभिनय का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला था। उन्होंने मुंबई के सेंट एंड्रयूज स्कूल और आरडी नेशनल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमजद खान ने बाल कलाकार के रूप में भी फिल्मों में काम किया था, लेकिन मुख्य अभिनेता के रूप में पहचान बनाने के लिए उन्हें कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हमारी श्रोताओं ने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस समय चल रहा है आपका मन पसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार और हमारे आज के कलाकार हैं अमजद खान। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे अमजद खान के जीवन के बारे में, उनके फिल्मी सफ़र के बारे में। तो आइए बात करते हैं उनके संघर्ष से सफलता तक के करियर के बारे में, उस सफ़र की जर्नी कैसी रही, आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 70 के दशक की शुरुआत में अमजद खान छोटे छोटे रोल कर रहे थे, तभी उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। वो फिल्म थी शोले, जिसका गीत अभी आपने सुना, याद है ना उसके संवाद। निर्देशक रमेश सिप्पी को फिल्म के डाकू गब्बर सिंह के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी, अमजद खान का चयन हुआ और उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि गब्बर सिंह भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार खलनायक बन गया। जी हाँ, वो खलनायक जिसे स्क्रीन पर देखें या ना देखें, उसकी संवाद अदायगी ही हमें जब जब याद आती तो हम उस खलनायक को भूल नहीं पाते। आज भी उनके संवाद लोगों की जुबान पर हैं। उनकी आवाज, उनके हाव भाव और संवाद बोलने का अंदाज उन्हें हमेशा के लिए अमर बना गया। याद है ना फिल्म शोले का वो डायलॉग जो गब्बर सिंह की पहचान ही बन गया। तो लिख भेजिए जल्दी से हमें आपको हमारे आज के कलाकार से जुड़ी कौन कौन सी फिल्म और उनके गीत और उनके डायलॉग अभी भी मुंह जुबानी याद है। हमारा पता तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, ipradiodelhi@gmail.com।

भाई हम देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप फिल्मों के नाम तो लिख रहे हैं, अपने फरमाइशी गीत भी लिख रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कोई रोचक जानकारी नहीं भेज रहे। तो रोचक जानकारी भी अगर आपके पास है तो हमसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी चाहती है कुछ खास आपसे, उम्मीद करती है कुछ खास आपसे कि आज के शो में आप अपनी ईमेल्स के ज़रिए हम तक पहुँचाए वो जानकारी जो आपके पास छुपी बैठी है, ताकि हम शेयर कर सकें वो और दोस्तों से। चलिए कुछ रोचक जानकारी मेरे पास भी है तो मैं भी शेयर कर देती हूँ आपसे। तो वो रोचक जानकारी कुछ ऐसी है कि शोले की शूटिंग से पहले कुछ लोगों को लगा था कि उनकी आवाज़ खलनायक के लिए पर्याप्त प्रभावशाली नहीं है, लेकिन रिलीज के बाद वही आवाज़, जी हाँ वही आवाज़ उनकी पहचान बन गई। गब्बर सिंह का किरदार निभाने के बाद देश भर में बच्चे बच्चे तक उन्हें गब्बर कहकर पहचानने लगे थे। जी हाँ, उन्होंने लगभग 130 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वो केवल खलनायक ही नहीं बल्कि बेहतरीन हास्य अभिनेता और चरित्र अभिनेता भी थे। यदि आपने केवल शोले देखी है तो अमजद खान की प्रतिभा का केवल एक ही रूप देखा है। उन्होंने याराना में दोस्ती निभाई, लावारिस, नसीब, कालिया, सत्ते पे सत्ता, उत्सव, चमेली की शादी और कुर्बानी जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार भी निभाए हैं। कॉमिक भूमिकाओं में उनकी टाइमिंग शानदार थी और गंभीर भूमिकाओं में उनकी संवेदनशीलता दर्शकों का दिल जीत लेती थी।

साथियों, ये गीत तो आपने फिल्म याराना का सुना ही, और इसमें क्या दोस्ती निभाई थी अमजद खान और अमिताभ बच्चन ने, और उनके लिए गाया था अमिताभ बच्चन ने ये गीत। साथियों, क्या आपको पता है अमजद खान के साथ एक बड़ा हादसा भी हुआ था जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी? चलिए मैं बताती हूँ। सन 1976 में द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के दौरान अमजद खान एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। लंबे इलाज और कई सर्जरी के बाद वो स्वस्थ हुए, लेकिन इस दुर्घटना का असर उनके स्वास्थ्य पर जीवन भर रहा। इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। यही उनके अदम्य साहस और समर्पण का प्रमाण है। यदि अमजद खान को उनके सम्मान को उनके मिले सम्मान के लिए हम बात करें, तो अमजद खान को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए कई बार नामांकित किया गया और दर्शकों से अपार प्रेम मिला। उनका अभिनय आज भी सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है।

श्रोताओं, इस तरह रहा सफ़र उनका, अमजद खान का, जो हमारे एक ही कलाकार हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। अगर हम बात करें अमजद खान के बारे में थोड़ी और उसके बाद शामिल करते हैं आपकी ईमेल्स, क्योंकि मैं देख रही हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार आपकी ईमेल्स बढ़ती जा रही हैं। तो 27 जुलाई 1992 को, माफ़ कीजिएगा, अमजद खान इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके निभाए हुए हर किरदार आज भी जीवंत है। भारतीय सिनेमा में जब भी महान खलनायकों की चर्चा होगी, अमजद खान का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक कलाकार अपनी प्रतिभा से किसी भी किरदार को अमर बना सकता है।

श्रोताओं, अब आपकी ईमेल शामिल करना चाहिए, कार्यक्रम में वक्त बहुत कम बचा है। तो सबसे पहली ईमेल आई है धर्मेंद्र शिंपा जी की, भोपालगढ़ राजस्थान से, और इनके साथ हैं कपिल और पूजा। और ये लिखते हैं, आज आदरणीय मैडम जी नमस्कार, तो आपको भी हमारा नमस्कार। आज आप चर्चा कर रहे हैं फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता अमजद खान के बारे में, और अमजद खान के बारे में बेहतरीन बातें बताई जा रही हैं, रोचक किस्से और नगमे भी सुनवाए जा रहे हैं। हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आनंद उठा रहे हैं। तो धन्यवाद साथी, आपने इतना अच्छा लिखा। और इसके साथ ही हमारे साथी जुड़े हुए हैं, रविंद्र मोहन दास, निसार अली, तनुजा देवांगन, प्रकाश वर्मा। ये लिखते हैं, एक ही प्रोग्राम में आज हिंदी फिल्म के महान अभिनेता अमजद खान और डॉन साहब जी के बारे में अच्छी जानकारी सुनने को मिल रही है। अमजद खान साहब जी को शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। तो वो हम सब की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। साथ ही छत्तीसगढ़ पलारी से आप हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। और इसके साथ हैं तनुजा देवांगन, नीतीश कुमार, ईशांत, लखन, सावित्री और इनके साथी। इसके साथ ही अगली ईमेल जो हमें मिली है, ये है मसूर हसन। ये लिखते हैं, सहारनपुर, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके साथी। इसके साथ ही हमारे जो साथी हैं वो हैं, बहुत सारे साथियों ने दोबारा दोबारा ईमेल भेजी है, तो जिसके कारण हमारे नए नए साथियों की ईमेल हम नहीं ले पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। ये हमारे साथी हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से। फिल्म शोले में खलनायक के लिए डैनी को ऑफ़र मिला था, लेकिन उन्होंने शोले फिल्म में काम करने को मना कर दिया। फिर अमजद खान साहब को फिल्म शोले के लिए रमेश सिप्पी ने अमजद खान को लिया। ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुआ। क्या बात है, ये हुई ना नई बात जो आपने आज हमारे साथियों के साथ शेयर करी। तो इसी तरह की हम जानकारी और भी साथियों से चाहते हैं। और ये हैं हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं मेरठ से, दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी। आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से और दिल को छूने वाले, बहुत ही सुकून दे रहे हैं गीत। आपका उत्कृष्ट तथा उत्तम प्रस्तुतिकरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो धन्यवाद साथी, आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और ये हैं हमारे अगले साथी संदीप मक्कड़ जी, और ये लिखते हैं संदीप मक्कड़ जी, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल, पिंगा वाला चौक, गुराया, जालंधर से। और इसके साथ ही हमारे अगले जो साथी हैं, नवी हसन और हीरामणि वर्मा, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज अमजद खान जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनने को मिला, और इन्होंने बेहतरीन गीतों को सुनकर दिल खुश हो गया। यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई दी है, तो इसके लिए धन्यवाद साथी। और इसके साथ ही हमारे और भी अन्य साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। तो इसी के साथ आप सुनते रहिए, बने रहिए। तो साथियों, ये था हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता अमजद खान के जीवन और फिल्मी सफ़र पर आधारित हमारा विशेष प्रस्तुतिकरण। उनका अभिनय, उनकी आवाज़ और उनकी अदाकारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इसी शुभकामना के साथ आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार से तृप्ति जौहरी को दीजिए अनुमति, और छोड़े जाती हूँ इस गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
1: वंदना सखी, रासलीला को असली आनंद तो ब्रज भाषा में ही आवे।
0: अच्छा, मतलब रासलीला देख के आई हो?
1: हाँ सखी, ब्रज में आजकल कुंजन में रासलीला होए और छोटे छोटे गोपी ग्वाल और कान्हा के रूप में जो बालक हो मैं ना, इनके मोहते जो संवाद सुने ना, तब पता चले कि ब्रज भाषा में कितनी मिठास है।
0: हाँ जी तो है बेना, ब्रज भाषा की मूल शक्ति तो या की अद्भुत कोमलता में और माधुर्य में ही तो है। ब्रज भाषा भक्ति आंदोलन की आत्मा रही है, ऐसो मैं ना कह रही, ऐसो रामचंद्र शुक्ल ने कहो है और ब्रज भूमि को भाव भूमि कहो है।
1: हाँ सखी, ब्रज साहित्य में कृष्ण लीला मुख्य विषय रहो और अष्ट छाप के कवियन ने, पुष्टि मार्ग के कवियन ने या मैं अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: बिल्कुल बहना, मध्यकालीन कवियन ने ब्रज साहित्य को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बड़ी भूमिका निभाई है। अनेक संप्रदाय जैसे हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, इनको साहित्य कृष्ण भक्ति से ओत प्रोत रहो है।
1: हाँ, इन कवियन ने ही तो ब्रज भाषा में मिठास घोलवे को काम किया।
0: और मध्यकाल में ब्रज भाषा न केवल ब्रज प्रांत की भाषा ही वरन अखिल भारतीय स्तर पे यानी काव्य भाषा को प्रतिनिधित्व कियो है।
1: हाँ सखी, मध्यकालीन ब्रज साहित्य में कृष्ण लीला को अनेक कवियन ने मुख्य आधार बनायो और सूरदास ने तो वात्सल्य रस को अद्वितीय वर्णन कियो है।
0: और बहना घनानंद और बिहारी ने संयोग और वियोग को अद्भुत वर्णन किया है। इन कवियन ने ब्रज की प्राकृतिक छटा और ग्वाल बाल की संस्कृति को ब्रज भाषा में पिरोए के कोमल ध्वनि ते सुसज्जित करके अप्रतिम रचनाएं रची। और बहना रीतिकाल आते आते तो कलात्मकता और बढ़ गई हती।
1: हाँ सखी, तभी तो ब्रजभाषा साहित्य की दृष्टि ते इतनी समृद्ध बनी। और सखी, सूरदास को तो भक्ति काल को सर्वोच्च कवि माना गया, जिनने श्री कृष्ण की बाल लीलान को ऐसो हृदय स्पर्शी चित्र खेचो के पाठक इनकी रचनान को पढ़ के लीलान में खोए से जामे।
0: बिल्कुल बहना, बिनकी भाषा में गेयता और संगीतमयता इतनी प्रबल हती कि बिनके पद को सुन के आज हू मन गदगद है उठे। और बहना रसखान की भाषा, बिनकी भाषा शैली हूँ माधुर्य और संगीत महता ते परिपूर्ण हती। बिनकी रचनान में भाव की गहनता और भक्ति की गहराई स्पष्ट रूप ते प्रकट हुए है।
1: और सखी, मीराबाई की रचनाएं तो सुधे हृदय ते निकसे भाव हते। बिनकी भाषा में भक्ति की तीव्रता और प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई दे है।
0: बिनके पद में विरह, तड़प, सामाजिक बंधन ते मुक्ति की आकांक्षा और आध्यात्मिक मिलन की लालसा हती। और बिनकी व्यक्त करबे की शैली हूँ बड़ी भावपूर्ण और मार्मिक हती।
1: तो सखी, अब मीराबाई को एक पद सुनवाए दे।
0: हाँ बिल्कुल
1: सुनो, कितना माधुर्य है यह पद में।

0: बड़ो ही लालित्य पूर्ण पद आपने सुनवाया सखी, सचमुच जैसे पानी में रंग घुल जाए है ना।
1: हाँ।
0: वाई तरिया मीरा बाई की भक्ति में सांवरो नाम घुल मिल सो गयो हो।
1: हाँ सखी, मीराबाई ने तो गुरु की महिमा पेहू के उपद रचे।
0: हाँ, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो,
1: पायो जी मैंने
0: राम
1: रतन
0: धन
1: पायो। हाँ, संत रविदास थे बिन्ने दीक्षा ली और गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ायो।
0: मैना गुरु शिष्य परंपरा की महिमा तो सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है, जो आज हु अनवरत चलती आ रही है, और हमेशा ही आको वास्तविक उद्देश्य परमात्मा ते मिलन करवानो रहो है।
1: हाँ बहना, चातुर्मास में मुड़ियो पूनो पे ब्रज में गुरु शिष्य परंपरा के निर्वहन के काजे लोग गोवर्धन की परिक्रमा करें और अपने गुरु ते दीक्षा हुले में।
0: देखो बहन, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हते ना, सनातन गोस्वामी, और बिन के जो शिष्य हते, बिन ने या परंपरा को 470 वर्ष पहले पुनः स्थापित कियो, याई ते आषाढ़ शुक्ल की नौमी ते पूनो तक जे मेला लग्यो करे, और आजकल तो चातुर्मास चल रहे है, तो या में तो मेले उत्सव चलते ही रहेंगे।
1: हाँ सखी, चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी ते आरंभ है जाए और ब्रज में चातुर्मास को विशेष महत्व होए। कहे हैं के चातुर्मास में सबरे तीर्थ आए के कान्हा की नगरी में विश्राम करे हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और बहना चातुर्मास में मौन और संयम को हु विशेष महत्व होए।
1: हाँ बिल्कुल सखी, तो अब अपने श्रोतान को वार्ता सुनवाए दें यही विषय पे। तो ले श्रोताओं सुनो वार्ता, जो विषय है ब्रज में चातुर्मास को पौराणिक महत्व और उत्सव। वार्ताकार हैं विकास खन्ना।
2: राधे राधे रसिक जनों, ब्रज में चातुर्मास आरंभ होवे को है और अधिक मास 15 जून 2026 तक पूर्ण है चुको है। चातुर्मास 25 जुलाई 2026 से 20 नवंबर 2026 तक 119 दिन काजे चले हो, तो हम कह सकें कि ब्रज में 17 मई 2026 से लेके 20 नवंबर 2026 तक उत्सवन की अध्यात्म की बयार बह रही है। जाई काजे हम आपके काजे या कार्यक्रम में वा बयार को कछु आनंद प्रदान करवे काजे आए हैं। सबसे पहले हमें ब्रजे समझना पड़ेगा। ये कोई भूगोल को शब्द ना है, यह शब्द भारतीय संस्कृति, अध्यात्म में प्रेम, माधुर्य और ईश्वर के साथ सहज संबंध को प्रतीक है। यदि धर्म को ऐश्वर्य रूप काशी में दिखाई देवे है, यदि वैदिक यज्ञ की परंपरा प्रयाग में विकसित होती दिखाई देवे है, तो ईश्वर के साथ निष्कपट प्रेम को सर्वोच्च रूप ब्रज में प्रकट हुए है। ब्रज वह भूमि है जहाँ यशोदा नंदन भगवान कृष्ण ने राजा के रूप में ना आए बल्कि गोपाल, सखा, पुत्र और प्रियतम के रूप में जीवन व्यतीत कियो है। यही कारण है कि ब्रज की आध्यात्मिकता भय पर नहीं प्रेम पर आधारित है। ब्रज शब्द की व्युत्पत्ति जो भई है संस्कृत धातु में व्रज को अर्थ चलनो, गमन करनो, विचरण करनो हुए है। जाई से यह व्रज शब्द बनो। प्राचीन वैदिक साहित्य में व्रज को अर्थ गौ के निवास स्थान या गोष्ठ से भी लिया गया है। भगवान कृष्ण की गौचारण लीलाओं के कारण यह शब्द विशेष रूप से उस पवित्र भूमि को नाम बन गया जहां उन्होंने बाल और किशोर लीलाएं की। यही प्रकार व्रज को अर्थ केवल स्थान नहीं बल्कि भगवान के साथ जीव के प्रेम पूर्ण सह अस्तित्व को क्षेत्र है। शास्त्रन में ब्रज को उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिले हैं, जिनमें प्रमुख हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद पुराण में भी मथुरा महात्म, वराह पुराण, गर्ग संहिता, हरिवंश पुराण। इन ग्रंथों में ब्रज को भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि, भक्ति को केंद्र और परम पवित्र धाम बताया गया है। अब हम ब्रज के आध्यात्मिक रहस्य पर कछु प्रकाश डाले हैं। वैष्णव आचार्य ने 5 दिव्य तत्वों को वर्णन किया है, नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। इनमें धाम को सर्वोच्च स्वरूप ब्रज को मानो गया है, क्योंकि यहाँ भगवान की नित्य लीला का स्मरण हुए है। श्री रूप गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी ने ब्रज धाम को भगवान की शक्ति को दिव्य प्राकट्य मानो है। उनके अनुसार ब्रज केवल भौतिक भूमि नहीं बल्कि चिन्मय धाम है। ब्रज की विशेषता, ब्रज की महिमा चारा धारण पर टिकी है। भगवान का सहज, निकट और प्रेममय स्वरूप, यही कारण है कि ब्रज में भक्ति को स्वरूप अत्यंत आत्मीय है। अब बात करें ब्रज और अधिक मास और चातुर्मास। अधिक मास और चातुर्मास वैसे तो पूरे भारत में मनाया जावे है, पर ब्रज में या को स्वरूप विशिष्ट हो जावे है। यही कारण है कि इन अवधियों में साधना केवल व्रत नहीं रहती बल्कि धाम सेवा, परिक्रमा, संकीर्तन, भागवत श्रवण और श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के स्मरण से जुड़ जावे है। ब्रज को समझे बिनो अधिक मास और चातुर्मास की ब्रज परंपरा को समझना संभव ना है। ब्रज वह भूमि है जहाँ समय भी उत्सव बन जावे है और साधना भी प्रेम को स्वरूप ले लेवे है। यही कारण पुरुषोत्तम मास और चातुर्मास में ब्रज को महत्व असाधारण मानो गया है। रसिक जन श्रोतान को ये जानो होगो कि स्कंद पुराण के मथुरा महात्म में ब्रज की महिमा को सार मिले है। वो ये है कि तीनों लोकन में मथुरा मंडल के समान कोई तीर्थ ना आए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। यदि काशी मोक्ष देह है, यदि प्रयाग पुण्य देह है, तो ब्रज भूमि भगवान को प्रेम देह है। श्रोताओं, पद्म पुराण में पुरुषोत्तम मास की महिमा को वर्णन करते हुए कहो गयो है कि भगवान ने स्वयं जा मास को अपनो नाम प्रदान कियो, जाई सो जे समस्त माह में श्रेष्ठ मानो गयो। अगर यह बात की व्याख्या करी जाए तो कहो जाए के जा मास को संसार ने ठुकरायो, भगवान ने वाकु अपनाए लियो, जय भगवान को स्वभाव है। और ऐसे ही हरिभक्त विलास में चातुर्मास के नियमन को विस्तृत वर्णन मिले, कहो जा सके चातुर्मास को उद्देश्य भगवान को जगानो ना है, स्वयं जागनो होए। अतः कह सके हैं कि अधिक मास और चातुर्मास दोन को अंतिम उद्देश्य केवल नियम ना है बल्कि भगवान में प्रेम उत्पन्न करनो है। वैसे जिन श्रोतान को ये बतानो अत्यंत आवश्यक है कि अधिक मास 3 वर्ष में 1 बार पड़े है, और जब अधिक मास आवे है तब वह अधिक मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा निरंतर एक मानव श्रृंखला के रूप में दिखाई देवे है। यह वर्ष भी 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक ब्रज में या ब्रज 84 कोस परिक्रमा की मानव श्रृंखला 1 मिनट का जो टूटी नाए। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ है के देव उठनी एकादशी तक ये चातुर्मास को नियम लियो जावेगो। या चातुर्मास में सबसे पहले मुड़िया पूनो मेला 23 जुलाई से 30 जुलाई तक श्री गिरिराज धाम मथुरा में प्रारंभ होगो, जहाँ में सभी भक्तजन अपने गुरुवन की पूजन कर और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करे हैं। बाकी बात 30 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होगो, जो कि 28 अगस्त तक निरंतर श्रावण मास चलेगा। जहाँ श्रावण मास में ब्रज के सभी शिवालयों में बाबा भोलेनाथ को अभिषेक, गांव गांव में डालन पे झूला पड़ेंगे, सभी बहन बेटी अपने अपने मायके में आएंगी और बड़े चावते ये उत्सव लोक गीतन के संग झूला झूलते हुए बारिश की बुहारों में प्रत्येक सोमवार को महादेव जी को अभिषेक करते हुए निरंतर नित्य प्रति ये मास चलेगा। बाकी बात रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा और 30 अगस्त से भादो मास को प्रारंभ है जावेगा। भाद्र पक्ष 30 अगस्त से 27 सितंबर रविवार तक चलेगा। या भाद्र पक्ष में सबसे पहले 1 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पर्व पड़ेगा। 1 सितंबर की पूर्व संध्या पर कजरी तीज को भी 31 अगस्त को पर्व मनाया जाएगा। वहीं 9 सितंबर से हरतालिका तीज व्रत ब्रज में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बाकी बाद 14 सितंबर से 24 सितंबर तक 10 दिवसीय गणेश उत्सव को प्रारंभ होगा। वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में और विशेषकर महाराष्ट्र की भूमि पर मनाया जावे और प्रसिद्ध है। लेकिन ब्रज में गणेश चतुर्थी महोत्सव की अपनी अलग रीत है, जहाँ में सांझी महोत्सव, गीत संगीत की, लोक गीतन की वर्षा और जय के साथ 15 सितंबर ऋषि पंचमी को ब्रज में जालिए सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि जा चातुर्मास में पूरे जगत के 33 कोटि देवी देवता ब्रज में वास करे हैं, तो सभी ऋषि मुनि भी या ब्रज में ही वास करे हैं। जाके बाद गोपाल की प्राण प्रिय आलादनी शक्ति श्री राधा जी को प्राकट्योत्सव राधा अष्टमी के रूप में 19 सितंबर को मनाया जाएगा। जाके बाद प्रारंभ होगी अनंत चतुर्दशी, 25 सितंबर से ये अनंत चतुर्दशी को पावन पर्व मनाया जाएगा और यही दिना गणेश जी के वह 10 दिवसीय महोत्सव को परायण होगा और गणेश जी को विसर्जन होगा। बाके बाद 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष को मास प्रारंभ है जावेगो, जहाँ पितृपक्ष के समापन के साथ ही ब्रज में देव उठनी एकादशी से पूर्व नरक चतुर्दशी, दीपावली आदि पर्व प्रारंभ होंगे और यह चातुर्मास में समस्त ब्रजमंडल में सभी देवालय में हिंडोला पड़ेंगे, ठाकुर जी राधा रानी संग झूला झूलेंगे, विशेष तिथियन पर घटान को मंदिरन में प्रदर्शन होगो, काई दिना काली घटा, काई दिना हरी घटा, ब्रज में विशेष प्रकार से घटान को मंदिरन में आयोजन किया जाए। जाके अलावा छोटे से लेके बड़े सभी मंदिरन में फूल बंगला और सांझी जाको आयोजन किया जाएगो। फूल बंगला के दर्शन देखते ही बने हैं, कभी बर्फ बंगला, कभी फूल बंगला, कभी घेवर बंगला, कभी 56 भोग तेउ बंगला बने हैं। और जाके अलावा शाम को सांझी को प्रदर्शन हुए है, तो ऐसा लगे है कि ब्रज में चातुर्मास को उत्सव दीपावली तेउ बड़ो है गो है। पितृपक्ष के समापन ते नवरात्र, नवरात्र के बाद करवा चौथ, करवा चौथ के बाद दीपावली आदि पर्व मनाते हुए देव उठनी एकादशी पर या चातुर्मास को समापन हुए है और ये ब्रजभूमि अपने लाला के संग कार्तिक मास को मनावे के लिए तैयारियन में जुट जावे है। जालिए जा ब्रज में अधिक मास से लेके और चातुर्मास तक एक बड़ो विशेष आयोजन हुए है और लगे ही ना आए हैं कि हम या चातुर्मास में कई नियम ते बंधे हैं। तो रसिक जन श्रोताओं, अधिक मास और चातुर्मास में या ब्रज में 33 कोटि देवी देवताओं के वास के साथ सभी ऋषि मुनियों के पुण्य के भागी बनते हुए उत्सव मनाते हुए हम अपने लाला की लीलान को गुणगान करे हैं और यहीं हम अपनी वाणीय विराम दे के आपते विदा लेना चाहें। राधे राधे।
0: ब्रज में चातुर्मास को पौराणिक महत्व और उत्सव। अभी आपने विकास खन्ना जी ते वार्ता सुनी और विकास खन्ना जी ने या वार्ता में ब्रज में चातुर्मास को पूरा वर्णन कर दिया है। सच में बहना चातुर्मास में ब्रज की शोभा न्यारी है जाए। याई ते या में उत्सव और मेले की बहार रहे है। देव शयनी एकादशी ते देव उठनी एकादशी तक को काल ब्रज में पवित्र काल मान्यो जाए और याई में धरती माता हु फले फूले नए नए पादप पनपे हैं जो धरती को समृद्ध करें।
1: हाँ सखी, धरती की शोभा बढ़ जाए, बयार ठंडी है जाए, पवन झोंके खाए, कैसो लुहावना मौसम है जाए वर्षा ऋतु में। सखी मेरा तो मन ब्रजते जाएवे को करे ही ना है यह मौसम में।
0: सच में ही बहना, यह मौसम में ब्रज का रूप ही अलग निखर सो जाए है। जैसे यह गीत में वर्णन किया है।

0: बड़ा ही प्यारो गीत आपने सुनवाया।
1: हाँ सखी, अब बैठी ही रहोगी या कार्यक्रम को संपन्न करोगी?
0: हाँ चौन आए।
2: अब यही के संगई हमारा आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यही संपन्न हो गए है। मोको यानी के वंदना को
0: और मोको यानी वंदना जौहरी को जाए वे की अनुमति देओ।
2: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।
3: अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। अब समय हुआ है हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं के मन पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स का।

0: कुछ भी नहीं था पास हमारे, फिर भी राजाओं की तरह जिया करते थे। सच में उस बचपन वाली जिंदगी में बहुत मस्ती किया करते थे, क्यों सुहानी, है ना ऐसी बात?
1: बिल्कुल सही प्रियंका दी, ना कोई डर ना कोई शर्म, जो मन में आए वो सब करो। और आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर।
0: वो तो है सुहानी, लेकिन सबसे पहले हम रेडियो किड्स को हेलो तो कर लें।
2: हेलो फ्रेंड्स।
1: क्यों ना कार्यक्रम का आरंभ होने से पहले हम ये जान ले कि हमारे साथ जो आज हमारे साथी जुड़े हैं उनका नाम क्या है और वो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं।
3: मेरा नाम सोनल है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम सक्षम राजपूत है और मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ।
5: मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ।
6: मेरा नाम कृतिका यादव है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ।
7: मेरा नाम यांशी है, मैं क्लास LKG में पढ़ती हूँ।
8: मेरा नाम पवित्रा है, मैं क्लास 4th में हूँ।

0: सभी को पता तो ये लग ही गया होगा कि ये देशभक्ति गीत क्यों चलाया गया। कुछ
1: हाँ,
0: है क्या खास?
1: कारगिल दिवस।
0: कौन बताएगा हमें इसके बारे में?
1: बताओ सोनल। ये दिवस भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
0: तो बच्चों, कारगिल विजय दिवस भारत के देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दिवस कब मनाया जाता है, कोई मुझे बताएगा?
1: क्यों ना प्रियंका
2: प्रियंका
1: दीदी,
2: दीदी,
1: आप
2: आप
1: ही
2: ही
1: बता
2: बता
1: दो
2: दो
1: हमें।
2: हमें।
0: ये मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। तो यहाँ पर कोई रेडियो किड्स ऐसा है क्या जिसने कारगिल दिवस के लिए कोई कविता तैयार की हो?
1: मैंने की है ना,
0: सुनाओ
1: सुनाओ।
0: सोनल।
1: जान लिया था उन्होंने, वतन से ज्यादा और कोई धर्म नहीं होता। मानते थे वो वीर इस तिरंगे से बड़ा और कोई कफन नहीं होता। दूर कहीं वो अपने घर से वतन की हिफाजत करता है। अपनी माँ को अकेला छोड़ वो भारत माँ की रक्षा करता है। रख कर पत्थर दिल पर अपने, सब रिश्तों के मोह वो त्यागता है। हंसते हंसते जान वो अपनी भारतवासियों के नाम लुटाता है। दुख होता है उसे भी जब परिवार छोड़ वो सरहद जाता है। कल वापस लौटेगा या नहीं कुछ पता भी नहीं होता है, फिर भी गम छिपाकर मुस्कुराता वो रहता है। तिरंगे में लिपटे एक दिन यही सपना उसका होता है। तिरंगे में लिपटे एक दिन यही सपना उसका होता है।
3: अरे वाह सोनल, मुझे आपकी कविता तो बहुत पसंद आई और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी दोस्तों को भी बहुत पसंद आई होगी।
0: तो अभी बात हो रही थी देश की रक्षा की। देश की रक्षा के साथ साथ हमें अपने प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास जो वातावरण है, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सबसे छोटी सी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है जिसने फ्लावर्स के टॉप पहने हुए हैं, तितलियाँ सर पे बिठा रखी हैं, नेचर गर्ल बन के आई है। क्यों किया ऐसा आयांशी?
4: क्योंकि मुझे पसंद है।
3: अरे वाह आयांशी, और नेचर की चीजें, चाहे वो तितलियां हो, चाहे वो फूल हो, पत्ते हो, ये बस आपको ही नहीं, हर जुलाई 28 को हम मनाते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो यह भी जान लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी यानी हम सभी छोटे बच्चों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह मनाया जाता है।

0: तो बच्चों, नेचर से रिलेटेड किसने किसने पोएम तैयार किया हुआ है, नाम बताइए एक एक करके अपना।
1: पवित्रा,
2: सोनल,
3: सक्षम,
4: यांशी।
0: अरे वाह, इतने सारे बच्चों ने नेचर के लिए तैयार किया हुआ है। तो एक एक करके सुनते हैं, सबसे पहले अयांशी से, क्योंकि नेचर गर्ल तो आज यही बनी हुई है।
5: एक छोटा बीज जमीन के अंदर था, एक छोटा बीज जमीन के अंदर था, आँख बंद करके वो सोया रहता था, आँख बंद करके

बहुते सोलिया बीजने लिए अंगड़ाई, और वो उठ गया। इधर उधर देख के वो नाचने लगा, इधर उधर।

0: आहा छाव देने लगा।
1: मैं ना पहले आयांशी को देख रही थी। आयांशी बहुत ही ऐसे शर्मा के आराम से अपना अलग से बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही आयांशी ने कविता बोलना शुरू किया, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई। उनकी आवाज़ ही इतनी प्यारी थी, ऐसे जैसे बारिश की कोई बूंद ऐसे ज़मीन पर टपक रही हो। आयांशी, हम सबको ना बहुत मज़ा आया।
2: अब कौन सुनाएगा?
3: मैम
2: सुन ले सुहानी इनसे।
1: हाँ, काफ़ी उत्सुक लग रहे हैं हमारे सक्षम दोस्त। तो सक्षम, फटाफट से अपनी कविता सुनाइए।
4: मेरी कविता का नाम प्रकृति का संदेश है। चिड़िया से है उड़ना सीखा, तितली से इठलाना, भवरे की गुंजन से सीखा गाना मधुर गाना, तेज लिया सूरज से हमने चांद शीतल छाया, हरे भरे पेड़ों की होती देखो सुंदर काया, घड़ी की टिक टिक ने समझाया सदा ही चलते रहना, मुश्किल कितनी आन पड़े धीरज ही वीरों का गहना, प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया, इसे अपने हाथों से ईश्वर ने है सजाया।
2: वानी, सक्षम ने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई।
1: बिल्कुल प्रियंका दीदी, और जैसे कि उन्होंने बोला कि सुंदर नदियाँ, बड़े पहाड़, सुहावनी हवा को महसूस करना किसे नहीं पसंद, है ना?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो क्यों ना जानते हैं कि अगली पोयम, अगली कहानी हमारे लिए कौन बच्चा लाया है?
0: मैं सुनाऊं?
1: बिल्कुल पवित्रा, क्यों नहीं।
0: मेरी कविता का नाम है अ ब्यूटीफुल डे। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द लेक डॉट ग्लिटर, द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट द वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, द कैटल आर ग्रेजिंग, their heads never raising, there are 40 feeding like one, like an army defeated, the snow had retreated, and now dog fare ill, on the top of the bare hill, the plover is whooping, and on, and on, and on, there's joy in the mountains, there's life in the fountains, small clouds are sailing, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, द रेन इज ओवर एंड गॉन।
2: तो पवित्रा ने इतनी अच्छी कविता सुनाई, इंग्लिश में सुनाई, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही अच्छा था, मदर नेचर के संरक्षण को लेके। और आगे हम चलते हैं। वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे नेचर का पार्ट है। वाइल्ड लाइफ में क्या आता है?
1: फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स जैसे बाघ,
0: टाइगर,
1: फॉक्स,
0: मंकी,
4: एलिफेंट,
0: ज़ीब्रा।
2: अरे वाह, बच्चों को तो बहुत पता है वाइल्ड लाइफ के बारे में। आयांशी, अभी आपने क्या बोला?
0: ज़ीब्रा।

के गांव में वो छांव देने लगा, आते जाते लोगों को वो छांव देने लगा, आहा छांव देने लगा।

बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: आया बंदर भी आया, छन छन करके आई चिड़िया।
1: एनिमल पर आते हैं तो सबसे पहले मैं बच्चों से जानना चाहूंगी कि हमारे देश का नेशनल एनिमल कौन है, राष्ट्रीय पशु।
2: मैं बताऊं।
1: सभी बच्चे बताएंगे क्या?
3: टाइगर,
2: नेशनल बंगाली टाइगर,
4: नेशनल बंगाली रॉयल टाइगर।
1: तो बच्चों ये बताओ कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? नहीं पता?
5: देखा, फंसा दिया ना तुम्हें।
6: नहीं, आप ही बता दो।
1: सुहानी बताएगी।
5: तो मैं बताती हूँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 29 जुलाई को।
1: किसी बच्चे के पास कोई कविता या कहानी है बाघ को लेकर?
6: हाँ, मेरे पास है ना।
4: है मेरे पास भी।
1: तो आशी और सोनल के पास है, दोनों एक एक करके सुनाएंगी। पहले आशी फिर सोनल।
4: रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल मूछ के और पूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। झूम झूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का। पेट पेट पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा।
5: मैं तो देख सकती थी कि जब भी आप अपनी कविता बोल रही थी ना, आप भी बहुत एंजॉय कर रही थी। तो अब अगली कविता हमें कौन सुनाएगा?
6: मैं।
5: सुनाओ सोनल।
6: राष्ट्र पशु में भारत का, बाघ मुझे सब कहते हैं। वन्य जीव सारे जंगल के मेरे पक्ष में रहते हैं। साइबेरिया का मैं वासी, अब भारत की शान। मुझे देख सकते हो जाकर रूस, चीन, ईरान। चीतल, साभर, नील गाय मैं बड़े चाव से खाता। नहीं मिले तो चिड़िया खाकर अपनी भूख मिटाता। रेत घास की चढ़ दलदल में मैं आवास बनाता। हुई शाम सूरज ढलते ही मैं शिकार पर जाता। मेरी परम शक्ति के सम्मुख हाथी भी शीश झुकाता। राह छोड़ के हट जाते सब जब मैं आ जाता।
1: तो बच्चों अभी तक हमने देखा आपने बहुत कुछ सीखा और आपने बहुत कुछ हमें बताया भी। अब बारी आ गई है आपने क्या क्या अभी तक सीखा उसको परखने की। तो अब शुरू हो जाए प्रश्नोत्तरी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है?
3: अरुणाचल प्रदेश।
5: बिल्कुल सही उत्तर दिया आयांशी। तो अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है?
4: मैं बताऊं, प्लांट्स, ट्रीज।
5: और कोई उत्तर देना चाहेगा?
2: ओजोन लेयर।
5: बिल्कुल सही सक्षम। कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है?
2: मैं बताऊं।
5: अरे सबको पता है, चलो एक एक करके अपना उत्तर दो।
2: 22 अप्रैल।
3: 22 अप्रैल
5: बिल्कुल सही उत्तर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
1: बच्चों सब तैयार हो अगले प्रश्न के लिए?
2: हाँ बिल्कुल।
1: वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है?
2: नाइट्रोजन।
1: अरे वाह,
5: तो इस प्रश्नोत्तरी में तो मुझे बहुत मजा आया, दोस्तों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे भी। और अगले सप्ताह भी हम फिर मिलेंगे।

0: अभी हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोता सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम रेडियो किड्स, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 4 बजने को है, प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार, संगीतमय कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में महाभारत काल के महादानी राजा मोरध्वज की दानवीरता का किस्सा यह है कि आज की स्वांग में कि धनुर्धारी अर्जुन ने महाभारत

0: के युद्ध में जब जब विजय प्राप्त की, तब तब श्री कृष्ण से कहा कि आपके भक्तों में मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं और भ्राता युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी नहीं। अश्वमेध यज्ञ के उपरांत पांडवों ने दिग्विजयी घोड़ा को छोड़ा। घोड़े की सुरक्षा में विश्व विजेता अर्जुन को भेज दिया गया। जैसे ही घोड़ा अवधपुरी की सीमा में पहुंचा, राजा मौरध्वज के इकलौते पुत्र तामरध्वज ने घोड़े को पकड़कर रोक लिया और प्रतिद्वंद्विता में अर्जुन को पराजित कर दिया। अर्जुन लौटकर श्री कृष्ण को सारा हाल बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें तुमसे बड़ा योद्धा मिल गया है। चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। एक बनावटी शेर लेकर उसी राजकुंवर के महल में पहुंचकर उस भूखे शेर का बहाना बनाकर लेकर उसे उस नादान बालक को उसी के माता पिता के हाथों पैनी धार के आरे से चिरवाएंगे। तो ये एक कहानी है और आज के इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और ये एक बहुत ही भावुक करने वाला क्षण होगा और इन सब किस्सा को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ऋषिपाल सिंह जी, राजा मोरध्वज की भूमिका में होंगे। विद्याधर रानी का किरदार निभाएंगी पूजा शर्मा, साधु के रूप में अमित खदान जी, प्रमोद गिरी जी तामरध्वज की भूमिका में होंगे और कुंज बिहारी बाड़ी के रूप में। आज के लोकगीत स्वांग को संगीत से सजाएंगे हारमोनियम पर बब्बर भारती। जी हाँ, ढोलक पर होंगे देवेंद्र जी, नगाड़े पर कुल्लू और ऑक्टोपैड पर सुभाष जी। बहुत ही खूबसूरत। तो आइए सुनते हैं स्वांग किस्सा राजा मौरध्वज।
1: महाराज
2: जी, महारानी,
1: ये बताइए कि आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। चिंतित का कारण क्या है?
2: महारानी, गजब हो गया।
1: क्या कारण?
2: रात बड़ा अजीब सपना दिखाई दिया है।
1: सपना? कैसा सपना दिखाई दिया महाराज?
2: सुनोगी तो कांप उठोगी महारानी, कांप उठोगी।
1: अपने सपने का हाल बताइए महाराज।

0: मुझे झूठा नहीं लग रहा है महारानी।
1: महाराज घबराने की कोई भी बात नहीं है।
0: वो सपना मेरी आंखों के सामने तस्वीर बनकर आ रहा है महारानी।

0: महारानी,
1: कहिए महाराज,
0: मुझे आभास हो रहा है कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है महारानी।
1: महाराज, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज आपको हो क्या गया है।
0: क्या हो गया है महाराज, क्या बताऊं? साधु महाराज, महाराज प्रणाम।
2: प्रणाम महाराज।
0: आज दानी राजा मोरध्वज के राज दरबार में आपका हृदय से स्वागत है महाराज, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप मेरे राज दरबार में कुछ मांगने के लिए आए हो।
2: जी हाँ राजन।
0: कहिए।

0: महाराज
1: कहिए राजन।
0: मैं क्या देख रहा हूँ? कभी मैंने साधु संतों के साथ कोई जंगली जानवर को नहीं देखा, ये पीछे क्या दिखाई दे रहा है?
2: ये 30 रोज का भूखा हमारा शेर है, सभी पता चल जाएगा, अभी सुनिएगा।

0: महाराज कहिए राजन।
1: मेरा नाम दानी राजा मोरध्वज के नाम से जाना जाता है।
2: मैं उस वंश से पैदा हूँ जिस कुल में
1: सतयुग में दानी राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए थे और जिन्हें सतवादी के नाम से ये संसार जानता था। महाराज अब चिंता न करिए।
0: तो राजन हमारे आदेश के अनुसार जाइए किसी बाली के यहाँ से पैनी धार का आरा लेकर के आइए और अपने बेटे को अपने

0: हाथों से चीरने की तैयारी कीजिए।
1: जैसा आदेश महाराज, आपके प्रत्येक आदेश का पालन किया जाएगा। बाढ़ी,
2: अवधपुरी नरेश को मेरा करवद प्रणाम।
1: बाढ़ी,
2: कहिए महाराज।
1: मैं राजा मोरधश आज तेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आया हूँ।
2: कहिए महाराज, आज मुझे अदना गरीब की टूटी फूटी झोंपड़ी पर आपका कैसे आना हुआ?
1: मुझे एक आरा चाहिए।
2: वो किस लिए?
1: बुझोगे
2: जरूर
1: तो बताऊंगा।

0: कहिए राजन।
1: ये आराम मुझे दो।
0: ठीक है महाराज।
1: ये आज मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज इस त्रिवाचा के संकट में तुझ अदना गरीब का ये आरा बहुत बड़ा काम करेगा।
0: ठीक है राजन।
1: साधुओं को ये आरा पकड़ाऊंगा, बड़े खुश होंगे। मैंने उनके आदेश का पालन कर लिया है।
2: दानी राजा मोरध्वज, ऐसा प्रतीत होता है कि आरा लेकर के आ गए हो।
1: जी महाराज, दानी राजा मोरध्वज, आपके आदेशों का पालन करता हुआ आपकी सेवा में उपस्थित है। महाराज, कोई आदेश है, आरा लीजिए।

0: अरे महाराज
1: कहिए,
0: ये पैनी धार का रहा मेरे बेटे की काया पर चलेगा ये कलेजा।
2: कांप उठेगा लेकिन तुमने
0: एक शर्त और लगा दी, मुझे

आज मुझे तुमने मेरे पुरखों की याद दिला दी। मेरे वो पुरखे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे और उन्हें सत्यवादी होने के कारण बड़ा दुख भरना पड़ा था, इसलिए

0: हे साधु महाराज।
1: कहिए राजन।
0: मैंने तीन वचन भरे हैं और मैं तिरवाचा हूं। मैं वचन हार नहीं हो सकता, मैं वचनबद्ध हूं। इसलिए मेरा एक अनुरोध है, मेरी एक प्रार्थना है।
1: कहिए राजन।
0: जो आपका आदेश है, मुझे अपनी पतवर तारानी विद्याधरणी को बताना चाहिए।
1: बिल्कुल महाराज।
0: और मुझे आदेश दीजिए कि मैं अपनी महारानी से ये सारी बातें बता सकूं।
1: आदेश है महाराज, आप जा सकते हैं।
0: महारानी विद्याधरणी।
2: कहिए महाराज।
0: आज हमारे ऊपर एक संकट का पहाड़ टूट रहा है महाराज।
2: कैसा संकट महाराज?
0: दो साधु महारानी, वो सपना साचा साबित होने जा रहा है।
2: साचा सपना?
0: हाँ, जो मैंने तुझे बताया था, जो मुझे राज दिखाई दिया।
2: लेकिन ऐसा क्या हो गया महाराज?
0: दो साधु एक भूखा शेर लेकर के हमारे राजमहल में बैठे हैं महारानी। उन्होंने दान मांगा है, दान में हमारे इकलौते पुत्र को मांग लिया है महारानी।
2: नहीं नहीं महाराज नहीं, आप ये क्या कह रहे हो महाराज?
0: इतना ही नहीं महारानी, वो तीन रोज का मांसाहारी भूखा शेर हमारे इकलौते पुत्र के मांस का भोजन करेगा।
2: नहीं महाराज, ये आपने क्या कर दिया महाराज, क्या कर दिया?
0: महारानी मैं तिरवाचा हूँ।
2: लेकिन महाराज हमारा इकलौता,
0: मैं दानी हूँ महारानी।
2: नहीं महाराज,
0: तुम पतवरता स्त्री हो और पतवरता स्त्री का
2: नहीं महाराज
0: धर्म बनता है महारानी, कर्तव्य बनता है कि अपने पति के संकट में जैसा भी दुख हो उसके साथ उसमें साथी हो जाना चाहिए, वो दुख बांट लेना चाहिए महारानी।
2: तो कहिए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ
0: महारानी?
2: जी,
0: पैनीधार कारा मंगाया है, यह है मेरे पास महारानी। और मैंने अभी राजकुमार से पूछा नहीं।
2: तो महाराज पहले आप राजकुमार से तो पूछ लीजिए।
0: महारानी विद्याधरणी, हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वही हमारे इष्ट देव हैं।
2: वो बात तो ठीक है महाराज, लेकिन हमारा एक लौता पुत्र है, पहले आप मेरे पुत्र से पूछ लीजिए एक बार।
0: धर्म के अखाड़े में ना कोई पुत्र होता है, ना कोई पिता होता है, ना कोई स्त्री होती है, धर्म सबसे बड़ा होता है महारानी। कलेजा थामो और मुझे

0: कि मैं अपने पुत्र से साधुओं के आदेश के बारे में कहूं। ये कहो, थामो कलेजा अपना।
1: थाम लिया कलेजा महाराज, थाम लिया। जैसा आप करना चाहो ऐसे आप कर सकते हो।
0: मैं पुत्र से मिलता हूं महारानी।
1: मिल लीजिए महाराज।
0: राजकुमार तामरध्वज।
2: जी प्राता जी।
0: मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, और आज एक ऐसा आदेश दे रहा हूं कि कोई पुत्र उस आदेश को स्वीकार कर पाएगा। सुनो मेरी बात को। मैंने तुम्हें दान में दे दिया है, और दान में भी एक भूखे शेर का भोजन तुम्हारी मां से होगा।
2: कहिए पिताश्री।

0: मेरे बच्चनों का उद्धार।
1: यदि तने मेरे आदेश का पालन कर लिया तो मैं तिर जाऊंगा राजकुमार।
0: तामा धज, मैं तिर जाऊंगा।
2: कहिए पिताश्री।
3: मेरे कमर तेरे ऊपर होनी है,

0: मैं धन हो गया बेटे, तेरे जैसा पुत्र कुल और वंश की मर्यादा को हमेशा हमेशा रखाए। अब मैं महारानी को ये कहूंगा, बेटे बैठ जाओ, ये आरा तुम्हारे पिता और माता दोनों पत्थर का दिल करके बेटे तेरी काया को छेड़ेंगे। महारानी
1: कहिए महाराज।
0: तुम्हें एक छोर से पकड़ना होगा महारानी।
1: लेकिन महाराज मैं ये कैसे कर सकती हूँ?
0: ये साधुओं का आदेश है महारानी।
1: लेकिन महाराज
0: तुम्हारे पतिव्रता धर्म का।
1: लेकिन महाराज वो मेरा एक लौता पुत्र है, मैं उसकी माता हूँ, मैं ऐसा अन्याय नहीं कर सकती महाराज।
0: विद्याधरणी यदि तुम उस पुत्र की माता हो तो मैं भी उसका एक पिता हूँ, इसलिए पतिव्रता स्त्री का जो फर्ज और कर्तव्य होता है यदि वो तुमने नहीं निभाया तो मैं कुल कलंकित भी हो जाऊंगा।
1: नहीं।
0: और तिरवाचा नहीं रह पाऊंगा।
1: नहीं।
0: वचनहार भी हो जाऊंगा।
1: नहीं महाराज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: इसलिए भगवान कृष्ण को याद करते हुए आरा तोरणी खींचना ही पड़ेगा।
1: दीजिए महाराज।
0: लेकिन महारानी
1: कहिए महाराज।
0: आरे को थामने से पहले मेरी कुछ बातें हैं।
1: कहिए आप क्या कहना चाहते हैं महाराज।
0: पत्थर का कलेजा करना पड़ेगा महारानी। ये ममता कांचल इसमें बड़ा स्नेह होता है। तेरी आँखियाँ में महारानी।
1: कहिए महाराज।
0: तेरी आँखियाँ में

0: रानी
1: कहिए महाराज।
2: साधु हमारे दाएं बाएं घूम रहे और वो सुन रहे हैं, रह रह कर सुन रहे हैं।
1: तो मुझे क्या करना होगा?
3: आँखियाँ में आंसू आ गए तो मां से

0: अपना महारानी में पसंद हार न हो जाए।
1: ऐसा मत करिए महाराज, ऐसा मत करिए।
0: दिल बज्जर करके महारानी

0: उठे भभो के भीतर ले मैं माँ की ममता रोई।
1: वो ही जन्मे वो ही मारे

0: खाइए महाराज।
1: अब आरे को एक छोर से पकड़िए, जब बेटे पर यारा चले,
2: खींच धर्म के आरे नर, खींच धर्म के आरे नर, मत खींचते बरी।

0: महारानी।
1: कहिए महाराज।
0: तुमने मेरी उम्मीद और भरोसे को कायम रखा है, इसलिए मैं धन्य हो गया महारानी।
1: ठीक है महाराज।
0: ये हमने अपने इकलौते राजकुमार तामर ध्वज को दो फाड़ों में चीर दिया है, अब मैं साधुओं के पास जाता हूँ।
2: हे
0: साधु महाराज।
2: कहिए राजन।
0: मैंने आपके आदेश का पालन कर लिया है, अपने राजकुमार को मैंने और मेरी पतवरता रानी विद्याधरनी ने दो हिस्सों में चीर दिया है, क्या आदेश है महाराज?
2: हे दानी राजा मोरध्वज, अपने बेटे के शरीर के आधे हिस्से को ले जाकर के महलों में डाल लीजिए।
0: जो आदेश है महाराज, आता हूं। हे साधु महाराज।
2: कहिए राजन।
0: आपके आदेश का ये भी पालन हो गया, मैंने अपने बेटे के अपने हाथों से चीरा हुआ आधा हिस्सा

महलों में डाल दिया है। महाराज, जो ये आधा हिस्सा राजकुमार की काया का तुम्हारे शेर के भूखे के सामने था, अब वो नहीं। लगता है तुम्हारे भूखे शेर का भी भोजन हो गया है। यदि भूखे शेर की भूख की तृप्ति हो गई है तो महाराज आप भी भोजन

हे साधु महाराज, जो पांच तत्वों में काया विलीन हो चुकी हो, तुम्हारी आंखों के सामने जिसे दो हिस्सों में चीर दिया गया हो और दुनिया में अब वो है नहीं, वो वापस कैसे हो सकता है?

महाराज, सूर्य दशा बदल देगा, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पत्थर पानी में तैरने लगेंगे। महाराज, क्या विधि का विधान बदल सकता है?

0: महाराज। हे साधु महाराज।
1: कहिए राजन।
0: मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ
1: महाराज।
0: क्या आदेश है?
1: हम तो आपके बेटे के साथ ही भोजन करेंगे। आप अपने बेटे को आवाज लगाइए।
0: क्या ये संभव हो सकता है?
1: हाँ राजन, आज हर वो चीज संभव होगी जो आज तक नहीं हुई होगी।
0: परंतु महाराज, आज तक कोई असंभव कार्य मैंने अपने जीवन में संभव होते नहीं देखा है।
1: लेकिन ये होगा महाराज, अवश्य होगा।
0: पुत्र तामरध्वज, राजकुमार, यदि विधि के विधान बदल गए हैं, प्रकृति ने अपना स्वरूप ही बदल दिया है, यदि इन दो साधुओं की भगवान वाणी में यदि वाणी सत्य हो रही है, तो अपने अभागी पिताश्री दानी राजा मोरध्वज की आवाज तुम्हारे कानों में जा रही हो, तो पुत्र राज दरबार में उपस्थित हो।
1: देखा राजा मोरध्वज, ये आपका बेटा शकुशल आपके सामने है।
0: महाराज, बड़ा अचंभित हूं, बड़ा भ्रमित हूं, विडंबनाओं ने मेरे मन को घेर रखा है। मैं पहले भी कह रहा था, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? कि महाराज,
1: कहिए।
0: मेरे हृदय के उद्गार कुछ प्रश्न बनकर तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं महाराज।
1: पूछिए महाराज।

0: जी हाँ महाराज,
1: ये महाभारत के विश्व विजेता आचार्य द्रोण के परम शिष्य और कुंती के पुत्र हैं।
0: जी हाँ महाराज।

0: आज कार्यक्रम में आपने सुनी ये सुंदर प्रस्तुति स्वांग किस्सा राजा मोरध्वज। ऋषिपाल सिंह जी ने राजा मोरध्वज का किरदार निभाया। विद्याधरणी रानी की भूमिका में थी पूजा शर्मा, साधु के रूप में अमित खदाना जी, प्रमोद गिरी जी ताम्रध्वज की भूमिका में थे और कुंज बिहारी बाड़ी के रूप में। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे बब्बर भारती, ढोलक पर देवेंद्र, नगाड़ा पर कुल्लू और ऑक्टोपर्ट पर थे सुभाष जी। प्रस्तुति सहयोग दिया दिनेश कुमार मीणा, विशाल कुमार और दिव्या ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामलों में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी

0: वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
0: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी, कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है, जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है, और रोज देखते भी हैं हम लोग। लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत
1: राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रहे अवैध जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो का भार उठा करके ये पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का दूसरा पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it defense production, defense exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today."
0: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। अहमद भाई, देखिए, लोक संगीत किसे अच्छा नहीं लगता, चाहे फिर किसी भी क्षेत्र का हो।
1: बिल्कुल
0: और लोकगीत केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि हमारे जो समाज का दर्पण होते हैं, और इतना ही नहीं, जीवन चक्र का प्रतिबिंब भी इनमें झलकता है। देखिए, जन्म से लेकर विवाह, मृत्यु, फसल की कटाई, विभिन्न ऋतुओं, होली, सावन, कजरी के अनुसार लोकगीतों के हर प्रसंग पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं।
1: दोस्तों, वाकई में आज हम बात करते हैं उस संगीत की जो न सीखा किताबों से, न किसी संगीत की क्लास में। यह है लोक संगीत माटी की आवाज में। न स्टूडियो चाहिए इसे, न कोई माइक मशीन। ढोलक की थाप, मजेरी की टनटन, बस यही है सीन। शादी हो, त्योहार हो, या हो फसल की बात, हर मौके पर गूंजती है इसकी मस्त सौगात। राजस्थान की धूप में, पंजाब की बयार में, भोजपुरी की मिठास बंगाल के त्योहार में, हरियाणा के रंग हों या यूपी के गाने में, हर राज्य की अपनी धुन हर सुर तराने में। भाषा बदलती है दोस्तों, पर भाव रहता है एक। सुख हो या दुख, प्यार हो या मेहनत की टेक।
0: और बिल्कुल सही कहा अहमद भाई। और देखिए, साथ ही इतिहास का ज्ञान, हमारे बहुत से ऐसे लोकगीत हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं, स्थानीय वीर योद्धाओं की गाथाओं से जुड़े होते हैं, जो मौखिक इतिहास को जीवित रखते हैं। तो चलिए, बातचीत और भी करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कोमल चौधरी के गाए ऐसे ही लोकगीत।

0: हेमंत भाई, ये तो लोकगीत सुना कोमल चौधरी से। और देखिए, हम बात कर रहे थे लोकगीतों की। लोकगीत जो संस्कृति का संरक्षण भी करते हैं, क्योंकि लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो मूल संस्कृति है, मान्यताओं और परंपराओं को सहेज कर रखते हैं।
1: जी
0: साथ ही भाई देखिए, सामूहिक एकता और भाईचारे का भी इनसे मिलन होता है। मेलों, त्योहारों, सामूहिक आयोजनों में गाए जाने वाले गीत समाज के लोगों को आपस में जोड़ के रखते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: हर हर क्षेत्र विशेष का अपना एक लोकगीत है और वहाँ का पर जो भाव होता है सुनील भाई वो एक ही रहता है हमेशा।
0: बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रियंका शर्मा से सुन लेते हैं ये लोकगीत।

0: मेरी पतली कबर जा मेरा जा नाड़ा जुब्बेदार लइयो, और कितनी बढ़िया तरह से बात को प्रस्तुत किया है, मतलब अपनी जो मांग है उसको कितनी अच्छी तरह से उन्होंने रखा है। और यही खास बात है लोकगीतों की कि अपनी बातों को कितनी अच्छे से प्रस्तुत किया जाए।
1: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात देखिए हेमंत भाई, देखिए इतिहास और सामाजिक संदेश का दस्तावेज हैं ये, क्योंकि लोकगीत आम जनता द्वारा लिखे जाते हैं और जैसे गांवों की महिलाओं द्वारा, इसलिए इनमें समाज के जो वास्तविक अनुभव, संघर्ष और खुशियां झलकती हैं। और इतना ही नहीं हेमंत भाई, इनके माध्यम से देखिए समाज की जो कुरीतियाँ हैं, चाहे दहेज प्रथा की बात करें, बाल विवाह की करें, और सही गलत की सीख बहुत ही मनोरंजक तरीके से दी जाती है।
0: सबसे अच्छी बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ये वर्षों से चले आ रहे हैं और ये आगे भी चलते रहेंगे।
1: और सबसे बड़ी बात एक और हेमंत भाई, ये गीत शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल अलग होते हैं। इन्हें गाने के लिए ना किसी कठिन अभ्यास या वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, ये बहुत सरल, सहज और सीधे दिल को छू लेने वाले होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुन लेते हैं प्रोग्राम के अंत में आशा लता की आवाज में एक और लोकगीत।

0: हेमंत भाई, ये तो लोकगीत सुना आशालता से, और आशालता के गाइस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे एक कार्यक्रम लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5:30 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल की दुनिया की हर संघर्ष, हर जीत, हर नए रिकॉर्ड और बड़ी कहानियों के साथ मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रतीक आनंद।
3: नमस्कार।
2: आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। आज की शुरुआत करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से, जहां भारत के लिए आई है एक बड़ी खुशखबरी। वेटलिफ्टिंग में श्रीकांत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को इस संस्करण में दिलाया है अपना पहला रजत पदक। साथ ही जानेंगे भारतीय दल के अभियान से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स। इसके अलावा जूनियर स्क्वॉश वर्ल्ड चैंपियनशिप में अनाहत सिंह के ऐतिहासिक विश्व खिताब और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 मुकाबले की भी बात करेंगे। ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन, यूथ हॉकी 5S8

0: एशियन चैंपियनशिप के फाइनल्स, बात होगी यूटीटी सीजन 7 के फाइनल की, साथ ही डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर की भी करेंगे बात, और जानेंगे संडे ऑन साइकिल के 83वें संस्करण की कुछ जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खेल खबर के साथ।
1: The Commonwealth Games.
0: खेल केवल पदक जीतने का नाम नहीं, ये हर दिन खुद को बेहतर साबित करने की चुनौती है, और कॉमनवेल्थ गेम्स की इसी सफर में भारत के खिलाड़ी हर मुकाबले के साथ नई उम्मीदें जगा रहे हैं।
2: रिप्रेजेंटिंग इंडिया, विशाखा सिंह चनम्मा,
3: विशाखा सिंह ऑफ इंडिया, हिट्स द सिल्वर कॉमनवेल्थ चैंपियन फ्रॉम लास्ट ईयर, हिट्स द सिल्वर हियर इन ग्लासगो।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन भारत के लिए आई है बड़ी खुशखबरी, इंतजार खत्म हो गया है और भारत के खाते में जुड़ गया है इस संस्करण का पहला रजत पदक। वेटलिफ्टिंग के मंच से आई शानदार सफलता ने भारतीय दल के अभियान को एक नई ऊर्जा दी है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने आखिरकार अपना पहला रजत पदक जीत लिया है। ये उपलब्धि हासिल की है मणिपुर के युवा वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने, जिन्होंने पुरुष के 60 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया। ऋषिकांत ने स्नैच में 121 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 264 किलोग्राम का भार उठाया। आखिरी प्रयास में उनके सामने 151 किलोग्राम वजन उठाकर सीधे स्वर्ण पदक जीतने का सुनहरा मौका था। पूरा स्टेडियम सांसे थामे इस कोशिश को देख रहा था, लेकिन वो इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। हालांकि उनका कुल स्कोर उन्हें रजत पदक दिलाने के लिए काफी रहा, और इसी के साथ भारत के खाते में इस प्रतियोगिता का पहला सिल्वर मेडल जुड़ गया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय दल का सफर लगातार रोमांचक होता जा रहा है। तीसरे दिन भले ही भारत के खाते में कोई नया पदक नहीं जुड़ा, लेकिन कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में तिरंगा कई बार पोडियम पर लहराता दिखाई देगा। तीसरे दिन की शुरुआत मुक्केबाजी से हुई, जहां युवा भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने शानदार जुझारूपन का प्रदर्शन किया। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती मुकाबले में उनका सामना कनाडा के क्योमा अल अहमदिया से हुआ। मुकाबला बेहद कांटे का रहा, लेकिन सचिन ने धैर्य और आक्रामक खेल का बेहतरीन संतुलन बनाए रखते हुए 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से जीत दर्ज की और प्री क्वार्टर फाइनल यानी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना ली। अब उनका अगला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड के विल हेविट से होगा, और उनसे भारत को पदक की बड़ी उम्मीदें हैं। लॉन बॉल्स में भारत की महिला जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह ने लगातार तीसरी जीत दर्ज कर शानदार शुरुआत की थी। टोंगा के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने टाई ब्रेकर जीत कर अपना विजय अभियान जारी रखा और अपने सेक्शन में अपराजित रहीं। हालांकि आज चौथे मुकाबले में भारत को पहला झटका लगा। नामीबिया के खिलाफ भारतीय जोड़ी ने दूसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को टाई ब्रेकर तक पहुंचाया, लेकिन निर्णायक क्षणों में नामीबिया ने 3-0 से टाई ब्रेकर जीत कर भारत को इस प्रतियोगिता की पहली हार थमा दी। अब भारतीय जोड़ी का अगला और बेहद अहम मुकाबला आज रात मेजबान इंग्लैंड से होगा। वहीं पुरुष सिंगल से पुतुल सोनेवाल की लगातार जीत का सिलसिला भी थम गया। उन्हें मलेशिया के इज्जत शमीर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रतियोगिता भी बाकी है और उनके पास वापसी का अवसर मौजूद है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भारत टीम स्पर्धा में पदक की दौड़ से बाहर हो गया। वेल्स और सिंगापुर के शानदार प्रदर्शन के बीच भारतीय महिला टीम 5वें स्थान पर रही। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर ये रही कि प्रतिष्ठा समानता ने 3.025 अंक हासिल कर महिला वर्ल्ड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब व्यक्तिगत स्पर्धा में उनसे पदक की उम्मीदें जरूर रहने वाली है। तैराकी में भारत को निराशा हाथ लगी है। दक्षिण शशि कुमार और आर्यन नेहरा पुरुषों के 400 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा के हीट से आगे नहीं बढ़ सके। वहीं महिला 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भारतीय टीम को वेल्स के खिलाफ 116 से हार का सामना करना पड़ा। अब अगले ग्रुप मुकाबलों में जीत भारत के लिए बेहद अहम रहने वाली है। और अब नजर आज के बाकी बड़े मुकाबलों पर डालते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है और आज भी कई अहम मुकाबले भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले बात वेटलिफ्टिंग की, जहां सभी की निगाहें भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू पर होंगी। महिला 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उतर रही मीराबाई से भारत को स्वर्ण पदक की सबसे बड़ी उम्मीद है। वहीं पुरुष 65 किलोग्राम वर्ग में राजा मुथु पांडी भी पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। मुक्केबाजी में भारत का व्यस्त कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रीति पवार महिला 54 किलोग्राम वर्ग में मलावी की डेबोरा मिंटेजे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके बाद जादूमणि सिंह का मुकाबला पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के सुमामा रहमान से होगा। वहीं आदित्य प्रताप यादव पुरुष 65 किलोग्राम वर्ग में युगांडा की नूहू पाटे के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। जिम्नास्टिक्स में तपन मोहंती पुरुष ऑलराउंड फाइनल में भारत की चुनौती पेश कर रहे हैं, जहां 6 अलग अलग उपकरणों पर उनका प्रदर्शन भारत के लिए बेहद अहम रहने वाला है। इस बीच तैराकी से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारत की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्री हरि नटराज, आर्यन नेहरा, अनीस एस गौड़ और धक्षण शशि कुमार की भारतीय चौकड़ी हीट्स में छठे स्थान पर रही। इस स्पर्धा में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि कनाडा की टीम ने शुरुआत ही नहीं की। अब भारतीय टीम फाइनल में पदक के लिए चुनौती पेश करेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के चौथे दिन की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही है। ऋषि कांता सिंह के रजत पदक ने भारतीय अभियान को नई रफ्तार दी। वहीं तैराकी में 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम का फाइनल में पहुंचना भी बड़ी उपलब्धि है। अब निगाहें मीराबाई चानू समेत उन सभी भारतीय खिलाड़ियों पर होंगी, जो आज भारत के पदकों की संख्या बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतर रहे हैं। देखना होगा कि क्या ग्लासगो में आज तिरंगा एक बार फिर पोडियम पर लहराता है। कुछ जीते सिर्फ पदक नहीं दिलाती, वो इतिहास की दिशा बदल देती हैं। 15 वर्षों तक जिस खिताब पर इजिप्ट का दबदबा रहा, आज उस पर भारत का तिरंगा लहराया है। भारत की 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतकर न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि जूनियर विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक जीत की पूरी कहानी।

0: And there it is, Jenny. Anahat Singh of India has finally claimed a world junior title for India.
1: Wow, incredible scenes. So much pressure on this young Indian player. Top seed coming in. Everyone watching back home. What a performance.
2: कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 में भारत की स्टार खिलाड़ी अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट की शीर्ष वरीय अनाहत ने फाइनल में दूसरी वरीय इजिप्ट की रुकैया सलेम को लगातार तीन गेमों में 11-3, 11-7 और 11-9 से हराकर भारत को पहला जूनियर विश्व स्क्वाश खिताब दिलाया। इस जीत के साथ अनाहत विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। इतना ही नहीं, उन्होंने 2011 से महिला वर्ग में चले आ रहे इजिप्ट के 15 वर्षों के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। पिछले 4 वर्षों से ये टूर्नामेंट उनके लिए बेहद कठिन रहा और हर बार वो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन जूनियर वर्ग में अपनी आखिरी अवसर पर उन्होंने दबाव को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब हासिल कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में अनाहत का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। उन्होंने 6 मुकाबलों में केवल 2 गेम गवाए, शुरुआती 3 मुकाबले बिना कोई गेम खोए जीते और इसके बाद लगातार 3 इजिप्ट के खिलाड़ियों को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हबीबा रिस्क को 3-1 से हराया, सेमीफाइनल में बार समाहे को भी 3-1 से मात दी। इसके बाद फाइनल में रुकैया सलेम को सीधे गेमों में पराजित कर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि के साथ अनाहत ने जोशना चिनप्पा के 2005 के उपविजेता प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए भारतीय स्क्वाश के इतिहास का नया अध्याय लिख दिया। महिला वर्ग में अनाहत भारत की सबसे सफल खिलाड़ी रही, जबकि रुद्रा सिंह, अनिका दुबे और सानकी कलांडी राउंड ऑफ 32 से आगे नहीं बढ़ सके। पुरुष वर्ग में मौजूदा एशियाई जूनियर चैंपियन आर्यवीर देवान राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे, वहीं युषा नसीफ और गुरवीर सिंह राउंड ऑफ 32 में तथा पूरव रभैया राउंड ऑफ 64 से बाहर हो गए थे। स्क्वाश अब लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा बनने जा रहा है। ऐसे में अनाहत सिंह की यह ऐतिहासिक सफलता भारतीय स्क्वाश के लिए एक नई उम्मीद और उज्ज्वल भविष्य का संकेत मानी जा रही है। विश्व जूनियर चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, 15 वर्षों से कायम इजिप्ट के दबदबे का अंत और ओलंपिक की ओर बढ़ती भारतीय स्क्वाश के लिए एक नई प्रेरणा। अनाहत सिंह की यह ऐतिहासिक जीत आने वाले वर्षों में भारतीय स्क्वाश के स्वर्णिम भविष्य की मजबूत नींव साबित हो सकती है। इस खास जीत को लेकर साथ ही आने वाले टूर्नामेंट्स को लेकर अनाहत सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: Of course, it means the world. It's the biggest event a junior can play, and

0: All worked out, then, and everyone was just like, you had to put in your 100% so you can make history. And I mean, I fought as hard as I could, and I'm glad that I was able to push through it.
1: This year, my main aim is to focus on the Asian Games. It's coming up very soon, and just to train towards that and make sure that I can get 2 medals in 2 of the events that I'm playing.
2: आइए बात करते हैं क्रिकेट की। कल शाम हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराकर 3 मैचों की T20 श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीता और हरारे की शुरुआती नमी का फायदा उठाने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। पिच में गेंदबाजों के लिए कुछ मदद की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। भारत की शुरुआत थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रही। अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक सलामी जोड़ी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। पहले T20 की तरह इस बार भी अभिषेक शर्मा ब्लेसिंग मुजरबानी का शिकार बने और दूसरे ही ओवर में भारत का स्कोर 10 रन पर 1 विकेट हो गया। इसके बाद पहले T20 में ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाकर आ रहे वैभव सूर्यवंशी पर सबकी निगाहें रही, जिन्होंने 8 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 20 रन बनाए। वैभव अपनी पारी को बढ़ा ही रहे थे कि तभी अपनी पारी की 9वीं गेंद पर रिचर्ड नगरवा ने ब्लेसिंग मुजरबानी द्वारा उन्हें कैच आउट करवा पवेलियन वापस भेज दिया। इसी के साथ भारत का स्कोर 3 ओवर के बाद 2 विकेट खोकर 29 रन हो गया। इसके बाद भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के साथ मिल 42 गेंदों में 66 रन जोड़े और रनों की गति को बरकरार रखा। तेजी से रन बनाने के इरादे से कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना विकेट खोया। उन्होंने 20 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 25 रन की एक जुझारू पारी खेली। इस वक्त तक भारत का स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 95 रन था। इसके बाद जो हुआ उसे हरारे का मैदान सालों तक याद रखेगा। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और भारतीय टीम के उप कप्तान तिलक वर्मा ने जिम्बाब्वे की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दी। ईशान किशन ने अच्छी फॉर्म दिखाते हुए मैदान के हर क्षेत्र से रन जुटाए और मात्र 44 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 81 रन बनाए। उनका बखूबी साथ निभाते हुए तिलक वर्मा ने महज 29 गेंदों में नाबाद 60 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। अंत में रिंकू सिंह ने आकर 8 गेंदों में 12 रन बनाए। तिलक और ईशान की पारियों की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 219 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की बात करें तो 6 में से 5 गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला, मगर कोई भी गेंदबाज रनों की इस सुनामी को रोक नहीं पाया और सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए। इसके बाद 220 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। ब्रायन बेनेट ने भारतीय गेंदबाजों पर कुछ कड़े प्रहार किए और 3 चौकों और 3 छक्कों के साथ 18 गेंदों में 32 रन बनाए, मगर उनका यह तूफान ज्यादा देर नहीं टिका। डेब्यू कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने बेनेट को आउट कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला विकेट झटका और जिम्बाब्वे की रीढ़ तोड़ दी। इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। प्रिंस यादव ने बेन करन और खतरनाक सिकंदर रजा को 0 पर आउट कर मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। स्पिनर रवि बिश्नोई ने डियोन मायर्स को बोल्ड किया। मध्यक्रम में शिवम दुबे ने वेस्ली मदवेरे को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तिलक वर्मा ने रायन बर्ल को आउट किया और रही सही कसर पार्ट टाइम स्पिनर अभिषेक शर्मा ने पूरी कर दी, जिन्होंने अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हुए 2.5 ओवरों में मात्र 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसके बाद पूरी जिम्बाब्वे की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 17.5 ओवरों में महज 129 रनों पर सिमट गई और भारत ने मुकाबला 90 रनों के भारी अंतर से अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की T20 श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और श्रृंखला भी अपने नाम कर ली है। कप्तान श्रेयस अय्यर की यह पहली अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की जीत है। इसके अलावा रनों के लिहाज से जिम्बाब्वे के खिलाफ उनके घर में यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। शानदार 81 रनों की पारी के लिए ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद ईशान किशन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: I feel, yeah, you know, wickets did go. Two wickets, we were down two wickets, but at the same time, you know, as a batter, as a batsman who's batting at number three, your job is to, you know, just watch the ball and just play your natural game. I mean,

0: I have to also understand the wicket. You know, there were a lot of thoughts going in whether we want to end up getting 250, 230, or it's the wicket is just about getting 170 to 180 runs. So we just have that, and we had that in mind where Shreyas Iyer came in and we wanted to just build a partnership, take the inning deep. And we were just planning to do that, and I think we executed it in a very good manner.
1: और ये तो बात रही कल के मैच की, अब आ जाते हैं आज के मैच पे जो अभी चल रहा है हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में। और 164 रन 3 विकेट पर भारत बना चुकी है। भारत ने पहले जीता था टॉस, बैटिंग करने का फैसला किया। अभी क्रीज पर मौजूद हैं श्रेयस अय्यर जो 27 रन बना चुके हैं, और साथ ही हैं उनका साथ दे रहे हैं तिलक वर्मा जिन्होंने 9 रन बना लिए हैं। 17 ओवर का खेल अभी तक खत्म हो चुका है। अभी तक के टॉप प्लेयर में बात करें तो वैभव सूर्यवंशी जो यंग स्टार हैं वो 81 रन्स ऑन 49 बॉल्स उन्होंने बनाए, और काफ़ी अच्छा आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। और साथ ही अभिषेक शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए, 2 रन पर आउट हो गए। ईशान किशन ने 29 रन बनाए, श्रेयस अय्यर भी अभी 27 रन उन्होंने बनाए थे, और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे हैं। तो अभी देखना होगा क्योंकि 2 मुकाबले पहले ही भारत जीत चुकी है, तो क्या ये सीरीज़ अपने नाम कर पाएगी या नहीं, और सीरीज़ ज़रूर अपने नाम करेगी, और आज का मैच जीत पाएगी या नहीं ये हमें देखना होगा।

अब बात कर लेते हैं शूटिंग की। ISSF विश्व कप हांगचाओ में भारतीय निशानेबाज लगातार अपनी सटीक निशानेबाजी से चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि इस बार पदक हाथ नहीं लगा, लेकिन कई मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल तक पहुंचकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। आइए जानते हैं आज के मुकाबलों की प्रमुख झलकियां। पुरुष की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में भारत की चुनौती फाइनल तक पहुंची, जहां ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और नीरज कुमार ने देश का प्रतिनिधित्व किया। मुकाबले की शुरुआत दोनों निशानेबाजों ने संयम के साथ की और तीनों पोजीशन नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग में लगातार चुनौती पेश करने की कोशिश की। हालांकि दुनिया के शीर्ष निशानेबाजों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में दोनों अंतिम चरण तक पदक की दौड़ में जगह नहीं बना सके। अंततः ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर छठे जबकि नीरज कुमार सातवें स्थान पर रहे। इससे पहले क्वालिफिकेशन में नीरज कुमार ने 595 अंक और 33 एक्स के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 589 अंक और 37 एक्स के साथ आठवें स्थान पर रहते हुए अंतिम आठ में अपना स्थान सुनिश्चित किया था। फाइनल में दोनों भारतीय निशानेबाजों ने पूरा दमखम दिखाया, लेकिन कड़े मुकाबलों में पोडियम तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। वहीं 10 मीटर पिस्टल पुरुष क्वालिफिकेशन में भारत के आकाश भारद्वाज, कमलजीत और केदारलिंग बालकृष्ण उच्चाग्नवे ने क्रमशः 580-19x, 580-25x और 579-23x के स्कोर के साथ 24वां, 25वां और 27वां स्थान हासिल किया, जबकि RPO श्रेणी में जयपाल मालविया ने 585-22x के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। वहीं मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा ने 580-26x के स्कोर के साथ 20वें स्थान पर अपनी चुनौती समाप्त की। इसी बीच महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रिसीजन स्टेज के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ईशा सिंह 293 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर 292 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई हैं। पूर्व एशियन गेम्स चैंपियन रही सरनोबत 289 अंकों के साथ फिलहाल 17वें स्थान पर हैं। अब सभी की निगाहें रैपिड स्टेज पर रहेंगी, जो कल खेला जाएगा, और इसके बाद सभी फाइनलिस्ट की तस्वीरें पूरी तरह साफ होंगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ईशा सिंह और मनु भाकर दोनों के पास फाइनल में जगह बनाने का सुनहरा मौका है, बशर्ते वे रैपिड स्टेज में भी अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखें। अगर पदक तालिका पर नजर डालें तो मेजबान चीन 5 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। भारत ने अब तक 1 रजत पदक अपने नाम किया है और संयुक्त रूप से छठे स्थान पर बना हुआ है।

बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 में कल रात गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में टेबल टेनिस का एक ऐसा हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया जिसने दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखा। दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन यू मुंबा टीटी ने एचवीआर कोलकाता थंडर ब्लेड्स को 8-3 से धूल चटाकर लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह मैच

शुरुआत में बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर का नजर आ रहा था। शुरुआती दो मुकाबलों के बाद दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर खड़ी थी, लेकिन इसके बाद यू मुंबा टीटी ने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। इस एक तरफा जीत के सबसे बड़े हीरो रहे यू मुंबा के कप्तान मानुष शाह और वेल्स की स्टार खिलाड़ी अना हर्सी। मिक्स्ड डबल्स का मुकाबला इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां मानुष और अना की जोड़ी ने कोलकाता के अंकुर भट्टाचार्य और अहायका मुखर्जी को सीधे गेमों में हराकर यू मुंबा को 6-3 की मजबूत बढ़त दिलाई। इसके बाद मैच खत्म करने की जिम्मेदारी खुद कप्तान मानुष ने संभाली। मेंस सिंगल्स के मुकाबले में उन्होंने कोलकाता के युवा खिलाड़ी अंकुर के खिलाफ जादुई खेल दिखाया। मानुष ने अपने बेहतरीन फोरहैंड विनर्स के दम पर अंकुर को 11-7 11-5 से पटकनी दी। इस शानदार प्रदर्शन के बाद यू मुंबा ने ज़रूरी 8 अंक पूरे किए और 8-3 से धमाकेदार जीत कर फाइनल का टिकट कटा लिया। शानदार खेल के लिए मानुष शाह को इंडियन प्लेयर ऑफ द टाई और अना हर्सी को फॉरेन प्लेयर ऑफ द टाई से नवाजा गया। अब बात करते हैं आज रात होने वाले महामुकाबले यानी ग्रैंड फाइनल की। आज रात ठीक 7:30 बजे से इसी मैदान पर खिताब के लिए एक ऐतिहासिक जंग होने जा रही है, जहां यू मुंबा टीटी का सामना घरेलू टीम डेम्पो गोवा चैलेंजर्स से होगा। यह फाइनल मुकाबला कई मायनों में बेहद खास है। एक तरफ डेम्पो गोवा चैलेंजर्स की टीम, जो इस सीजन में अब तक अजेय रही है, अगर गोवा आज जीतती है तो वह यूटीटी इतिहास में लगातार सारे मैच जीतकर चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन जाएगी और अपना तीसरा खिताब चूमेगी। दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन यू मुंबा के पास अपने खिताब की रक्षा करने के और गोवा के साथ सबसे सफल फ्रेंचाइजी बनने का सुनहरा मौका है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीज़न के ओपनिंग मैच में गोवा ने यू मुंबा को 10-5 से हराया था, इसलिए आज का फाइनल यू मुंबा के लिए उस हार का बदला लेने का सबसे सही मंच है। आज की सबसे बड़ी टक्कर गोवा की बर्नाडेट स्वजॉक्स और यू मुंबा की अना हर्सी के बीच देखने को मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या गोवा अपना अजेय रथ जारी रखती है या फिर मुंबा की टीम लगातार दूसरी बार चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा करती है।

टेबल टेनिस की बात को जारी रखते हुए आइए बात करते हैं ब्राजील के साओ होजे में चल रही वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता की, जहां कल शाम क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले गए और आज सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। बात करें पुरुष एकल की तो ब्राजील के ह्यूगो कॉल्डरोना ने दक्षिण कोरिया के ओ जुनसुंग को 3-0 से हराकर सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं जापान के युकिया उड़ा ने स्लोवेनिया के डार्को जोर्गिच को 3-0 से शिकस्त दी। एक अन्य मैच में फ्रांस के एलेक्सिस लेब्रून ने जर्मनी के पैट्रिक फ्रांसिस्का को 3-1 से हराया और आखिरी पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया के एन जे ह्यून ने जापान के शुनशुके तोगामी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बात करें महिला एकल की तो जापान की मियू नागासाकी ने अपनी हमवतन सत्सुकी ओडो को 3-0 से हराया। जापान की ही हितोमी सातो ने जापान की साकुरो योकोई को 3-1 से शिकस्त दी। वहीं एक अन्य मुकाबले में जापान की होनोका हाशिमोटो ने अपनी हमवतन काहो अकाया को 3-1 से पराजित किया। साथ ही जापान की ही हीना हयाता ने जर्मनी की नीना मिटलहम को 3-1 से मात दी। श्रोताओं, बात करें आज सेमीफाइनल में होने वाले मुकाबलों की तो ब्राज़ील के ह्यूगो कॉल्डरोना का मुकाबला होने वाला है जापान के युकिया उड़ा से। वहीं दूसरा मुकाबला होने जा रहा है एलेक्सिस लेब्रून का दक्षिण कोरिया के एन जे ह्यून के साथ। बात करें महिला सेमीफाइनल की, महिला एकल सेमीफाइनल में पहला सेमीफाइनल जापान की मिया नागासाकी खेलेंगी अपनी हमवतन हितोमी सातो के खिलाफ और दूसरे सेमीफाइनल में भी जापान की हनोका हाशिमोटो खेलेंगी हीना हयाता के साथ। ऐसा बड़ा दिलचस्प होगा देखना जब चारों खिलाड़ी जापान के ही हैं। बात करें पुरुष युगल की तो फाइनल मुकाबले में हांगकांग की जोड़ी जिसमें शुमार हैं वोंग चुनटिंग और चैन वाल्डविन ने जो सीफ्रॉड और विंसेंट पिकार्ड की फ्रांसीसी जोड़ी को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। साथ ही महिला युगल के फाइनल मुकाबले में हिना हयाता और काहो अकाई

कि जापानी जोड़ी ने अपना दबदबा बनाते हुए डू हाई केम और एन जी विंग लाम की हांगकांग की जोड़ी को सीधे सेटों से हराकर खिताब अपने नाम किया। बात करते हैं मिश्रित युगल की, जहां खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में जापान के शुनसुका तोगामी और हमवतन सात्सुकी ओडो ने जोड़ी ने वांग चुनटिंग और डू हाई केम की हांगकांग जोड़ी को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे मुकाबले में ह्यूगो कैल्डेरोना और ब्रूनो ताकाहाशी की ब्राजीलियाई जोड़ी ने यू क्वान तो और एन जी विंग लैम की हांगकांग जोड़ी को 3-1 से शिकस्त दी और फाइनल में जगह पक्की की। आज मिश्रित युगल का फाइनल होगा, जहां ह्यूगो कैल्डेरोना और ब्रूनो ताकाहाशी की जोड़ी शुनसुकी तोगामी और सात्सुकी ओडो के खिलाफ खेलती दिखेगी।

0: और अब बात कर लेते हैं संडे ऑन साइकिल्स में। 26 जुलाई 2026 को फिट इंडिया के संडे ऑन साइकिल के 83वें संस्करण को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के सम्मान में मनाया गया। इस खास थीम के जरिए 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे सैनिकों की वीरता और बलिदान को याद किया गया। देश भर में नागरिकों, युवा और छात्रों ने सेना के सेवारत व सेवानिवृत्त जवानों से मिलकर साइकिल चलाई। इस बार एक नई पहल भी शुरू हुई, फिट इंडिया वॉलंटियर प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ फिट रहना नहीं बल्कि एक स्वस्थ और मजबूत भारत बनाना भी है। कारगिल के नायकों को नमन करते हुए आज देश ने फिटनेस के साथ देशभक्ति का संदेश दिया।
1: आइए बात करते हैं हॉकी की, जहां कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में चीन ने भारत महिला चीन की महिला टीम ने भारत की महिला टीम को 4-2 से शिकस्त दी और खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की टीम ने कजाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 8-1 से शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया था, मगर फाइनल में चीन ने अपना दबदबा दिखाते हुए 4-2 से मुकाबला जीत लिया। साथ ही बात करें सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मस्कट में खेले गए FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप की, तो वहां स्वर्ण पदक मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 3-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए इसी वजह से दोनों टीमों को शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाते हुए हॉकी इंडिया ने टीमों के नकद पुरस्कार की घोषणा की।
0: और अब समय की सुई कर रही है इशारा और समय है आपसे विदा लेने का। मैं हूं प्रेरणा शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रतीक आनंद, प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ

0: आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said collective participation has always been a source of strength in India's cultural ethos. Mr. Modi made the remarks while interacting with participants of the Viksit Vibrant Village Program 2026 through video conferencing today. More than 400 young participants from all states and union territories shared their experiences with the Prime Minister. During the interaction, Mr. Modi highlighted the community participation, national integration and awareness about the strategic importance of border villages.
1: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
2: Prime Minister Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today."
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
2: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. The Prime Minister also said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago. Union Minister Prahlad Joshi today assumed the charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the New and Renewable Energy. Soon after taking charge, he chaired a review meeting of the Education Ministry to assess the implementation of various schemes and key initiatives. Minister of State for Education Jayant Chaudhary and several senior ministry officials attended the meeting. The Indian Embassy in Ukraine today said that it is closely monitoring the situation following the incident involving the cargo vessel MV Aegean Ragnar, which was struck at the port of Odisha yesterday. The embassy said that four Indian nationals were on board the vessel. It added that two of them have been confirmed safe, while information about the other two is still awaited. The embassy further said that search and rescue operations are underway and that it is in constant touch with the concerned authorities. At the ongoing Commonwealth Games, India's Rishikant Singh Chamban won the silver medal in the men's 60-kilogram weightlifting event in Glasgow today. Rishikant lifted 121 kg in the snatch, setting a new Commonwealth Games record before Malaysia's Muhammad Anik Kasdan equaled the mark. Malaysia's Muhammad Anik Kasdan clinched the gold medal with the Commonwealth Games record total of 273 kg. The silver medal is India's second medal at this year's Commonwealth Games and first in an able-bodied event. Earlier, para powerlifter Jandu Kumar opened India's medal account with the bronze in the men's heavyweight event. And in men's cricket, India have set a target of 193 runs for Zimbabwe in the third and the final T20 international of series in Harare. Opting to bat, India posted 192 for 5 wickets in their allotted 20 overs. Vaibhav Suryavanshi starred with bat, scoring 81 of 49 balls, while Ishan Kishan contributed 29 of 26 deliveries. For Zimbabwe, Brad Evans took 2 wickets. India made 2 changes to their playing 11, with Suryansh Hegde and Ashok Kumar replacing Shivam Dubey and Prince Yadav. And with that, we end this news bulletin.

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
1: इस अंक में प्रोफेसर वर्तिका नंदा द्वारा लिखित पुस्तक ज से जेल का लोकार्पण और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ग्रीष्मकालीन संगीत उत्सव। 21 जुलाई मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रोफेसर वर्तिका नंदा द्वारा लिखित पुस्तक ज से जेल का लोकार्पण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय एवं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी सदस्य सचिव की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए पुस्तक की लेखिका प्रोफेसर वर्तिका नंदा ने कहा,
2: आगरा जेल रेडियो के दिनों की एक बात बताना चाहती हूँ। 31 जुलाई को जेल रेडियो 7 साल पूरे करेगा। इस जेल में अक्सर सुबह से लेकर शाम तक का मैं समय गुजारती थी। कई जेलों में समय बदला। कुछ जेलों में मैंने निवेदन किया कि सर महिला बंदिनियों को कभी कभी जेल के प्रमुख दफ्तर तक आने का मौका मिल जाए। उनके लिए जेल के अंदर ही किसी और जगह में जाना बड़ा मुश्किल है। एक जेल में निवेदन किया था कि बंदिनियों और बंदियों को कभी कभी स्टूल में बैठने की इजाज़त मिले। एक जेल में ये भी कहा था कि अचार के साथ कभी कभी पराठा भी मिल जाए। एक जेल में ये भी कहा था कि बच्चों को कभी कभी जू में कोई ले जाए। ऐसा कुछ हो पाया, लेकिन इसका कोई पैमाना कोई तराजू मेरे पास नहीं है। और जेलें वाकई बदल गई। 100 सालों का अधूरा काम मेरे पास है। एक दिन बैठकर मैंने फहरिस्त बनाई। मुझे लगा कि आज मैं 24 घंटे भी काम करूं, 100 साल तक ये काम पूरा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज जब मैं इस मंच पर हूं, आपको मैं बताऊं, मेरे लिए ये किसी बड़े सपने के साकार होने से कम नहीं है। इस किताब में मैंने कुछ एक निवेदन किए हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ। जेल ने मुझे सबल और सक्षम बनाया है। जेल ने ये मुझे सिखाया कि याचक वाकई कभी शक्तिशाली नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संसार से मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो इस बल और इस कोशिश की ज़रूरत है कि मैं बार बार जेल में जा सकूं और हाँ, जेल से वापस भी आ सकूं। किसी का दुख असल में हमारी ज़िंदगी का आईना हो सकता है। अगर आप उस आईने का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। किताब की अंत में मैंने लिखा है, अगर संभव हो इस किताब को किसी बैरक तक पहुंचा दीजिए। आप पढ़ लें, आपको लगे आपके घर मोहल्ले राज्य में कहीं आसपास कोई बैरक है तो आप उस बैरक को कभी कभी याद कर लीजिए। और आप सभी को याद दिला रहे हूँ, जेल के अंदर ठिठके हुए पल बाहर नहीं आते। जेल की रोशनी अंदर ठिठक कर कहीं चुप रह जाती है। मुझे जेल के बाहर की ज़िंदगी अंदर की ज़िंदगी के बीच में एक पुल बनाना है, ये मेरी ज़िद है। मुझे उम्मीद है इस ज़िद में आप मेरा साथ देंगे। मेरे नाम का मतलब है दिए की लौ, लेकिन लौ इस रोशनी में बुझ भी सकती है। आप सभी मेरी वो हथेलियाँ हो सकती हैं जिससे रोशनी ना बुझे। आप सभी का शुक्रिया।
1: इस आयोजन में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपने संबोधन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा,
3: पुस्तक ज से जेल, इसकी तैयारी और इसे प्रकाशित करने के लिए जो श्रम डॉक्टर वर्तिका नंदा ने किया है, मैं उसके लिए उन्हें तहे दिल से शुभकामना बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, आज हम इसके विमोचन का हिस्सा बने हैं, वास्तव में ये एक अद्भुत साहस का काम है।
1: इस आयोजन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय ने अपने संबोधन में कहा,
4: ये किताब अनुभव के आधार पर लिखी गई है। वर्तिका जी को इस पुस्तक के लिए बधाई और आपके प्रयास में हम सब लोग सहयोगी बनना चाहिए, मैं इसकी कामना करके अपनी बात पूरी करता हूँ।
1: आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में ज से जेल पुस्तक की लेखिका प्रोफेसर वर्तिका नंदा ने बताया,
5: ज से जेल बहुत सालों की जेल यात्रा का परिणाम है, ऐसा मैं कहूंगी। देश भर की जेलें, दुनिया भर की जेलें, जिन जेलों को देखा, बहुत कुछ मेरे साथ चलकर आया। तिनका तिनका जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके तहत कई छोटी छोटी चीजों पर काम हुआ जिन्होंने बड़ा आकार लिया, जैसे कि जेल का रेडियो, जैसे कि तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स, जेल का पॉडकास्ट, जेल पर लिखे जाने वाली किताबें, जेल की दीवारें, जेल की कविताएं, जेल की लाइब्रेरी। ये जेल का एक जीवन दस्तावेज है। इसमें कुछ महिलाओं के जरिए जेल की असल की जिंदगी क्या है उसे बताने का प्रयास किया गया है। अब तक जेल साहित्य असल में आम तौर पर जो लिखा गया या तो जो जेल में बंदी था उसने लिखा और किसी एक जेल में बंदी था या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जेल को बाहर से देखा और अपनी कल्पना से लिखा या फिल्मों के आधार पर लिखा। लेकिन मेरे साथ ये एक सौभाग्य रहा या ये मेरे अनुभवों के पोटली का एक बड़ा अंश रहा कि देश भर की जेलों को जो देखने का मौका मिला उसने मुझे समृद्ध किया। उसने मुझे समझाया कि जेल पर क्या लिखे जाने और समझाए जाने की जरूरत है। पहली बार एक उपन्यास पर काम हुआ। घुंघरू है इसमें, योगेशी है, तसल्ली है, जुगनू है, मिठाई है और जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, जेल का माहौल है और जेल की बदलते हुए तरीके हैं। जेल का ये जो उपन्यास है अंत में ये बात भी साबित करता है कि इस पूरी यात्रा के दौरान जिस जेल की मैं बात कर रही हूँ उसमें क्या कुछ बदल गया। दिन का जेल रेडियो आया, बंदियों और बंदिनियों को सहारा मिला, जेल के अंदर लाइब्रेरी बनी, किताबें आने लगी, बंदिनियों को अखबारें मिलने लगी 2 की बजाय 10 और बच्चे पिकनिक पर जाने लगे। तो कोशिश ये थी कि मैं कल्पना की बात ना करूं, मैं उन कदमों की बात करूं जिनके जरिए जेलों में एक नए आकाश को बनाए जाने का प्रयास हो रहा है। जर्सी जेल उसी प्रयास की एक ध्वनि है और मुझे उम्मीद है कि जिनके भी दिलों में धड़कन है, जो जेल को जानना चाहते हैं, वो इसे पढ़कर पहले से ज्यादा बेहतर इंसान शायद बन पाएंगे। ये भी मुझे लगता है कि इंसान ये भी जान पाएगा कि जेल के बाहर के लोगों की अपनी जेल क्या है। एक जेल जेल के अंदर, एक जेल जेल के बाहर। मैंने अंत में निवेदन ये किया है कि आप जब ये किताब पढ़ें, पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए किसी बैरक में इसे पहुंचा दीजिए, क्योंकि बंदियों के लिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है।
1: विगत दिनों इंडिया इंटरनेशनल ग्रीष्मकालीन उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आमंत्रित कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों का उपस्थित कला प्रेमियों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम्। प्रख्यापितं तेन सामूहिक सहभागितायाः वैशिष्ट्यम्। कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रभृतयः हुतात्म वीरेभ्यः श्रद्धांजलिं समार्पयन्। प्रधानमंत्रिणा अद्य कारगिल विजय दिवसे राष्ट्रस्य अतुल्य हुतात्म पुरुषाः ससंभ्रमं संस्मृताः। प्रोक्तं च यत् देशाय तेषां महाबलिदानं सर्वान् गौरवपूर्णान् करोति। मातृभूमेः रक्षणाय हुतात्म वीरेभ्यः राष्ट्रपत्यादिभिः भावांजलिः समर्पितः। कृष्णसागर मार्गेषु पोत सेवायाः पूर्वं सुरक्षा संकटं परीक्षणाय विदेश मंत्रालयस्य भारतीयानां कृते तीव्रा संचेतना। ग्लास्गो नगरे समायोजितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु ऋषिकांत सिंह चनम्बम 60 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धायां अनुपमं कौशलं प्रदर्श्य रजत पदकं समुपार्जितवान्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् भारतस्य सांस्कृतिक मूल्येषु सामूहिक सहभागित्वं सर्वदा बलस्य स्तोत्रो वर्तते। श्रीमोदी अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन 26,000-2,000 विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्यस्य प्रतिभागिभिः सह वार्तालापावधौ एतद् उक्तवान्। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रस्य अतुल्य पराक्रमिणः शौर्य पुरुषान् ससंभ्रमं सस्मार। तेन उद्घोषितं यत् भारतम् अद्य निरन्तरं नूतनान् उच्च शिखरान् आरोहति। तद्यथा सैन्य उत्पादने सैन्य निर्याते अथवा मित्र राष्ट्रैः सह राजनैतिक सहयोगे भवतु। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिनः सम्बोधयन् श्रीमोदी आह यत् अद्य जुलाई मासस्य 26 दिनांको वर्तते। यो हि सा तिथिः यस्याः संस्मरणाय कस्यापि पञ्चाङ्गस्य आवश्यकता नैव वर्तते, यतो हि अद्य सम्पूर्णे राष्ट्रे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: श्रीमोदी न्यगादीत् यत् भारतम् अश्रान्तं स्वकीयस्य प्राविधिक सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणं विदधाति। तेन भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरि इति पोतस्य नूतन प्रवेशः विशेषतः श्लाघितः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् गत रविवासरे विक्रम-1 इति उपग्रह प्रक्षेपकस्य सफल प्रक्षेपणानन्तरं प्रत्येकं भारतीयः गौरवगौरवेण परिपूर्णो वर्तते। कैच द रेन इति वर्षा जल संग्रहः अभियानम् अधिकृत्य भाषमाणः श्रीमोदी सहर्षम् अब्रवीत् यत् जुलाई मासस्य 4th दिनांकात् आरभ्य अशेषे हि देशे विशिष्टमेकं राष्ट्रव्यापी अभियानम् अविरतम प्रचलति।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: अद्य मन की बात इति मनोगतं कार्यक्रमे प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कतिपय दिवसेभ्यः पूर्वं ग्लास्को नगरे प्रारब्धासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु सहभागिनं प्रति एकं क्रीडकं प्रति एकः भारतीयः जयघोषं करोति। अनेनैव सह तेन विज्ञान ओलंपियाड स्पर्धानां उल्लेखो विहितः यत्र विपुला संख्यानां छात्राणां सहभागिता भवति। अस्मिन् संस्करणे प्रधानमन्त्रिणा कश्मीरस्य पारंपरिक वागुकटस्य चर्चा अपि कृता। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् देशः सम्प्रति लोकल फॉर वोकल स्थानीय वस्तूनां प्रोत्साहनम् इति मन्त्रेण सह अग्रे सरति। गणेशोत्सवावसरे पीओपी निर्मित प्रतिमानां स्थाने स्वदेशी मृत्तिका निर्मितानां गणेश प्रतिमानामेव अर्चनं विधातुं तेन पुनरपि आह्वानं कृतम्। अवधेयं च यत् श्वः जुलाई मासस्य 27 दिनाङ्के भारत रत्न विभूषितस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामस्य पुण्यतिथिः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभिहितं यत् डॉक्टर कलामस्य व्यक्तित्वे बहवः प्रेरणादायिनः पक्षाः समाहिताः आसन्, तथापि शिक्षकस्य भूमिका तस्य हृदयस्य निभृतसमीपे आसीत्। सम्बोधनस्य समापने अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के आचरणीयस्य स्वातन्त्र्यदिवसस्य चर्चां कुर्वन् तेन सर्वेभ्यः स्वकीयाः नूतनाः विचाराः परामर्शाश्च MyGov मञ्चे प्रेषयितुं साग्रहं प्रार्थितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनवत्युत्तरनवदशतमे वर्षे संवृते कारगिलसमरे मातृभूमेः संरक्षणाय वीरगतिं गतानां भारतीयसैनिकानाम् अतुल्यवीरतायाः सम्माननाय अद्य अशेषे हि देशे कारगिलविजयदिवसः परिपाल्यते। अयं दिवसः अस्मिन् सङ्ग्रामे पाकिस्तानस्य उपरि भारतस्य ऐतिहासिकविजयस्य तथा ऑपरेशन विजय इति सैन्याभियानस्य सफलसमाप्तेः 27वं वार्षिकोत्सवं व्यञ्जयति। अभियानावधौ भारतीयसैन्यबलैः जम्मूकश्मीरस्य कारगिलजनपदे पाकिस्तानीयसैनिकैः आतंकवादिभिश्च अनुप्रविष्टान् भूभागान् पुनरपि स्ववशं समानीतम्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः, लोकसभाध्यक्षः ओमबिड़ला च मातृभूमेः रक्षणाय समराङ्गणे प्राणाहुतिं कृतवद्भ्यः हुतात्मवीरसैनिकेभ्यः भावपूर्णं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीयपटले स्वकीयसन्देशे राष्ट्रपतिपदासीना उक्तवती यत् सैनिकानाम् अतुल्यं शौर्यम् अविचलः सङ्कल्पः परमदेशभक्तिश्च भारतीयसशस्त्रसेनानां पारम्परिकगरिमाणं निदर्शयन्ति। विदेशकार्यमन्त्रालयेन अद्य एका सुरक्षापरामर्शविज्ञप्तिः प्रसारिता, यस्यां कृष्णसागरक्षेत्रे सञ्चरत्सु अथवा तद्द्वारा प्रवहत्सु वाणिज्यिकपोतेषु सेवानियोजनम् इच्छन्तः भारतीयनागरिकाः एतादृशदायित्वस्वीकरणात् पूर्वं प्रवृत्तसुरक्षासङ्कटस्य सूक्ष्मेक्षया परीक्षणं कुर्युः इति साग्रहम् उद्बोधिताः। पुरुष क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारत जिम्बाब्वे देशयोर्मध्ये 20-प्रति-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य हरारे नगरे प्रचलति। भारतेन जिम्बाब्वे देशस्य सम्मुखे 93-अधिकैकशत धावनांकानां लक्ष्यम् उपस्थापितम्। अद्यत्वे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य ऋषिकांत सिंह चनम्बम इत्येषः ग्लास्को नगरे पुरुषाणां 60 किलोग्राम मितायां भारोत्तोलन स्पर्धायां रजत पदकम् अवाप्तवान् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। हेमंत भाई, आज 26 जुलाई है और आज के दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारत में ये जो दिन प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत की विजय हुई। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सुनील भाई, 1999 को भारत ने इस युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त की। इस गौरवशाली युद्ध में माँ भारती के 527 वीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदान दिया था और कारगिल विजय दिवस इन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करने का दिन है। ये दिन

0: देश को एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की सीख देता है।
1: बिल्कुल। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने जो कार्यक्रम की शुरुआत मन की बात की शुरुआत कारगिल विजय दिवस से की, और उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन भी किया।
0: बिल्कुल। और आज 26 जुलाई है, आज है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि हर 26 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा साल 2015 में इस विशेष दिन की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मैंग्रोव वनों के अनोखे और जरूरी पर्यावरण के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाना है। मैंग्रोव खारे यानी नमकीन पानी में उगने वाले खास पेड़ पौधे होते हैं जो समुद्र के किनारों पर पाए जाते हैं। ये वन हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंग्रोव तटीय इलाकों के लिए एक मजबूत दीवार की तरह काम करते हैं। ये हमें भयंकर समुद्री तूफानों, सुनामी और मिट्टी के कटाव से बचाते हैं। इन जंगलों में हजारों तरह की मछलियाँ, पक्षी, जंगली जानवर सुरक्षित रहते हैं। सबसे बड़ी बात सुनील भाई ये है कि ये वन सामान्य जंगलों से कई गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोखते हैं।
1: और देखिए, इसकी महत्व की अगर बात करें तो प्राकृतिक सुरक्षा, ये तटीय इलाकों को चक्रवात, सुनामी और कटाव से बचाते हैं, साथ ही
0: बिल्कुल
1: कार्बन सोखना, इनकी मिट्टी भारी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर सुरक्षित रखती है, और साथ ही जैव विविधता की अगर बात करें तो यह जलीय जीवों और मछलियों के पनपने के लिए एक प्राकृतिक स्थान
0: बिल्कुल
1: है।
0: मैंग्रोव वनों को बचाना अब हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। हमें तटीय इलाकों में नए मैंग्रोव पौधे लगाने चाहिए और इनकी कटाई पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। स्थानीय लोगों, संस्थाओं और सरकार को मिलकर इसके बचाव के लिए वैसे जागरूकता फैला रहे हैं, और भी हमें आगे फैलानी है। अगर मैंग्रोव सुरक्षित रहेंगे तो हमारी पृथ्वी का पर्यावरण जो है और हमारा भविष्य दोनों हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे।
1: बिल्कुल। और देखिए, आज हमारा विशेष कार्यक्रम पत्रोत्तर लोक संगीत के साथ भाइयों की
0: बिल्कुल
1: फरमाइश हमें मिली है, और देखिए भाइयों ने भी जो फरमाइश भेजी है, तो कारगिल दिवस के अवसर पर सबसे पहले देशभक्ति रागनी की फरमाइश भेजी
0: जी
1: है, और ये पहली फरमाइश हमें भेजी है चंडीगढ़ से सती सनेजा अभिमला अनेजा, और साथ ही ये भाई इस दिवस की जो हार्दिक शुभकामनाएं देते, तो हमारी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अगले
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है दादगेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और उनके परिवार के बाकी लोगों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिले ऊपरकोट मोहला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और उनके समस्त परिवार की तरफ
0: अगली
1: से।
0: फरमाइश हम तक आइए नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज, तलहत जहानाज, फरद जहानाज और उनके पूरे परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है गुलाम रोड हरगोबिंद नगर पंजाब से, उसको भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हम तक आई है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, सुरेश ग्रोबर, बेबी ग्रोबर, गौरव ग्रोबर, श्रेया ग्रोबर और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: धर्मपाल नागर से ही देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, ज्योति मक्कड़, संदीप मक्कड़ और उनका समस्त परिवार, पिंगा वाला चौक जालंधर से।
0: अगली फरमाइश हम तक आई है, ये आई है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से, अक्रम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अक्रम और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: धर्मपाल नागर को ही सुनना चाहते हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता और इन्होंने फरमाइश भेजी है कनेरा मोहल्ला पटियाला से।
0: अगली फरमाइश हम तक आई नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, उसको भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश रिंगनी छत्तीसगढ़ से आई है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की।
1: ब्रह्मपाल नागर से ही देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता वोट, निखिल कांगड़ा और उनका समस्त परिवार।
0: बटेडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग भी फरमाइश भेजते हैं।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से, उसको भेजने वाले हैं सिद्धार्थ और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और वहीं दुबिया नवेदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती की रोशनी राय और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: अगली फरमाइश हमें मिली है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, उसको भेजने वाले राशिद हुसैन, नसीर असरारी और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हम तक आइए दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की।
0: वहीं डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये की भी फरमाइश आई है।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ब्रह्मपाल नागर से ये देशभक्ति गीत।

0: अपना भारत देश महान, जग में ऊंची उसकी शान।
1: बिल्कुल
0: ब्रह्मपाल नागर से भाइयों ने अपनी पसंद पर देशभक्ति गीत सुना। और देखिए, सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हम बात करें तो अनेक योजनाएं चलाई जाती रही हैं। ऐसी एक परियोजना भारत माला भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, यह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य देश भर में एक्सप्रेसवे, आर्थिक गलियारों और पुलों का जाल बिछाकर दूर दराज के क्षेत्रों तथा निर्बोध कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
1: बिल्कुल संक्षेप में कहा जाए तो भारतमाला परियोजना सिर्फ नई सड़क बनाने की योजना नहीं है, बल्कि ये भारत को तेजी से विकास की ओर ले जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम कदम है। ये देश के हर कोने को आपस में जोड़कर भारत को और अधिक मजबूत बना रहा है।
0: तो चलिए बातचीत और भी करेंगे हेमंत भाई। और देखिए, आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो हैं केशव और बबीता। और केशव और बबीता को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है, हमें मिली है आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से, और उसको भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है जटवाड़ा गाजियाबाद से शीशपाल अकेला की। और अगली जो फरमाइश मिली है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षित खुशी गोस्वामी की।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है, ये लोहडड़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति पोती भुवनेश्वरी देवी और सुधीर नूतन जी की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन की।
1: अगली फरमाइश ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से पहुंची है, उदयपान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन, रोजी और पल की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है जामनिया गाजीपुर से सुरेश, जायसवाल, उर्मिला और उनके समस्त परिवार की।
1: अगली फरमाइश अब गांव चोहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से आई है, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया की।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं केसर बबीता से रागनी किस्सा रहेगा रामायण का। और ये उस मौके की रागनी है जब रानी कैकेयी अपने मांगों को लेकर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजतिलक मनवाने के लिए क्रोधित होकर कोप भवन में जाकर लेट जाती है। और जब राजा दशरथ कैकेयी की इस हालत में देखते हैं तब दोनों के बीच जो तीखा संवाद होता है वो इस रागनी में दर्शाया गया।
1: बिल्कुल
0: तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: तो सुनील भाई, अभी हम सुन रहे थे अभी जो केशव कुमार और बबीता की आवाज़ में ये रागिणी, और किस्सा था रामायण का, जहाँ पर राजा दशरथ और कैकेयी के बीच में संवाद हो रहा था। और अभी जो अगले कलाकार हैं हमारे, वो इंद्रपाल सिंह हैं, और इसको सुनने के लिए हमारे पास जो फरमाइश है काफ़ी सारी आई है, जिसमें रामगढ़ कैंट से पहली फरमाइश आई है महेंद्र मोदी ठाकुर साहब की, और अगली फरमाइश GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, हिना शकीला, जैस्मीन रजिया सुल्तान, अख्तर अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की फरमाइश आई है।
1: इंद्रपाल को ही सुनना चाहते हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, साथ ही फरमाइश मिली है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू की।
0: वहीं अगली फरमाइश भोला कॉलोनी घरोड़ा जिला करनाल हरियाणा से ये फरमाइश आई है विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: भाई देखिए, फरमाइश हमें काफ़ी और भी मिली है जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में 7:05 पर शामिल करेंगे। आप कार्यक्रम सुनते रहिए और अभी सुन लेते हैं इंद्रपाल सिंह से रागनी, किस्सा रहेगा नरसी का बात। ये हरनंदी जब उसकी सास के बीच का संवाद है, जब वो अपनी बहू को कहती है हरनंदी को कि भाई वो अपने घर भात भरने के लिए जाए, तो वो हरनंदी कहती है कि भाई उसका तो कोई भाई नहीं और पिता बहुत गरीब है, तो उसकी सास जो ताने मारती है उस पर ये रागनी आधारित है।

0: भाई ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी इंद्रपाल सिंह से, और किस्सा था नरसी का भात।
1: जी
0: और इंद्रपाल की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम।
1: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नज़दीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
2: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरे देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोबा बडिंगलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाए गए सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और आवश्यक मरम्मत पूरी होने तक उन्हें बंद रखा जाए। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताज़ा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। भारत शुरुआत के दोनों मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम। हेमंत भाई,
1: जी।
0: देखिए मानसून पूरे देश में आ गई है और मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भाई देखिए सब्जी नर्सरी दलहनी फसलों में जल जो निकास का उचित प्रबंध अवश्य रखें, साथ ही भाई खड़ी फसलों में सब्जियों में किस प्रकार का छिड़काव ना करें, क्योंकि खरीफ की सभी फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण करें। और साथ ही भाई देखिए यदि धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपवाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर से और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है।
1: बिल्कुल
0: और धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लौह तत्व की कमी हो सकती है, और पत्तियों पर यदि पीली और नीचे की हरी हो तो यह लौह तत्व की कमी दर्शाता है, तो इसको पूरा करें भाई। और साथ ही इस समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है, अतः किसान भाई चारे की बुआई कर सकते हैं। साथ ही ऐसे में मिर्च व बैंगन की फूल गोभी सितंबर में तैयार होने वाली जो किस्में हैं पौधशाला किसान पौधशाला में कीट अवरोधी जो जाली का प्रयोग करके इसका
1: बिल्कुल।
0: शुरुआत
1: और ये
0: करें।
1: समय कद्दू वर्गीय जो सब्जियों की, जो वर्षाकालीन फसल की उसकी बुवाई का सही समय है। लौकी की उन्नत किस्में जैसे पूसा नवीन, पूसा समुद्रित, केरला की पूसा और विशेष पूसा, दो मौसमी सोनीफल की पूसा, विश्वास पूसा, विकास तुरई की पूसा, चिकनी धारीदार तुरई की पूसा, नसदार जो है उन्नत किस्में हैं इनका जो बुवाई कर सकते हैं। और
0: और बागवानी की हेमंत भाई बात करें तो देखिए फलों के नए बाग लगाना चाहते हैं और गड्ढे खोद लिए तो भाई उसमें गोबर की खाद अवश्य डाल दें जिससे कि भाई समय पर वो काम कर सकें।
1: देसी खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि भूमि में जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। मृदा जांचें उपरांत उर्वरकों संतुलित मात्रा का उपयोग करें, खासतौर पर पोटाश की मात्रा बढ़ाएं ताकि पानी की कमी के दौरान फसल की सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ सके।
0: और
1: वर्षा
0: साथ
1: आधारित ऐस एवं बैरानी क्षेत्रों में भूमि की नमी संचयन के लिए पलवार का प्रयोग करना लाभदायक होगा।
0: और भाई साथ ही देखिए समय समय पर अपने खेत में अवश्य जाते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई खेत में कोई रोग कीटाणु तो नहीं लगे या आपका कोई भी इस तरह की दिक्कत खेत में ना हो, तो समय समय पर आप खेत में जाते रहें ताकि पूरा उत्पादन मिले।
1: सबसे बड़ी बात सुनील भाई ये है कि जब बारिश के समय पर क्या रहता है कि खरपतवार कुछ दवाएं वगैरह किसान भाई लगाते, तो मौसम देखकर ही दवाएं और कोई भी खाद वगैरह जो मौसम देखकर ही लगाएं ताकि आपके व्यर्थ ना जाए।
0: बिल्कुल, तो चलिए बातचीत और भी करेंगे। और भाई फरमाइश का दौर अभी जारी है, तो जो आज के हमारे अगले कलाकार हैं भूलन त्यागी हैं, भूलन त्यागिन को सुनने के लिए विजेंद्र कुमार जायजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और रुवाणी जायजानी, इनकी फरमाइश हमें मिली है भोला कॉलोनी गरुंडा जिला करनाल
1: वहीं
0: से।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है, ये राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, और ये कारगिल विजय दिवस पर भी जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ में अगली फरमाइश हमारे पास आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, और सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और उनके परिवार के
0: साथ ही
1: सदस्यों
0: हमें
1: के।
0: फरमाइश मिली योगी मोहल्ला बराड़ जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरसब सिंह राहुल और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से शरण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल और उनका समस्त परिवार।
1: गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: ये अगली फरमाइश हमें मिली है जलालपुर जिला सहारनपुर से स्वर्ण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: वहीं अगली फरमाइश मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की आई है, जो सुनना चाहते हैं भूलन त्यागी को।
0: और बहरवाला खुर्द सिरसा से भी फरमाइश आई है बलवंत जाखड़, ममता जाखड़ और उनके समस्त परिवार की तरफ
1: इसी
0: से।
1: क्रम में अगली फरमाइश सुनील भाई आई है हनुमानगढ़ टाउन, सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: अगली फरमाइश हमें मिली है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली फरमाइश हमारे पास है ये ढाणा नरसा भिवानी से जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया, सतीश चंडालिया, ऋतिक चंडालिया और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश सुनील भाई आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है गांव कुमारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: गांव खोखरा खोखरा लाली से आई है विनोद बारासा, रोशनी बारासा की फरमाइश।
0: गांव कलाना तहसील भदरा से यह फरमाइश आई है विक्रम सचिन सतीश और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली छत्तीसगढ़ हंसदा नंबर 2 से कमलेश शाहू, जितेंद्र शाहू, पायल शाहू की।
1: वहीं जिला नांदेड़ इटाला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और उनके परिवार के सदस्यों की फरमाइश आई है।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से रमेश कुमार कंपोज, पिंकी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली फरमाइश आई है महिपाल शारोण, नीरू, उत्कर्ष और दिव्यांश, गांव वर्दू चैना, जिला भिवानी, हरियाणा से।
0: बुलंद त्यागी कोई सुनना चाहते हैं सादुल से राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़।
1: गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगीराम सतौड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार और उनके परिवार के
0: और
1: सदस्यों
0: ये
1: की।
0: अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा और समस्त परिवार की तरफ
1: अगली
0: से।
1: फरमाइश हम तक आई है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनके परिवार के
0: बुलंद
1: सदस्यों
0: त्यागी
1: की।
0: कोई सुनना चाहते हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर से बुलंदखेड़ उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश भूलन त्यागी के लिए आइए हमारे पास गांव हाडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत और समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश पटेल नगर मलूट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये अगली फरमाइश हमें मिली अनारकली वजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुचा सिंह पाठक की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं भूलन त्यागी से ये उपदेश।

0: अभी सुनील भाई, हम भूलल त्यागी को सुन रहे थे साथियों की फरमाइश पर, और जैसा कि ये पत्रोत्तर पर आधारित कार्यक्रम है तो एक पत्र हमारे पास आया है सुनील भाई। ये
1: तो ये
0: पत्र आया,
1: किस भाई का है और क्या लिखते हैं?
0: ये भाई हैं गार्विक चौधरी और गुरप्रीत, और ये कह रहे हैं कि हम सर्दी के समय में गेंदे का फूल का उत्पादन करना चाहते हैं, तो इसकी बिजाई का सही समय क्या है और इसके लिए कौन सी भूमि अच्छी है, इसकी उन्नत किस्में हैं वो भी जानना चाह रहे हैं। साथ में ये जानना चाह रहे हैं कि पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखें जिससे उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो।
1: गरीब भाई, देखिए, सर्दी के मौसम में आप फूल उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए वही देखिए, सितंबर का जो दूसरा सप्ताह है बीज की बुजाई के लिए सबसे उचित व सही समय माना जाता है। भूमि के चयन की जहाँ तक बात आपने की है तो देखिए, गेंदे की खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही भाई देखिए, एक बात का और ध्यान रखना गुरप्रीत और गार्विक भाई के, भाई खेत में जल जो निकासी का उचित प्रबंध होना जरूरी है, तो आप
0: बिल्कुल
1: ऐसे खेत का चयन करें जिसमें जल निकासी का उचित प्रबंध हो। उन्नत प्रजातियों की जहाँ तक बात है, देखिए अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा दो प्रचलित किस्में हैं। अफ्रीकन गेंदे की अगर बात करें तो भाई देखिए, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा बहार, जीनिया गोलू और मैन इन द मून प्रमुख है। और फ्रेंच गेंदे की अगर बात करें तो पूसा अर्पिता, फ्लैम, फास्ट लेडी, गोल्ड लेडी, ऑरेंज लेडी आदि प्रमुख किस्में। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी उन्नत किस्म ले सकते हैं, लेकिन बीज जहाँ से भी लें उपचारित लें, और बीज उपचारित ना हो तो उपचारित अवश्य कर लें। और पौधारोपण की बात करें तो नर्सरी में गेंदे की जो बीज की बुजाई के बाद पौधे 1 माह में रोपण के लिए तैयार हो जाता है। अफ्रीकन गेंदा 40 से 40 सेंटीमीटर तथा 50 से, अगर फ्रेंच गेंदे की बात करें तो 30 से 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें, और गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर उचित मानी जाती है। खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई आदि का ध्यान रखकर समय पर पौध रोपाई करेंगे और भरपूर उत्पादन आप ले पाएंगे। रोपाई के 60 से 70 दिन के बाद फूल आना शुरू हो जाता है और 90 से 100 दिन तक तकरीबन किस्म के हिसाब से फूल चलता है।
0: बहुत बढ़िया सुनील भाई, और उम्मीद है कि गार्विक भाई और गुरप्रीत को ये जो जानकारी है वो बहुत पसंद आई होगी। और तो अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं, और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो विनोद कुमार हैं, और उनको सुनने के लिए जो हमारे पास फरमाइश सुनील भाई आई हैं वो अनारकुली बाज़ार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गभैया मल्होत्रा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई नलवेश्वर नगर महाराष्ट्र से PS नावंकर, निर्मला और उनके समस्त परिवार की तरफ
0: इसी
1: से।
0: क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लाभ्या, आरब, मेघा, साक्षी और आशीष और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश साले भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से फरमाइश आई है जीतू ध्रुव केवल किरण और दिव्यांशी की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है असम से और इसको भेजने वाले हैं हितेंद्र दास।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की। और इसी क्रम में अगली फरमाइश है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, उसको भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश और उनका समस्त
0: इसी
1: परिवार।
0: क्रम में अगली फरमाइश सुनील भाई आई है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा के।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा की।
1: विनोद कुमार से उपदेश सुनना चाहते हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव खारिया ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, आरजू, नाव्या, बिजारनिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं विनोद कुमार से ये उपदेश।

0: ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना विनोद कुमार से। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का। 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में चर्चा करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मृति दिवस के बारे में, साथ ही जानकारी देंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में।
1: वहीं 7:05 पर कार्यक्रम का कृषि जगत कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा AI आधारित स्मार्ट खेती और बातचीत होगी मैदानी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावना।
0: और भाई देखिए, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य भेजें, जो कि हमारे कार्यक्रम को और भी अच्छा बना सकें।
1: बिल्कुल
0: और कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल आपका है तो भाई आप अवश्य भेजें। इसके लिए हमारा पता है, कृषि एवं गृह एकांश, द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, दिल्ली 110001।
1: वहीं हमारी जो मेल आईडी है आप मेल भी कर सकते हैं feedback@gmail.com, feedback@gmail.com।
0: तो देखिए भाई, आप अपने सुझाव प्रतिक्रिया एवं जो भी आपके सवाल हों वो हमें अवश्य भेजें। हमें आपके सवालों का और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं गजल।

जी हाँ, मोहब्बत की बात हो, यादों का कारवां हो, तो दिल हमेशा उन्हीं को ढूंढता है जो दिल में बसे होते हैं। और कुछ यादें ऐसी होती हैं कि याद कितनी ही हो, कितनी ही तड़प वाली हो, लेकिन उनकी मोहब्बत में इतनी गहराई होती है कि जब भी याद आती है, मोहब्बत उतनी ही गहरी होती जाती है। और फासले कितने भी लंबे क्यों ना हो, दूरियां कितनी ही कितनी भी दूरियां ज़िंदगी में हो, लेकिन यही जो फासले हैं उन यादों को कम करते हैं। और कुछ ऐसी ही मोहब्बत की बातें बयां कर रहे हैं हरिहरन साहब।

0: गज़ल का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: एक फोटोग्राफर ओह लवली वेल डन बिजनेस लोन अप्रूव्ड अब होगा बड़ा स्टूडियो नया कैमरा नई लाइट्स लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से नो लोन लिए गए काम में ही लगाओ समय से ईएमआई चुकाओ क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो आप कौन
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करगिल विजय दिवस के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। दिल्ली नगर निगम को शहरी नागरिक सेवाओं और जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई मंत्रियों ने दिल्ली की अनहत सिंह को विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर बधाई दी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगी। इसके सिफारिशों के आधार पर भविष्य की परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा व्यवस्था भरोसेमंद पारदर्शी और तकनीक आधारित होनी चाहिए।

0: ये प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए सरकार कल संसद में कड़े प्रावधानों वाला नया विधेयक भी पेश करेगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता रहेगा।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम वन के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
1: कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। PV सिंधु।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी को आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रकृति के प्रति अपने दायित्व निभाने का आह्वान किया। साथ ही मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा दी। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सुना। मीडिया से बात करते हुए श्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया।
2: आज मन की बात का 136वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं। देश की सरकार ने क्या किया इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। उनका मानना है कि देश जो प्रोग्रेस कर रहा है वो देश के 140 करोड़ जन की सहभागिता से देश का विकास, देश की तरक्की हो रही है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया है। साथ ही आयोग के सदस्य के रूप में कुलदीप सिंह मोहम्मद हारून को नियुक्त किया है। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर लता गुप्ता और श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला को सदस्य नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद दिल्ली महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष लता गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य आयोग में लंबित शिकायतों का तेजी से निपटारा करने और तय समय सीमा के भीतर मुद्दों को सुलझाना है।
3: आयोग के पास कई प्रकार की शिकायतें भी पहुंचती ही थी, तो उन लंबित शिकायतों को जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण हो और समयबद्ध तरीके से उन समस्याओं को खत्म कर पाएं। हमारी दिल्ली की हर एक बहन को आयोग पर एक विश्वास बने, ऐसे कार्य करते हुए हम काम करेंगे।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य निष्पक्षता, संवेदनशीलता तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि करगिल के वीर जवानों का शौर्य, समर्पण और राष्ट्रभक्ति हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता के साथ देश के जाबाज सैनिकों ने दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन समाप्त होने के बाद से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने विशेष स्वच्छता मरम्मत और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने पूरी रात मौके पर मौजूद रहकर सफाई और पुनर्स्थापन कार्यों की निगरानी की। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने कहा कि इस अभियान में सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों, हरित पट्टियों, दीवारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई, धुलाई, मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य किया गया।
4: जंतर मंतर आपको पहले से ज्यादा साफ दिख रहा होगा। जैसे ही कल प्रदर्शन समाप्त हुआ तो रात से ही हमारी पूरी एनडीएमसी की टीम, जिसमें मैं स्वयं, हमने पूरा जंतर मंतर का कूड़ा, जितना गार्बेज था, बाकी सब थी, धुलाई थी, इसकी वॉल पेंटिंग थी, इसके कहीं पर होर्डिंग्स और बैनर्स थे, उन सबको बड़ी क्लीन से हमने साफ किया।
0: दिल्ली नगर निगम एमसीडी को भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट और स्कीम एक्सपो 2026 में शहरी नागरिक सेवाओं तथा जनकल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान नागरिक केंद्रित सेवाओं, जल कल्याणकारी पहलों तथा शहरी प्रशासन में नवाचार के क्षेत्र में एमसीडी के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया। दिल्ली नगर निगम ने अपने समर्पित स्टॉल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पहलों और जनसेवा संबंधी नवाचारों का प्रदर्शन किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट 12 से 15 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन करेगी। साथ ही हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर के बाजारों में बड़े स्तर पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन करेगी।
5: इसकी घोषणा आज नई दिल्ली में आयोजित कैट की राष्ट्रीय व्यापारी बैठक में ली गई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 200 से अधिक वरिष्ठ व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 भी देश की आजादी के भव्य उत्सव की भावना को समर्पित होगा। साथ ही भारत मंडपम परिसर को तिरंगे की सजावट से अलंकृत किया जाएगा, जिससे देशभक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संदेश देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा आगंतुकों तक पहुंचे। इस अवसर पर चांदनी चौक से सांसद और कैट के राष्ट्र

0: राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हर घर तिरंगा हर दुकान तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति प्रत्येक व्यापारी की श्रद्धा सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने देश के सभी व्यापारिक संगठनों बाजार संघों और व्यापारियों से इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान भी किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा मार्क वाली 1600 क्वार्टर बोतलें बरामद कर एक चार पहिया वाहन जब्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर दिल्ली के अनहत सिंह को बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी अनहत सिंह को बधाई दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी ये जीत देश की हर बेटी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का विश्वास देगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करगिल विजय देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। दिल्ली नगर निगम को शहरी नागरिक सेवाओं और जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पापा लाइए 3000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
2: अरे पापा बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं श्री नीरज त्यागी।
5: आज हम सभी यहाँ कवि गोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर देवीदत्त सजल, जो वरिष्ठ कवि हैं और शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन मोहन सलोनी, ये भी एक वरिष्ठ कवियत्री हैं और संयुक्त महाप्रबंधक हैं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण में। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर देवीदत्त सजल जी, जो कि वरिष्ठ कवि हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ अपनी कुछ प्रस्तुति दें।
6: नमस्कार। 23 जुलाई प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया। आकाशवाणी 500 से अधिक केंद्रों से प्रसारण करती है, लगभग 173 बोलियों में उसकी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचाई जाती है। आकाशवाणी के लिए मैंने कुछ गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं।

आंगन आशा का दीप जलाया, सोए हुए आंगन आंगन आशा का दीप जलाया। पर्वत हो या घाटी, पर्वत हो या घाटी, हर द्वार तेरा।

तक संदेश पहुंचाए, माँ की ममता की बोली तू ही उन्हें सुनाए। माँ की ममता की बोली तू ही उन्हें

युग युग गीत सुनाना, तू युग युग गीत सुनाना, कहे सजल सुनो रे ईश्वर की अमर निशानी, कहे सजल सुनो रे ईश्वर की अमर निशानी, हर बोली हर भाषा में।

0: आकाशवाणी की प्रथम उद्घोषिका उस समय तथी को समर्पित ये पंक्तियाँ मैंने प्रस्तुत की हैं। और दूसरी कविता प्रकृति और प्रेमिका के संदर्भ में प्रस्तुत है कविता विश्व प्रकृति, गजल के रूप में रखी गई है। उसके तन की खुशबू अलग है जहान से, उसके तन की खुशबू अलग है जहान से, तुलना क्या करेंगे सजल उनकी जाफरान से, तुलना क्या करेंगे सजल उनकी जाफरान से, बिजलियां शर्मा जाएं वो जो मुस्कुरा दे, बिजलियां शर्मा जाएं वो जो मुस्कुरा दे, गायब हो जाएं वो आसमान से, गायब हो जाए वो आसमान से, उनके तन की खुशबू अलग है जहान से, तुलना क्या करेंगे सजल उनकी जाफरान से। उसकी आंखों में वो तेज वो दिव्यता, उसकी आंखों में वो तेज वो दिव्यता, दीवाना बना दे अगर आंख मिला ले वो भगवान से, दीवाना बना दे अगर आंख मिला ले वो भगवान से, उसकी तन की खुशबू अलग है जहान से, तुलना क्या करेंगे सजल उसकी जाफरान से। देखे और दीवाना कर दे, दीवाना बनाने वाली बात कही थी अभी, देखे और दीवाना कर दे शायद उसको जादू आए, शाखों को वो छू दे तो कांटों से भी खुशबू आए, वो अंधेरा उसके केशों की काली घटाओं में, वो अंधेरा अंधेरा स्वयं राह भूल जाए अपने मकान से, उसके तन की खुशबू अलग है जहान से, तुलना क्या करेंगे सजल उसकी जाफरान से। सजल की गजल होती मोहित मखमली मधुर, नाम मेरा देवीदत्त सजल है, लिखता हूँ गीत कविता और गजल इसलिए अपना नाम रख लिया देवीदत्त सजल। तो अंतिम बंद देखे, सजल की गजल होती मोहित मखमली मधुर, जब भी वो वचन निकालती है कमान से, उसकी वाणी सुन करके ऐसी कोई गजल आ जाती है, तो उसके तन की खुशबू अलग है जहान से, तुलना क्या करेंगे सजल उसकी जाफरान से।
1: बहुत खूबसूरत प्रस्तुति सजल जी ने यहाँ पर दी, और इसके अलावा चार लाइन और मैं उनसे कहूंगा कि यहाँ सुना दें।
0: ये एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है, भारत बदल रहा है,

शहीदों का ये पावन सपना पूरा होता जाए, शहीदों का ये पावन सपना पूरा होता जाए। मेरा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ता जाए। जिन वीरों ने प्राण गंवाए आजादी के काज, जिन वीरों ने प्राण गंवाए आजादी के काज, उनकी अमर शहादत का ही फल है भारत आज, उनकी अमर शहादत का ही फल है भारत आज। इस आंगन में आज जुटे हम, इस आंगन में आज जुटे हम, उनको शीश झुकाएं। मेरा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ता जाए। मेरा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ता जाए। दूसरा पंक्ति देखिए, जाति धर्म की बात न करना, सब है एक समान। जाति धर्म की बात

0: समान, सबके भीतर एक बसा है प्यारा हिंदुस्तान, सबके भीतर एक बसा है प्यारा हिंदुस्तान, प्रेम की बोली बोले मिलकर, प्रेम की बोली बोले मिलकर नफरत दूर भगाए, मेरा भारत बदल रहा है आगे बढ़ता जाए, मेरा भारत बदल रहा है आगे बढ़ता जाए, आओ संकल्प करें हम बने वतन की शान, आओ संकल्प करें हम बने वतन की शान, शिक्षा सेवा श्रम से करे माटी का सम्मान।
1: क्या बात है, बहुत बहुत खूब।
0: शिक्षा सेवा श्रम से करे माटी का सम्मान,
1: वाह वाह वाह।
0: सजल कहे तिरंगा ऊंचा सदा लहराए,
2: बहुत सुंदर।
0: मेरा भारत बढ़ता जाए, मेरा भारत बदल रहा है आगे बढ़ता जाए।
2: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत खूबसूरत पंक्तियों के साथ प्रस्तुति रही डॉक्टर देवीदत्त सजल। अब हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर सुमन मोहिनी सलोनी, जो कि संयुक्त महाप्रबंधक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यरत हैं। हमारा सौभाग्य है वो यहाँ पर हैं और वो अपनी प्रस्तुति देंगी। आदरणीय डॉक्टर सुमन मोहिनी सलोनी
3: जी, हार्दिक आभार सर। तो मैं सीधा सीधा अपनी रचना पे आती हूँ
1: जी,
3: और मेरी रचना का शीर्षक है स्त्री। इस रचना में मैंने स्त्री के विभिन्न रूपों को संजोया है, तो आप भी देखिएगा कि कहाँ तक मैं सफल हो पाई हूँ। सुनिएगा।
1: बहुत खूब।
3: हे स्त्री, तुम स्वयं में संपूर्ण हो, तुम ही सृष्टि की रचयिता, शक्ति और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, तुम अपने घर परिवार और समाज की धुरी हो, तुमको किसी के सहारे की कोई आवश्यकता ही नहीं, तुम अपना सहारा स्वयं हो, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, अपनी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं रखो, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी दूरदर्शी सोच और तुम्हारी सहनशीलता ही तुमको गर्वित महसूस कराते हैं। तुमने इस संसार को सदैव दिया ही है, यह संसार कभी भी तुम्हारा यह ऋण चुका नहीं पाएगा। तुमने 9 माह गर्भ में रखकर एक मनुष्य को जन्म दिया है, तुमने मायका छोड़ पति के घर को अपनाया है, दोनों घरों की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाया है और उस जिम्मेदारी को अपने पूर्ण सामर्थ्य से निभाया है।
1: बहुत अच्छा।
3: घर की ही नहीं, घर से बाहर भी हर क्षेत्र में अपना जौहर दिखाया है। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ दफ्तर, व्यवसाय और यहाँ तक चांद पर भी पहुँच कर दिखलाया है।
0: वाह, बहुत सुंदर।
3: ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर तुमने अपना परचम नहीं लहराया है, अपने कोमल हाथों को तुमने मेहनत से कठोर बनाया है, अपने कदमों की गति को सामान्य से तेज दौड़ाया है, हार मानना तुमने कभी सीखा ही नहीं, कठिन हालातों का सामना अपनी सूझबूझ से बखूबी किया है, तुम प्रेम, त्याग और ममता की जीती जागती मूरत हो, तुम ही वो सती हो जिसने यमराज से अपने पति का जीवन वापस लौटाया है, तुम ही वो प्रेसी हो जिसके अथाह प्रेम के कारण तुम्हारा नाम श्री कृष्ण के साथ सदैव के लिए जुड़ गया।
1: बहुत सुंदर
3: जी, धन्यवाद सर। तुम मैं ही वो साहसी मीरा दीवानी है जिसने श्री कृष्ण को अपना पति माना और बिना किसी स्वार्थ और बिना उम्मीद के उनसे नाता जोड़ा है, तुमने अपनी हिम्मत और जोश का लोहा भी समय समय पर मनवाया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना ने दुश्मन को धूल चटाया है, साथ ही साथ सावित्रीबाई फूले, सरोजनी नायडू एवं महिला खिलाड़ियों ने देश और दुनिया का गौरव बढ़ाया है। हे स्त्री, यह सब करना केवल और केवल तुम्हारे ही बस की बात है, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें किसी के सहारे और रहमो करम की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हारे सामने यह संसार नतमस्तक है और सदैव रहेगा, तुमको यह कहते हुए गर्व महसूस करना है कि तुम अपने आप में संपूर्ण हो, संपूर्ण हो, संपूर्ण हो।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: हे नारी, तुम महान हो, स्वयं में एक सम्मान हो। तो ये मेरी एक रचना थी।
1: बहुत अच्छी रचना,
0: बहुत अच्छी, सुंदर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अगर संचालक महोदय की आज्ञा हो तो मैं गजल पढ़ना चाहती हूँ।
1: जी सुनाइए
3: जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है
3: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। याद तेरी दिल को तड़पाती, बता अब क्या करूँ। आंख झरनों सी फकत बहती, बता अब क्या करूँ। तुम कभी समझे नहीं दीवानगी को ही मेरी, तुम कभी समझे नहीं दीवानगी को ही मेरी। हो रही ये हीर जज्बाती, बता अब क्या करूँ।
0: वाह
1: वाह वाह, बहुत खूब,
3: धन्यवाद। तोड़कर बंधन ही सारे, तुम तो रुखसत हो गए। तोड़कर बंधन ही सारे, तुम तो रुखसत हो गए। लिख में हारी प्रेम की पाती, बता अब क्या करूँ।
0: वाह
1: वाह वाह वाह,
3: जी धन्यवाद। गुमशुदासी जिंदगी में प्रेम को तड़पी बहुत, गुमशुदासी जिंदगी में
0: प्रेम
3: को तड़पी बहुत। तेल के बिन ना जले बाती, बता अब क्या करूँ।
0: वाह वाह, बहुत खूब
3: जी धन्यवाद। ये अंधेरा देख तो आलोक को तड़पे बहुत, ये अंधेरा देख तो आलोक को तड़पे बहुत। एक किरण सूरज की ना आती, बता अब क्या करूँ।
1: बहुत
0: खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
3: धन्यवाद। वो पराया हो गया, किससे कहें दिल की लगी। वो पराया हो गया, किससे कहें दिल की लगी। और शे मुझको नहीं भाती, बता अब क्या करूँ।
1: वाह वाह, बहुत
3: सुंदर जी। अगला शेर है, धन्यवाद।
0: स्वागत।
3: ये मेरा उन्माद अब बस जान लेकर जाएगा, ये मेरा उन्माद अब बस जान लेकर जाएगा। सोच कर ये रूह घबराती, बता अब क्या करूँ।
0: वाह बहुत सुंदर
3: जी, धन्यवाद। देख जा बस हाल तू अपने दीवाने का जरा, देख जा बस हाल तू अपने दीवाने का जरा। राख सी ये मौत सुलगाती, बता अब क्या करूँ।
1: वाह वाह, बहुत खूबसूरत,
0: सुंदर
3: जी। जान तो जाओगे एक दिन, दिल की तुम मजबूरियाँ, जान तो जाओगे एक दिन, दिल की तुम मजबूरियाँ। चाह कुर्बत की नहीं जाती, बता अब क्या करूँ।
0: वाह
1: बहुत खूब, बहुत खूब
3: जी,
0: सुंदर
3: जी। अगला शेर सुनिएगा। हम रहेंगे जब नहीं तब याद आएंगे बहुत, हम रहेंगे जब नहीं तब याद आएंगे बहुत। सोच ना तुम खुद को फिर घाती, बता अब क्या करूँ। दौर फिर इस आशिकी का लौट कर आएगा ना, दौर फिर इस आशिकी का लौट कर आएगा ना। बस यही हर बार समझाती, बता अब क्या करूँ।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया,
1: बहुत अच्छा
3: जी। और गजल का आखिरी शेर है,
0: स्वागत
3: का शेर सुनिएगा।
1: स्वागत
3: जी। ना बताया तुमने के कसूर भला क्या था मेरा, ना बताया तुमने कि कसूर भला था क्या मेरा। है सुमन रह रह के करहाती, बता अब क्या करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए जी। तो अब हमारे बीच में है आदरणीय नीरज त्यागी जी, जो एक वरिष्ठ कवि हैं और उम्दा संचालन कर रहे हैं आप, तो उनको मैं कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। आप ही के बारे में है सर, सुनिएगा। कि मेरी यह फितरत नहीं कि किसी को कम आंकूं, मेरी यह फितरत नहीं कि किसी को कम आंकूं।
0: वाह।
3: मैं समझता हूँ कि मैं ही एक अदना सा इंसान हूँ, यह आपका बड़प्पन है
1: जी,
3: फिर भी यह यकीन रखता हूँ कि अपने व्यवहार से, फिर भी यह यकीन रखता हूँ कि अपने व्यवहार से लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ।
0: बहुत खूब,
1: जी जी।
3: तो ये आपकी खासियत है और ये पंक्तियाँ थी।
0: दो पंक्तियाँ मैं दिन के लिए बोल रहा हूँ
3: जी। स्वागत।
0: कि ये हकीकत है, ख्वाब नहीं
3: जी,
0: नीरज जी का कोई जवाब नहीं।
3: क्या बात,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर प्रोत्साहित किया और मुझे मौका दिया कि मैं भी कुछ पंक्तियाँ यहाँ सुनाऊँ। इतनी श्रेष्ठ कवि और कवियत्री हैं, गजलकारक हैं, तो मैं भी कुछ यहाँ पर अपनी प्रस्तुति चंद लाइनों में दूंगा
3: जी। स्वागत है।
1: कुछ लिखा है वही मैं अब सुनाना चाह रहा हूँ। चेहरे पे दिखेगा वो कैसे छिपेगा, चेहरे पे दिखेगा वो कैसे छिपेगा। इश्क ही तो नीरज हर वक्त दिखेगा,
3: क्या बात है,
0: बहुत खूब।
1: घरों को सजाते बनाते हैं देखो लोग, घरों को सजाते बनाते हैं देखो लोग, तय ये भी नहीं करते कि वो कैसे बचेगा,
3: बहुत
1: तय ये भी नहीं करते कि वो कैसे बचेगा। मेरे मंजर से परेशान खंजर है मेरी ओर, मेरे मंजर से परेशान खंजर है मेरी ओर, जब फितरत ही नहीं तो ये सिर कैसे झुकेगा, तो ये सिर कैसे झुकेगा। मिलते हैं वो हंसते हैं, मिलते हैं वो हंसते हैं, यूं आंखें बदल बदल, इस हंसी में क्या तुम्हें कोई आंसू भी दिखेगा,
3: क्या बात है,
1: कोई आंसू भी दिखेगा। वो जाफरान की खुशबू, वो जाफरान की खुशबू, वो रंग अब कहाँ, थी वो जमीन मेरी ढूंढू मैं अब कहाँ, उसने तो यूं ही महफिल में नजर डाली थी वो नीरज, नाम पता पूछा नहीं अब ढूंढे उसे कहाँ, अब ढूंढे उसे कहाँ। दिल में है आंखों में लाना जरूरी है, ना समझ है इश्क समझना जरूरी है, ना समझ है इश्क समझना जरूरी है, आंखों की बेबाकी रिश्ते टिका नहीं पाती, आंखों की बेबाकी रिश्ते टिका नहीं पाती। मोहब्बत भी जरूरी है, शर्माना भी जरूरी
3: क्या
1: है,
3: बात है?
1: शर्माना भी जरूरी है, महसूस करने के सलीके अलग अलग, महसूस करने के सलीके अलग अलग, पूछे वो क्यों खुदा भी नजर आना जरूरी है, नजर आना जरूरी है। मोहब्बत है ये तो एक दूजे में फना, सोच रहे फिर क्यों क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी है।
3: अति सुंदर, बहुत सुंदर।
1: अब कुछ पंक्तियां मैंने आंखों पे लिखी हैं, वो मैं सुनाने जा रहा हूँ।
0: स्वागत है
1: जी, शुक्रिया। आंखें वो उसकी आंखें, वो डब डबाई आंखें, आंखें वो उसकी आंखें, वो डब डबाई आंखें, अब वो उदास आंखें संसार गहरा झांकें,
3: क्या बात है।
1: शाम ढले नगरों में मुदी मुदी सी आंखें, संसार छुप सजाता जब फैलाता वो पांखें, वो संसार छूना चाहती बिन बोल ही कह जाती, उसे रूह में बसा कर आंखों में ले लूं डुबकी, आंखों की वो है झीलें उन झीलों में वो डुबकी, कुछ बोल नहीं पाती फिर भी रहे न दुबकी, डूबेंगे आंसुओं में आंखों से मिलती आंखें, आंखों में दिखता साहिल समंदर सा ढूंढती है, आंखें हैं बंद फिर भी खुलती वो अधमुदी सी, जागी नहीं अभी भी वो बंद ही है बंद सी, ये जग है सारा माया फिर भी तू देखे तर से, आंखों में टंगी खिड़की याद आए यूं ही बरसे।
2: क्या

0: याद आए यूं कभी धुंधला सा वो दिखता, वो पर्दा जीना जीना, बस आंखों को ही पीना,
1: बहुत
0: बस
1: बहुत
0: आंखों को ही पीना। कहती है कुछ तो आंखें, चुप हो तो भी ये बोलें, जुगनू सी दिखती आंखें, करती फना ये आंखें।
1: बहुत सुंदर।
0: कितना तो यूं ही बोला, समझा सकी ना आंखें, संजीदगी सी ओढ़े, कुछ तंज सा ये करती।
1: वाह।
0: आंखों में क्या न देखा, कभी ये भी ना बताया, क्या क्या किया अनदेखा,
1: क्या
0: क्या
1: बात।
0: क्या किया अनदेखा। उजालों का ये शहर है, क्यों सोई सी हैं आंखें, कभी प्रेम या विरह में पीड़ा भरी ये
1: बहुत
0: आंखें।
1: सुंदर।
0: आंखों से गुजरे रस्ते, दिल में पनाह आंखें, कुछ भी छुपा लो नीरज, सब कहती हैं ये आंखें,
1: वाह वाह,
0: सब
1: बढ़िया।
0: कहती हैं ये आंखें। बरसात बिना बरसे, बर बस ये बरसे आंखें, अब गीत गुनगुनाऊं ये गीत गाती आंखें, ये
1: वाह वाह, बहुत
0: गीत
1: खूब,
0: गाती
1: बहुत खूब।
0: आंखें। इसके बाद एक आंखों के बाद अब मैं कुछ लाइनें चेहरे के ऊपर।
1: जी, स्वागत।

0: आशा नरगिस सुबह वो चेहरा धूप में तपासा इंद्रधनुष चेहरा इंद्रधनुष में रखा गुलाबी सा वो एक चेहरा
1: बहुत खूब सर।
0: भरोसे की दीवारों पे टंगा हुआ सा चेहरा गजल में लिखा वो याद आए वो ही चेहरा
1: क्या बात है।
0: कुमकुम और मंजरी से पुता हुआ सा चेहरा हौसलों के हाथों गुथा हुआ वो चेहरा किस्मत की हथेली में छुपा हुआ वो चेहरा अब आंसुओं से भीगा क्यों सुर्ख सुर्ख चेहरा
1: बहुत
0: क्यों सुर्ख सुर्ख चेहरा
1: बहुत खूब
0: हर रोज नजर आता भोला सा नया चेहरा वो हुस्न की बला सा नजरें गड़ाए चेहरा अब एक ही नजर पे वो मुस्कुराए चेहरा ये मेरी शायरी है क्यों शर्माए वो चेहरा
1: बहुत खूब
0: पेश किया जो गुल को गुलाबी हुआ वो चेहरा दिल को कब और कैसे चुरा गया वो चेहरा हर चेहरे में छुपा सा जाना तुम्हारा चेहरा बाजार में तो यूं भी चेहरे पे एक चेहरा प्याज की ये मानिंद अब परत परत चेहरा प्याज की ये मानिंद अब परत परत चेहरा पर वो गुलाब चेहरा जाना तुम्हारा चेहरा नजरें हटा न पाऊं वो बेहिजाब चेहरा लो आशियाने में भी पुत गया है चेहरा बहुत हो चुका अब जाना हटा दे पहरा
1: बहुत बात है।
0: अब ख्वाब आसमां के क्यों यूं उदास चेहरा कुछ उर्दू में कहा है क्या यूं ही सुर्ख चेहरा क्या यूं ही सुर्ख चेहरा
1: बहुत खूब सर
0: बहुत बहुत धन्यवाद काव्य गोष्ठी के लिए मैं अब समापन करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर सुमन मोहिनी सलोनी और डॉक्टर देवीदत्त सजल जी वरिष्ठ कवि हैं अपनी रचनाएं यहाँ सुनाई प्रस्तुति दी और यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत आभार उनका मैं नीरज त्यागी इन्हीं शब्दों के साथ अब इस गोष्ठी का समापन करता हूँ नमस्कार
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे प्रतिभागी कवि

थे डॉक्टर देवीदत्त सजल, डॉक्टर सुमन मोहन सलोनी और श्री नीरज त्यागी। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे श्री नीरज त्यागी। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम जहाँ। इस खूबसूरत शाम में आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं बहुत ही प्यारे गीत के साथ। आवाज़ है लता मंगेशकर की और साथ है SP बाला सुब्रमण्यम।

आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म रंगीला से अभी आप सुन रहे थे ये गीत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और आइए सुनते हैं इसी कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, आवाज़ के की, और ये गीत है फिल्म साथिया से।

0: اسی خوبصورت گیت کے ساتھ مجھے یعنی ترنم جہاں کو دیجیے اجازت. یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرست چینل ہے. اب سماچار سنیے.
1: کیا آپ پریشانیوں سے گھرے ہیں, من بھاری ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ یاد رکھیں, سمادھان آپ کے پاس ہے. ٹیلی مانس کے نشوک نمبر 14416 پر کال کریں. کہیں سے بھی کبھی بھی 24 گھنٹے یہ سویدھا اپلبدھ ہے. یہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے اور آپ کو صحیح دشا دی جاتی ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں, مدد بس ایک کال دور ہے.
2: نمسکار, آکاش وانی سے سماچار سندھیا کے ساتھ میں سرفیروزی. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की. तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे. परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला. कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी. राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया. और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की. इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे. इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है. प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा. उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है. हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है. हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो. इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार

0: घर पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलो बॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
0: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
3: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
4: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honour Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bags silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
7: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
6: यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी टुडे अज्यूम चार्ज एट द एजुकेशन मिनिस्टर। Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
2: पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है।
8: आई एम रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन। आई हैव बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री। वी हैड कंटीन्यूअस मीटिंग टुडे। दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। आई हैव टेकन चार्ज टुडे एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स। इट इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, सो आई विल स्पीक टू यू इन डिटेल आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली।
2: बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूंगा।
6: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
7: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
6: Kargil Vijay Diwas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July is a date that does not require a calendar to be remembered. He urged citizens to honor Kargil War martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India.
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
6: The main function of the Kargil Vijay Diwas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India.
0: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का।
9: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी। फ्रेंड्स, आर इंटेंशन इज क्लियर, देर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट POK विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान,
0: जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया।
6: The defense minister also highlighted the success of Operation Sindoor as a proof that India possesses the capability to respond to Pakistan's every misadventure with a severity far beyond its imagination. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the News at 9. At the ongoing Commonwealth Games Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event in Glasgow today. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kilograms in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105 kilograms in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190 kilograms. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal in the 2018 and 2022 editions. Earlier in the day, another Indian weightlifter, Rishikant Singh Chanambam, won the silver medal in the men's 60-kilogram event. Rishikant lifted 121 kilogram in the snatch, setting a new CWG record before Malaysia's Muhammad Ani Kasdan equaled the mark. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi congratulated Rishikant Singh on winning the silver medal. The Vice President said that Chanambam's consistent medal-winning performances for India at the highest level over the years reflects his exceptional dedication, resilience and pursuit of excellence. Prime Minister Modi also wished that the Indian weightlifter continues to scale greater heights and inspire many young athletes. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and the final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. This win for the men in blue marks the first series win under the captaincy of the new T20 skipper Shreyas Iyer. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157/7 in their allotted 20 overs. For India, Mayank Yadav clinched 3, while Yash Thakur took 2 wickets. Earlier, opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. Vaibhav Suryavanshi was the standout performer, smashing 81 runs from just 49 balls, while Ishan Kishan contributed 29 of 26 deliveries. Vaibhav Suryavanshi was adjudged player of the match and player of the series as well. The India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh and Odisha tomorrow. Isolated places of northeastern states are also likely to experience heavy rainfall tomorrow. In Odisha, a deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in the state from tomorrow, with the IMD issuing red alerts for several districts. We have a report.
5: The India Meteorological Department has forecast widespread heavy to extremely heavy rainfall across Odisha from tomorrow under the influence of a deep depression over the Bay of Bengal. Red warnings have been issued for Bhadrak, Jajpur, Kendrapada, Jagatsinghpur, Cuttack and Keonsar districts, with the zone of intense rainfall expected to extend to Mayurbhanj and Sundargarh as the system intensifies. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centers in Mayurbhanj and Jagatsinghpur districts. Authorities have cautioned against flash floods and severe waterlogging, while maritime operations have been suspended. Local cautionary signal number 3 has been hoisted at all ports, and fishermen have been advised not to venture into the sea until further notice. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
6: In Maharashtra, light to moderate rainfall was witnessed across several parts of the state yesterday, while heavy showers in Dhule district triggered flood-like conditions, claiming 2 lives in separate incidents. Meanwhile, the IMD has predicted increased rainfall activity along India's west coast, including heavy to very heavy rain over Konkan and the adjoining Ghat regions. The sacred Adharaparna ritual of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra is being solemnly observed on the respective chariots at Puri in Odisha this evening, drawing thousands of devotees. During this unique post-Rath Yatra ceremony, the Holy Trinity is offered a specially prepared sweet beverage in large earthen pitchers. The AI holobox of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was inaugurated at Pradhan Mantri Sangrahalaya today, offering visitors an immersive experience of his life, leadership and legacy. The inauguration ceremony was attended by family members of the former Prime Minister. As the 1999 Kargil War took place during Atal Bihari Vajpayee's tenure as Prime Minister, the Sangrahalaya is also showcasing a special exhibition on Kargil Vijay Divas. The exhibition features microfilms, archival videos, photographs and personal letters highlighting the courage and sacrifice of the Indian Armed Forces. Foreign portfolio investors have turned net buyers of Indian equities, purchasing shares worth 14,946 crore rupees so far in July. According to the latest depository data, FPIs infused 3,049 crore rupees in the domestic stock market last week. Meanwhile, India's debt market continued to attract strong foreign inflows. So far in July, foreign portfolio investors have invested 9,521 crore rupees in debt securities through the fully accessible route and 27,391 crore rupees through the general route. UNESCO today added the World War II D-Day landing beaches in France, Greece's Mount Olympus, Japan's ancient capitals of Asuka and Fujiwara, and South Sudan's Boma Badingilo migratory landscape to the World Heritage List. The designations were approved during a UNESCO committee meeting in Busan, South Korea, which reviewed global nominations. The newly inscribed sites recognize outstanding cultural and national heritage, including the historic Normandy invasion beaches, Greece's mythical Mount Olympus, Japan's early imperial capitals, and South Sudan's vast wildlife migration landscape. A massive wildfire in southwest France has forced the evacuation of around 55,000 more people overnight, taking the total number of residents displaced in the region to nearly 2,20,000. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-power task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defense Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in women's 48-kilogram event, and Rishikant Singh bags silver in men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And that's all in the news at 9. Good night.
10: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निमटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज, बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में सोने का तमगा जीता है और ऋषि कांत सिंह चंबम ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है और मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इम्तिहानात की इस्लाहात के बारे में टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकेनी की क़यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहान का निज़ाम काबिल एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डे का, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ کل پارلیمنٹ میں حکومت امتحانات سے متعلق سخت قانونی شکوں والا ایک نیا بل پیش کرے گی۔ جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلباء کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔
7: ودیارتھیوں کے بھوشیہ کے لیے بھارت سرکار لگاتار انیک ودھ قدم اٹھا رہی ہے۔ ہم نے فاسٹ ٹریک کورٹ بنا چکے ہیں، ہم کل پارلیمنٹ کے اندر بھی کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے۔ ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو، ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा۔
10: حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں 2026 کا ترمیمی بل پیش کرے گی۔ یہ بل کل کے کام کاج میں لازمی طور پر شامل ہے۔ اس بل میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقے اپنائے جانے کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ پیش کریں گے۔ جمعہ کو مرکزی کابینہ نے تیز رفتار عدالتیں قائم کرنے کے لیے اس بل کے مسودے کو منظوری دی تھی تاکہ پیپر لیک اور امتحان میں غلط طور طریقوں کے معاملات میں سخت تر سزا کو یقینی بنایا جا سکے۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ انہیں کل دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد اس عہدے پر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ صارفین امور، خوراک اور تقسیم عامہ و نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہیں گے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد مختلف اسکیموں اور اہم اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے وزارت کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ تعلیم کے وزیر مملکت جین چودھری اور وزارت کے بہت سے سینئر افسران نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ بعد میں جناب پرہلاد جوشی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری انہیں سونپی۔ جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزارت کی کارکردگی، پالیسیوں اور اقدامات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے فی الحال جائزہ میٹنگیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑا اور اہم محکمہ ہے اور ان کی فوری ترجیح وزارت تعلیم کے پروگراموں اور نئے اقدامات پر عمل درآمد کے پہلے اس کی کارکردگی کو پوری طرح سمجھنا ہے۔
2: آج صبح 4 بجے ہوں، پورا ڈیٹیلس ہم کو دیکھنا ہے، نرنے لینا ہے، اس سب کے بارے میں انفارمیشن لینے کا اور پورا منسٹری سمجھنے کا کوشش میں نے کیا۔ مجھے وشے نیا ہے اور سینئر آفیسر پہ میں نے ڈیٹیل میں بات چیت کرنے کا کوشش کیا ہوں۔ یہ بہت بڑی ڈپارٹمنٹ ہے، اس لیے پورا سمجھ کے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔
10: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کے بہادر سپاہیوں کو یاد کیا۔ انہوں نے شہیدوں اور سپاہیوں کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جناب مودی نے ہر ایک سے کہا کہ وہ ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرے اور ایک محفوظ، باصلاحیت اور خود کفیل بھارت کی تعمیر کے عزم کو مزید مستحکم بنائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت لگاتار نئی اونچائیوں پر پہنچ رہا ہے، خواہ وہ دفاعی ساز و سامان کی تیاری ہو، دفاعی برآمدات ہوں یا دوست ملکوں کے ساتھ سیاسی تعاون۔ جناب مودی نے آج آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 24 جولائی ایک ایسی تاریخ ہے جسے یاد کرنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔
3: آج کارگل وجے دیوس ہے، یہ دن ہمیں گرو سے بھر دیتا ہے، یہ دن ہمیں اپنے ویر جوانوں کے ادبھت ساہس کی یاد دلاتا ہے۔ کارگل کی اونچی اونچی چوٹیاں، کٹھن موسم، دشمن کی چنوتی، ہر پرستھتی ہمارے سینکوں کے سامنے تھی، لیکن ان کا حوصلہ ہر چنوتی سے بڑا تھا۔ انہوں نے ماں بھارتی کی رکشا کے لیے اپنا سروسو ارپت کر دیا۔ آج کارگل وجے دیوس پر میں سبھی ویر شہیدوں اور ویر سینکوں شردا پوروک نمن کرتا ہوں۔
10: جناب مودی نے کہا کہ بھارت اپنی ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں کو لگاتار مضبوط بنا رہا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں INS مہندر گری کو بھارتی بحریہ کے کام کاج میں شامل کیے جانے کا خاص طور پر ذکر کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے اتوار کو وکرم 1 کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے جانے سے ہر بھارتی کا سخر فخر سے بلند ہوا ہے۔ کیچ دی رین مہم کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ 4 جولائی سے ایک خصوصی ملک گیر مہم جاری ہے۔
3: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
10: आज मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर एक भारतीय दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने साइंस ओलंपियाड्स के बारे में भी कहा कि इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। मन की बात के इस नशरिए में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती वागो चटाई का जिक्र किया, जिसे सरकंडों और धान की बालियों से बुना जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वो कश्मीर की वागो चटाई को अपने घरों की जीनत बनाएं। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की गई मूर्तियों के बजाय उन मूर्तियों की पूजा करें जिन्हें गणेश उत्सव के दौरान मुल्क की अपनी मिट्टी से बनाया जाता है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी है। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत के कई तहरीक देने वाले पहलू हैं और एक उस्ताद का रोल उनके दिल के सबसे करीब है। जनाब मोदी ने अपने खिताब का अख्ताम करते हुए योम आज़ादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वो माई गवर्नमेंट पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्यालात और तजवीज़ों से नवाजें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों का एक विकसित भारत की तामीर में अहम रोल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ एक तरक्की याफ्ता भारत की मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं, बल्कि वो इसके सबसे बड़े मुस्तफिदीन भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता गांव एक विकसित भारत की बुनियाद हैं और नौजवानों का इस तसव्वुर को हासिल करने में एक अहम रोल है। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि सरहदी गाँव के बाशिंदों में चैलेंजों के बावजूद वतन परस्ती का एक पुख्ता जज्बा बरकरार रहा है।
11: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
10: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और किसी भी मुजाकरे में पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर पर ही तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इसे भारत का एक अटूट हिस्सा करार दिया, जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। वजीर दिफा लद्दाख के शहर द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी नफरत आमेज कार्रवाई से उसी अंदाज में निपटा जाएगा जो भारत की दिफाई फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेमिसाल बहादुरी के साथ दहशतगर्दों और उनके पुष्तपनाहों के खिलाफ इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत में सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की किसी भी मनफी कार्रवाई का जवाब उसके तसव्वुर से ज्यादा शदीद अंदाज में दे।
0: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ POK पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
10: खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बायस कल ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने मुतअद्दिद अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और मयूरभंज व जगत सिंहपुर जिले में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
12: भारत के महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बाईस कल से ओडिशा से बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक और केउनझार अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवा के तेज दबाव के बाईस मूसलाधार बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने का खदशा जाहिर किया गया है। एहतियात के तौर पर रियासती सरकार ने मयूरभंज और जगत सिंहपुर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज़ को बंद करने का हुक्म दिया गया है। हुकाम ने अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा होने और वसी पैमाने पर पानी भर जाने का इंतबाह दिया है। इसके अलावा समंदरी सरगर्मियों को रोक दिया गया है। तमाम बंदरगाहों पर लोकल कॉशनरी सिग्नल नंबर 3 नस्ब किया गया है और माहीगीरों से अगले अहकाम तक समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
10: ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में एक रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले ग्लासगो में आज दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में भारत के ऋषि कांत सिंह चनम्बम ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 35 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निमटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज, बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
13: दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। रेडियोस्कोप, द नेशनल साइंस मैगजीन प्रोग्राम।
14: जुलाई इज अ पिवोटल मंथ फॉर द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी, a time when we look both outward to the cosmos and inward at the health of our own planet. From the anniversary of the first lunar landing to critical advancements in medical research, environmental advocacy, and the periodic wonders of nature, the scientific calendar this month is packed with milestones. We begin today in space. July 20th marks International Moon Day, a reminder of humanity's persistent curiosity about our nearest celestial neighbor. To mark the occasion, we bring to you an insightful conversation with the director of the Northeastern Space Application Center, NESAC, in Umiam, Meghalaya, Dr. S.P. Agarwal, who oversees the Premier Department of Space Institution and focuses in remote sensing, satellite communication, and disaster management, who talks about moon exploration and its significance.
15: International Moon Day is celebrated on 20th July to commemorate the historic lunar landing in 1969, when Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first humans to set foot on the moon. Today, what is the most exciting things that scientists hope to find when we are revisiting the moon or build on the moon for future generations?
16: Okay, so as you are aware that scientists are very much excited about the moon exploration. If you remember that first moon exploration started by USSR
15: correct.
16: In 1959.
15: Right.
16: And after that, many missions were there. But then recently, after 2007 and 8, things have changed. We are highly excited. You remember our Chandrayaan-1?
15: Yes.
16: When it was launched, we were the first people who identified there is a water molecule on the
15: moon, on the surface,
16: especially moon. In South Pole. So after that only across the globe, the excitement has increased. And then we found there is a possibility of the water.
15: Yes.
16: But the question arises before the scientists is very simple. Like how much water ice is present over the moon mm-hmm. in South Pole,
15: mm-hmm.
16: how much pure water is available,
15: mm-hmm.
16: how easily it can be extracted. Mm-hmm. It may be difficult also.
15: Absolutely.
16: We have to look
15: mm-hmm.
16: into it.
15: Mm-hmm.
16: Then whether it can support permanent human settlement,
15: right.
16: like can be extracted in the form of drinking water, or it can be utilized for oxygen for breathing.
15: Mm-hmm.
16: Because you know that water is having two molecules,
15: right.
16: H2 and O.
15: Right.
16: So there's a possibility. And then also hydrogen, extracting hydrogen and oxygen is very good for rocket fuel.
15: Yes.
16: For future launching to the Mars and other
15: yes.
16: celestial body.
15: Mm.
16: So this is very much exciting point for the scientist. Other most important point is basically building the first permanent habitation on the moon. Laboratories we have to make.
15: Mm-hmm.
16: Then power stations we have to make. Greenhouses we have to make for agriculture, then communication system, then also we have to plan for landing on the moon safely and launching from the moon to the other celestial body.
15: Right.
16: That is also very important. Another important is for socio-economic point of view, and that is mining lunar resources
15: mm-hmm.
16: like iron,
15: mm-hmm.
16: aluminium, silicon, titanium, helium-3 also.
15: Right.
16: You must have heard
15: yes.
16: about it. Which will be very useful for, suppose we are planning for permanent settlement.
15: Mm-hmm.
16: So we can make roads there only,
15: mm-hmm.
16: launching and landing pads, habitat systems we can prepare, and we can have agriculture science. So that's what we are planning, and mm-hmm. scientists are excited about mm-hmm. it.
15: Coming to, there are a lot of feeling among common people that why spend so much India really afford to spend so much on lunar missions when there are so many other things to be done? But aren't there some spin-offs that are really, beneficial to society when we do something like that?
16: Yeah.
15: So studying the moon actually helps improve technology?
16: Yes, you are right. It will help in many ways. For example, when we are planning for the moon, there is a lot of innovations,
15: right.
16: lot of technology we have to develop. Mm. So it will help India. Like developing technology like robotics, advanced
15: right.
16: robotics,
15: right.
16: advanced AI, advanced materials,
15: material
16: like nanomaterials,
15: science, yes.
16: okay, and advanced electronics, which can survive even in -170 or
15: right.
16: -200. So this will really help.
15: Mm.
16: And this is a challenge for us, and this will help. Second important thing is because we have to treat our astronaut there. Many experiment we can do health point of view. You remember recently a lot of astronauts has gone, including our Sumansu Shukla. And they have done some experiment for health also, like muscle regeneration,
15: correct.
16: All these things.
15: Mm.
16: Whatever we are doing there, it will replicate on the Earth.
15: Mm.
16: It will help on the Earth. You are aware that in space, when people start going, there are many spin-off technologies.
15: Yes.
16: One thing I can tell you, the purified water, RO water,
15: mm-hmm.
16: actually initially it was planned for astronauts only during
15: from the
16: so this
15: the
16: kind of
15: right.
16: technology really
15: mm-hmm.
16: now you see in India
15: even Velcro
16: yes you are right,
15: right.
16: even limb also
15: yes
16: so mm-hmm. all these things are scientifically experimented innovated mm-hmm. in the space.
15: Wonderful talking to you, sir, and I'm sure a lot of young boys and girls are going to be so enthused listening to you that some of them certainly will take this up as a career in the future.
16: Thank you.
14: That was an insightful conversation with Dr. S.P. Agarwal, the director of the Northeastern Space Application Center, NASAC, in Umiam, Meghalaya, who talks about the significance of moon exploration and how space technology impacts us right here in our own backyard. Speaking of space, it is impossible to discuss India's scientific journey without honoring the man who made the stars feel within our reach, Dr. APJ Abdul Kalam. Today, we remember the missile man of India on his death anniversary, which falls on 27th July. His vision for a scientifically empowered nation continues to inspire generations, and his legacy remains the bedrock of our modern space and defense aspirations. Born on the 15th of October 1931, on a tiny fishing island of Rameshwaram, APJ Abdul Kalam is an inspiration to many. His first job was at DRDO in 1958, and later in 1969 he moved to ISRO, only to return to DRDO in 1982. While at ISRO, he was the project director of the SLV-3 program and successfully launched the Rohini satellite to low Earth orbit. This one achievement put India in the international stage of space explorers. During his second stint at DRDO, Kalam planned the Integrated Guided Missile Development Program and was responsible for several successful missiles, among which Agni was India's first intermediate-range ballistic missile, borrowing technologies from SLV-3. Prithvi missile was India's next successful surface-to-surface tactical missile. In 2002, Dr. Kalam ascended the highest chair in the country and became the 11th President of the Republic of India. Dr. Kalam's scientific achievements and popularity gained him the epithets of Missile Man and People's President. He loved children and spent a lot of his time during public interactions with talking to children. He would exhort children to be good and successful citizens. Let me quote two of his famous quotes. On fulfilling potential, he said, "All of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents." On the power of education, he would tell students, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." These quotes directly address the inner doubts of children and encourage them towards a life of success and fulfillment, and thereby a successful nation. Moving from the vastness of space to the fragility of our Earth, July 28th is observed globally as World Nature Conservation Day. As we face unprecedented climate shifts, the urgency to protect our environment has never been greater. Joining us now to share his perspective on the future of our planet and what we as citizens must do to safeguard it is environmental expert Dr. Shubhashish Dasgupta, an associate professor and HOD of Environmental Science Department, Captain Williamson Sangma State University, Meghalaya. Talking to him is Dr. Bonnie M. Nicol.
17: So, sir, at the very outset, why World Nature Conservation Day really matters, and what is the essence of celebrating this day?
18: Yeah, the significance of World Nature Conservation Day lies in ensuring that this planet supports healthy ecosystems, so crucial for mankind's survival. It promotes biodiversity conservation, sustainable livelihood, and climate-resilient practices, notwithstanding striking a balance between environmental preservation and country's economic growth. The day acknowledges the interdependence between nature and humans and calls for coordinated action to protect Earth's limited resources.
17: Truly, conservation does not mean we just stop using the gifts of nature, but rather that we use them wisely. It is about understanding, as you said, that the resources we consume every day are, limited, and if we continue to deplete our resources in the form of, even drinking water or maybe overuse of fossil fuels, we will leave behind a barren, broken world for our children and grandchildren. Conservation is, in fact, an investment in our shared future. So, sir, we often hear the phrase nature conservation. How would you explain, about nature conservation? Why today really matters to a young child of 7 to 8 years?
18: Well, it would be our duty to instill a sense of empathy, wonder, and actionable fun. We are to enlighten them about the fact that everything in nature, be it plants or animals, work in tandem. It is through simple examples of how bugs to large-sized animals or herbs to trees are all living in harmony in nature. It is through recitation of adventure stories or visit to places of natural beauty and scenic importance that we can make them familiar with the inalienable link between man and nature.
17: So what is the simplest, biggest threat that we encounter in our local systems, ecosystems at present, that perhaps some people might be blind to?
18: Yes, that's quite a relevant question. According to my approach and perspective on this matter, the single biggest factor posing a threat to all forms of ecosystem today is climate change. The climate has changed, though not always in a conspicuous way, as a result of the anthropogenic activities such as fossil fuel burning, deforestation, pollution, paving the way for rising temperature, greenhouse gas emission, and extreme weather events, not to speak of biodiversity and water scarcity.
17: Well, a lot of people, they feel that individual actions like recycling does not really move the needle against global climate change. So is this really correct, or are they really missing the bigger picture?
18: Now, as the popular saying goes, charity begins at home. So is our individual approach and action. And as I had mentioned in my previous question, inculcating the habit of carrying a cloth bag or a paper bag to the market every day can not only inspire others, but can have snowballing effects. It also demonstrates a strong will

0: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा के आज के इस गरिमामय समारोह में हम भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
1: नमस्कार। In today's prestigious program of the Akhil Bhartiya Ravivasariya Sangeet Sabha, we are going to present a santur recital by India's first female santur maestro, Vidushi Dr. Varsha Agrawal, who is the only Indian female artist of the Sufiana Gharana to achieve international acclaim in santur playing.
0: Dr. Varsha ji ne gayan aur tabla ki shiksha matra 6 varsh ki ayu mein prarambh ki thi aur aage chalkar प्रख्यात तबला वादक पंडित ललित महंत जी से संगीत का गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती हैं।
1: Dr. Varsha ji began her training in vocal music and tabla at the mere age of 6 and later received profound musical guidance from the renowned tabla player Pandit Lalit Mahant ji. She is a Gandaband disciple of the eminent santur maestro Padma Shri Pandit Bhajan Sopori ji. Along with being a top grade artist of All India Radio and Doordarshan, she also holds the proud distinction of being the first female santur player of the country to be invited by the Ministry of External Affairs for santur concerts abroad.
0: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉक्टर वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।
1: Currently serving as a professor of music at the Government Girls PG College of Excellency Ujjain, Dr. Varsha ji has been honored with several national and international accolades, including the First Lady Award by the Honorable President of India and MP Government Shikhar Samman also.
0: Vidushi Varsha Agrawal भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है। संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। अपनी अनवरत साधना, लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। व्हेन हर फिंगर्स डांस ऑन द 100 स्ट्रिंग्स ऑफ संतूर, the listeners are left spellbound. Through her relentless dedication, remarkable command over rhythm and melodious performances on prestigious stages, she has left an indelible mark in the field of santur playing.
0: Vidushi Dr. Varsha Agrawal apne santur vadan ki shuruaat raag jhinjhoti se kar rahi hain. Isme ve aalap, jod aur jhala ki pashchat vilambit gat jo trital mein hai, madhya gat ek taal mein और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित।
1: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रेसाइटल विद राग झिंझोटी। इन दिस आफ्टर द आलाप, जोड़ एंड झाला, शी विल प्रेजेंट अ विलंबित गत इन तीन ताल, अ मध्य गत इन एक ताल एंड अ द्रुतगत इन तीन ताल। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज पंडित हितेंद्र दीक्षित।

0: राग झंझोटी में अभी आपने सुना विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रिसाइटल इन राग झंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस After the alap, she will present a madhyagat in rupak tal and a drutgat in teen tal.

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: That was राग किरवानी presented by विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल is concluding her performance with a melodious धुन based on a मिश्र राग।

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was a melodious धुन based on a मिश्र राग presented by विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was presentation by All India.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
3: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Kargil Vijay Diwas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. The main function of the Kargil Vijay Diwas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India. Indian weightlifter Meerabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow today. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kg in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105 kg in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190 kg. With this victory, Meerabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal in the 2018 and 2022 editions. Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi and Home Minister Amit Shah congratulated Meerabai Chanu on her gold medal victory. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh and Odisha tomorrow. Isolated places of northeastern states are also likely to experience heavy rainfall tomorrow. In Odisha, a deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in the state from tomorrow, with the IMD issuing red alerts for several districts. The sacred Adharapna ritual of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra is being solemnly observed on their respective chariots at Puri in Odisha this evening, drawing thousands of devotees. During this unique post-Rath Yatra ceremony, the Holy Trinity is offered a specially prepared sweet beverage in large earthen pitchers. A massive wildfire in southwest France has forced the evacuation of around 55,000

0: 1,000 more people overnight, taking the total number of residents displaced in the region to nearly 2,20,000. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. Earlier opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है 11:10 और तकरीबन 20 सेकेंड। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त एंड होस्ट तलत। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश पर बेस्ड और जिसमें हम बातें करते हैं, आपकी फरमाइश हम तक पहुंचती है, आपकी फरमाइश के गीत हम आपको सुनवाते हैं और ये सब जब मुमकिन होता है जब आप हमें सुनते हैं और आप हमें ईमेल करते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिए अभी। हमारा ईमेल एड्रेस है iprediodelhi@gmail.com, iprediodelhi@gmail.com हमारा ये ईमेल एड्रेस है जिसके ज़रिए आपकी फरमाइश, आपकी बात, आपकी राय हम तक पहुँचेगी। तो ज़्यादा देर किए बगैर शुरुआत करते हैं इस संगीतमय सफ़र की, इस बेहतरीन गीत के साथ।

आवाज दे रही है ये किसकी नजर मुझे, आवाज दे रही है ये किसकी नजर मुझे, शायद मिले किनारा वहीं डूब कर मुझे, चाहा तुझे तो खुद से मोहब्बत सी हो गई, चाहा तुझे तो खुद से मोहब्बत सी हो गई, खोने के बाद मिल गई अपनी खबर मुझे। कभी कभी ऐसा लोगों के साथ अक्सर हो जाता है कि जब वो ज़्यादा बेखबरी में रहते हैं तब वहाँ उन्हें वो खबर मिल जाती है जिसे सुनने के लिए वो बेताब रहते हैं। ऐसी ही बेखबरी क्या कभी आपकी ज़िंदगी में आई है? कभी वो वक्त आया है कि आप बेखबर थे लेकिन ऐसी खूबसूरत खबर आपने सुन ली जिसे आप सुनने के लिए बेताब थे? आप हमें ये बता सकते हैं ईमेल के ज़रिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ipradiodelhi@gmail.com।

और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश हम तक पहुंच रही है। लगातार आपके मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और वो लोग अपने गीत ज़रूर सुन रहे होंगे जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है। तो जी अब मैसेज शामिल कर लेते हैं फटाफट से। हमारे पास मैसेज आया है रोजी डिकॉस्ट्रा का, और आप हमें सहारनपुर से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं जॉन डिकॉस्ट्रा, पर्ल और विलिस। आपने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है गगनदीप थांडी जी का, और आप हमें मैसेज कर रहे हैं पंजाब से। और आपके साथ हैं तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका वाणी थांडी। और आपकी गीत की फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ नबी हसन ने हमें मैसेज किया है एटा से। आपके साथ हैं शहनाज, मेरे ख्याल से ये शहनाज होगा, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ और राशिद वारसी। सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान ने और सबीहा अंजुम खान ने भी हमें मैसेज किया है। वलीउल्लाह अंसारी का हमारे पास मैसेज आया है पुराना तालाब डुमराव से मैसेज आया है। आपके साथ हैं सुल्ताना अंसारी और असमानाज अंसारी। आपने कहा है कि आपको एक फिल्म आपने बताई है, उसका आपको गीत सुनना है। इंदिरा चौक दिल्ली से हमें मैसेज किया है अजीम वक़ार, माहिला माहिरा अजीम और निशा अजीम ने। कैथल से हमारे पास मैसेज आया है जयवीर सिंह का, और अनिल शर्मा का हमारे पास मैसेज आया है। आपने बहुत सारे नामों की हमें लिस्ट भेजी है, बहुत लंबा वक्त लगेगा, तो जी कोशिश रहेगी कि मैसेज पूरा पढ़ा जाए। संजय ढींगिया जी का हमारे पास मैसेज आया है, साथ ही मैसेज आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जौड़ाव सिटी दीवान का। राजकुमार डूडी जी ने हमें फरमाइश भेजी है हिसार से। आपके साथ है प्रमोद और पुष्पेंद्र कुमार। इसके साथ साथ हमारे पास रियासत हुसैन जी का मैसेज आया है जसपुर उत्तराखंड से, और हर बार की तरह, हर रोज़ की तरह इस बार भी बहुत सारे मैसेजेस आपके हमारे पास पहुँचे हैं। आपके साथ है माहिरा नूर, समरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, रियाज, रिफाकत, निज़ामा बेगम, और आपका मैसेज हम तक पहुंच चुका है। तो सुनते हैं आपकी ही फरमाइश का एक गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और अब मेरी नज़रों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज है और दिल को छू लेने वाला मैसेज है। ये मैसेज है आज के विजय दिवस पर, और इस मैसेज को लिखने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। आप हमें कालका से मैसेज कर रहे हैं और आपने मैसेज किया है कि जब हमें एक छोटी सी भी खरोच लगती है तो बहुत दर्द होता है और उससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, एक मरहम की तलाश करते हैं और थोड़ी ही देर में सब कुछ भूल कर, उस हर चीज़ को भूल कर उस छोटे से घाव के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन देश के सैनिक हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। उनका जीवन त्याग, अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा की उनकी जो सर्वोच्च परिभाषा है, वो एक सैनिक का बलिदान है। वाकई में उनकी जो वर्दी है, आपने कहा है कि उसका सम्मान करना चाहिए, और उनका जो बलिदान है वो अटूट प्रेम का प्रतीक है जो कि उनका देश के प्रति होता है। हमें सदैव निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। बहुत खूबसूरत आपने मैसेज लिखा है, आपने एक इंसिडेंट भी बताया है कि आज आपने एक साइन बोर्ड भी देखा, उस पर ये लिखा था कि मेरे पास केवल एक जीवन है, या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और बिल्कुल बिल्कुल ये अल्फाज जो हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के थे, जिन्होंने जाबाजी के साथ करगिल युद्ध में आगे बढ़कर अपने जीवन का बलिदान दिया और वो शहीद हुए, और आज हम उन चोटियों पर तिरंगा फहरा देख सकते हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त जज्बा होता है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा देता है अपने देश के लिए, हैं उस जज्बे को सलाम हमारी तरफ से, हमारे सभी सुनने वालों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से।

इसके साथ ही डुमराव से हमारे पास मैसेज आया है लड्डू अंसारी, आमना परवीन और टुक टुक अंसारी का, आप भी विजय दिवस पर शहीदों को प्रणाम कर रही हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास अगला मैसेज आया है पंचकुला से, और लिखने वाले हैं आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग। आपने एक गीत की फरमाइश की थी और इत्तेफाक देखिए कि आपकी फरमाइश पूरी हो भी गई है। हमारे पास अगला मैसेज आया है इंद्रभान सिंह का, और आप भी विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके साथ साथ प्रकाश वर्मा ने हमें मैसेज किया है, और मैसेज हमारे पास आया है हाजी मजहर का, और आप कह रहे हैं कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। इसके साथ अब्दुल गफ्फार ने हमें मैसेज किया है, आप कह रहे हैं कि किसी भी गीत में शामिल करें। रमेश कुमार ने हमें मैसेज किया है और आपने भी एक गीत की फरमाइश की है, उम्मीद है कि आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे। प्रवीण ने हमें प्रवीण चौहान ने हमें मैसेज किया है, और आप हमें मध्य प्रदेश खरगांव से मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ हमारे पास मैसेज आया है वसंत कुमार सिन्हा जी का, और आपने हमें मैसेज किया है कहाँ से, आप हमें कलकत्ता से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं रेखा, बसंत, रिमी और अजय कुमार गुप्ता, और साथ में है अन्विका और तनुश्री गुप्ता भी। कौशल्या जोशी ने हमें मैसेज किया है चंद्रनगर सहारनपुर से, आपके साथ हैं सुरेश जोशी और सोनाली जोशी। अहमद बागवान ने हमें मैसेज किया है महाराष्ट्र से, और जगमोहन सिंह का भी मैसेज हम तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ पटना बिहार से हमारे पास मैसेज आया है वसीम अकरम, साले खातून का और सतीश अनेजा का। हमारे पास मैसेज आया है चंडीगढ़ से, आपके साथ हैं बिमला अनेजा, और एसएम जावेद ने हमें मैसेज किया है गुमला झारखंड से, आपके साथ हैं शगुफ्ता। और दिनेश वर्मा का हमारे पास मैसेज आ चुका है। इसके साथ साथ मैसेज आए हैं हमारे पास, ये बहुत सारे जो मैसेजेस आ जाते हैं एक ही शख्स के, इससे बड़ी मुश्किल होती है, तो प्लीज़ हमारी मुश्किल ज़रा आसान कीजिए, ऐसे ना किया करें। रजी शर्मा का हमारे पास मैसेज आया है, इसके साथ साथ गुरमीत सिंह का मैसेज है साउथ एक्सटेंशन से, तो सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

और अब वक्त जो है वो काफ़ी हद तक टाटा कहने के लिए तैयार है, तो लेते हैं और भी मैसेजेस। हमारे पास संजय ढींगिया का मैसेज आया है, इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है माफ़ कीजिएगा, ये मैसेज हमारे पास आया है अल्पा जैन, प्रमिला जैन और अदिति जैन, अजीत जैन का। आपने हमें कहाँ से मैसेज किया है या आपने नहीं लिखा है। इसके साथ मैसेज आया हमारे पास अकरम हुसैन प्रिंस का, सीतामढ़ी बिहार से। हिमकेश्वर साहू ने हमें मैसेज किया है। इसके साथ बिट्टू गगनीजा का हमारे पास मैसेज आया है जलालाबाद वेस्ट से। आपके साथ हैं सुरेश गगनीजा और पूनम गगनीजा, विशाल गगनीजा, प्रियदर्शनी गगनीजा आपके साथ हैं। साथ साथ राजेश वर्मा का हमारे पास मैसेज आया है उत्तर प्रदेश से, राजेश शर्मा के साथ साथ मैसेज आया है सुदर्शन शाह का, और मैसेज हमारे पास आया है पूनम गगनेजा का। और महेंद्र प्रसाद मोदी ने हमें मैसेज किया है, आपने गीत की फरमाइश की है तो उम्मीद है कि आप सुन रहे होंगे कार्यक्रम, आपकी फरमाइश ज़रूर सुनेंगे। आप हमें रामगढ़ कैंट से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं ठाकुर साहब। जगमोहन सिंह ने हमें मैसेज किया है और साथ में निसार अली का भी मैसेज हमारे पास आया है, आपने कहा है एनी सॉन्ग। इसके साथ साथ पी एस नवहानकर का हमारे पास मैसेज पहुंच चुका है, आर कुमार ने हमें मैसेज किया है पंजाब खेड़ा से, आपके साथ है मिंटू थॉमस और पिंकी। मैसेज आया है दिग्दर्शन गौड़ का, शोभापुर से, मेरठ से हमारे पास मैसेज आया है, कविता गौड़ आपके साथ हैं। इसके साथ मुफ्ती अली, माजिद अली मुफ्ती का मैसेज आया है और आप हमें J&K से मैसेज कर रहे हैं। आपने बताया है कि आपका इस कार्यक्रम में ये पहला मैसेज है, तो जी बहुत शुक्रिया कि आपने कार्यक्रम सुना भी, पसंद भी किया और मैसेज भी किया। और हम उम्मीद करते हैं आपके मैसेजेस हम तक पहुंचते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे आकाशवाणी। मैसेज हमारे पास आया है भूषण खेरा का और बहुत खूबसूरत आपने मैसेज किया है भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बतों के लिए। आपके साथ हैं विशाल खेड़ा, विशु, और आप शालिनी खेड़ा भी आपके साथ हैं और वाणी खेड़ा आपके साथ हैं, और आप जो हैं आप एक गीत सुनना चाहते हैं, तो कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। जनाब मुकेश भट्टा ने हमें मैसेज किया है और सुनते ही बहुत खूबसूरत सा गीत जिसकी फरमाइश हम तक पहुंची है।

काश ऐसा ही कुछ मैं घड़ी से कह पाती कि प्लीज़ तुम सुइयों ज़्यादा आगे ना बढ़ो, काबू में रहो, मुझे कार्यक्रम पूरा करना है और बहुत देर तक अपने श्रोताओं से बात करनी है, अपने दोस्तों से बात करनी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुमकिन नहीं होती, ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं। हमारे पास अगला मैसेज है नासिर शेख का और अमरिंदर सिंह का मैसेज हमारे पास आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी तारीफ़ के लिए, बहुत शुक्रिया आप हमें इंदौर से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं आयांश देव और सुनीता सिंह। आपकी फरमाइश पूरी करने का इस वक्त तो वक्त नहीं है, लेकिन हाँ फिर कभी ज़रूर पूरी की जाएगी। प्रकाश गोगिया ने हमें मैसेज किया है, इसके साथ साथ अनिल, माफ़ कीजिएगा, अरुण कुमार पांडे का मैसेज हमारे पास आया है और मैसेज हमारे पास है मंटू शर्मा का। आपका नाम, आपका तो मैसेज मुझे अभी मिला है, मैंने आपको कहाँ इग्नोर कर दिया। आप हमें हनुमानगढ़ राजस्थान से मैसेज कर रहे हैं और मैसेज हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी का, आपके साथ है अनीता मुखी और सिमरन मुखी।

अब इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त तलत को दीजिए इजाजत, फिर कभी मुलाकात होगी, न जाने कब होगी, लेकिन हाँ जल्द होगी। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी।

0: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नासिक में बागलन तालुका में सिंचाई पंप चलाते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में 2 अन्य लोग घायल हो गए। निफाड़ तालुका के नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के कारण 429 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4था राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा
2: Union Minister Pralhad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का
4: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी फ्रेंड्स आवर इंटेंशन इज क्लियर देर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट पीओके विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान
3: जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया
2: The Defence Minister was addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85-kilogram in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105-kilogram in the clean and jerk, another Games record to finish with a total of 190-kilogram. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also bagged the yellow medal in the 2018 and 2022 editions. Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi and Home Minister Amit Shah congratulated Mirabai Chanu on her gold medal victory. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. On the instructions of Chief Minister Rekha Gupta, Lata Gupta has been named chairperson of the Delhi Commission for Women, while Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission. Chief Minister Rekha Gupta stated that these initiatives aim to enhance the protection of women's rights, support their empowerment, ensure the welfare of minority communities, and safeguard their constitutional rights. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh and Odisha today. Isolated places of northeastern states are also likely to experience heavy rainfall today. In Odisha, a deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in the state from tomorrow, with the IMD issuing red alerts for several districts. In men's cricket, India defeated hosts Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. Earlier, opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
5: ये

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम शुरू का सफ़रनामा इस खास प्रोग्राम को लेकर मैं हूं आज आपके साथ तरन्नुम जहां। कबूल कीजिए प्यार भरा आदाब, नमस्कार। और साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज़ की जिसमें नाजुक मखमली एहसास भी था और ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई का दर्द भी। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी चुलबुली आवाज़ जिसने मोहब्बत के नए मायने दिए, खामोशी को भी नगमा बना दिया। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है गीतों की मल्लिका गीता दत्त को। आइए इस सुहाने सफ़र की शुरुआत करते हैं उनके उस खूबसूरत नगमों के साथ जिसने 1950 के दशक में हर दिल को थिरकने पर मजबूर कर दिया था। कहते हैं ना कि तदबीर से तो बिगड़ी हुई तकदीर बन ही जाती है, और कुछ ऐसा ही अंदाज था गीता दत्त का उनकी जिंदगी में।

आवाज की खनक ही ऐसी थी कि बंद कमरे में भी धूप खिल जाए। जी हाँ, 23 नवंबर 1930 को बांग्लादेश के एक छोटे से गांव इडिलपुर में जन्मी गीता घोष रॉय चौधरी, इन्होंने अपना नाम इस तरह ऊंचा नहीं किया। वो इनके पीछे भी बहुत मेहनत है। और कहा जाता है कि जब ये मुंबई आई तो किसे पता था कि ये छोटी सी बच्ची भारतीय

सिनेमा के संगीत का इतिहास ही बदलने वाली है। एक समृद्ध और प्रतिष्ठित बंगाली जमींदार परिवार से ये ताल्लुक रखती थी। कुल 10 भाई बहन के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाना, अपनी एक अलग कहते हैं दुनिया में मुकाम हासिल करना एक बहुत बड़ी बात थी। परिवार में कला और संस्कृति का पूरा माहौल बना हुआ था और कहते हैं ना कि ये उनकी विरासत में उनको मिली थी कला, कि जिसमें उनकी गायन शैली पर भी प्रभाव पड़ा और वो कहते हैं उनका रुझान जो है गाने की तरफ बढ़ता गया। 1940 के दशक की शुरुआत की बात करें तो देश के विभाजन में उनको अपने परिवार, अपनी ज़मीन जायदाद, अपना घर बार सब कुछ छाड़ कर कोलकाता आकर बसना पड़ा था। और इसके बाद 1942 में जब गीता लगभग 12 वर्ष की थी तब उनका पूरा परिवार जो है वो मुंबई की तरफ पलायन कर गया और बम्बई में दादर इलाके में आकर बस गए थे ये लोग। मुंबई आने के बाद उन्होंने बंगाली हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा जारी की और संगीत की ओर पहला कदम बढ़ाया। कहते हैं कि उनकी बचपन से ही जो रुचि थी वो गायन में थी, क्योंकि उनका स्वभाव भी मिठास भरा था और उनकी आवाज़ में खनक थी।

हाँ, गीता दत्त की आज हम बात कर रहे हैं, और बहुत कम लोग ही जानते हैं कि गीता दत्त का असली नाम जो था वो गीता घोष रॉय चौधरी था। हिंदी और बंगाली सिनेमा की एक महान प्लेबैक सिंगर थी हैं, और उनकी भावपूर्ण और जो बहुमुखी आवाज़ है, जो चंचलता है, और कहते हैं कि आवाज़ में इतना जादू था कि उन्होंने 1940 और 50 के दशक में भारतीय संगीत के उद्योग पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। कहते हैं कि अधिकतर ज़्यादातर फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज़ दी। 1946 में जब मुंबई में एक दिन जब वो अपने घर पर रियाज कर रही थी, तो संगीतकार हनुमान प्रसाद ने 16 वर्षीय गीता को दादर में अपने घर की बालकनी में गुनगुनाते हुए सुना, और जब उनको गुनगुनाते हुए उन्होंने सुना तो उनकी गायकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गीता को संगीत की ट्रेनिंग देनी भी स्टार्ट कर दी, और कहते हैं कि वो उनके गुरु बने और फिल्मी दुनिया में लाने में उनका पूरा पूरा सहयोग मिला। 1946 में फिल्म भक्त प्रहलाद से गीता दत्त ने गाना शुरू किया, और कहते हैं कि ये शुरुआत ही थी कि जिसने गीता दत्त को एक ऊंचाई पर पहुंचाया, और कहते हैं कि इसमें इन्होंने जो गाया है और जो आवाज़ दी अपनी, इन्होंने पहले कुछ गीतों में कुछ बहुत कम ही आवाज़ इनके सुनने को मिली, लेकिन शुरुआत फिल्म भक्त प्रहलाद से तो हुई, लेकिन ये उसके बाद कभी नहीं रुकी, और इनकी आवाज़ का जादू हर फिल्म में चलने लगा। और बहुत कुछ ऐसा जानेंगे हम, और साथ ही साथ गीता दत्त को भी सुनेंगे और गीता दत्त की आवाज़ को भी सुनेंगे।

बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाली गीता की प्रतिभा को संगीतकार हनुमान प्रसाद ने तो पहचाना ही, साथ ही साथ उसे सवारा भी और उनकी गायकी को पहला मौका दिया। लेकिन हनुमान प्रसाद जी ने जब पहली बार गीता जी को गाते हुए सुना तो उन्हें लगा कि इस आवाज़ में एक अलग सा जादू है। एक कहते हैं ना कि उनकी खनकती हुई आवाज़ का जादू वो पूरी दुनिया को सुनाना चाहते थे। लेकिन किस्मत का जो दरवाज़ा, असली दरवाज़ा खटखटाया SD बर्मन ने, और 1947 में एक फिल्म आई थी दो भाई, इसमें गीता दत्त को गाने का मौका मिला, SD बर्मन साहब ने दिया, और इस फिल्म में एक गीत गाया गीता दत्त ने, मेरा सुंदर सपना बीत गया। और इस गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे इस गीत को ही सुनते हैं, आइए, और जो मैं कह नहीं पा रही उसको भी आप एहसास करके ज़रूर देखिए, ज़रूर महसूस करिए।

गीता दत्त की इस करुणामय भरी आवाज़ जो है, दर्द भरी आवाज़, हर मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत एक तरह की रूहानी सुकून देने के लिए बनी हुई थी। और कहते हैं ना कि ऐसे दर्द भरे गीत जब भी वो गाती थी तो सुनने वालों के दिल में एक एहसास जगाता था, एक प्रेम का उमड़ पड़ता था। और कह सकते हैं कि हर उस इंसान के दर्द की आवाज़ थी गीता दत्त और उनके गाए हुए ये बेशुमार गीत। जी हाँ, जब भी वो करुणा रस के भजनों को गाती थीं, और कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में गीता दत्त को गंभीर गायकी के लिए ही जाना जाता था क्योंकि उनको गाने ही ऐसे मिलते थे। और लेकिन उनकी जो असली पहचान बनी वो आई ओपी नैयर साहब ने, जब गीता दत्त की आवाज़ को पहचाना, उनके पहलुओं को निखारा, और जो चुलबुलापन था गीता दत्त में उसको वो निखारना चाहते थे। और एक मॉडर्न गीता दत्त जिसकी बेफिक्र अदा थी और वो दुनिया के सामने उसकी आवाज़ में भी लाना चाहते थे, और उनको बहुत सारी फिल्मों में गाने का मौका दिया, उनके लिए कई गीत बने, फिल्में भी ऐसी बनी जिसमें गीता दत्त की आवाज़ को जो है पहचान मिलनी चाहिए। और 1954 में आई थी फिल्म आर पार, इसके गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए गए, जिसमें बाबूजी धीरे चलना हो या फिर हावड़ा ब्रिज का मेरा नाम चिन चिन च्यू, या फिर कह सकते हैं कि गीता दत्त जी ने ये साबित कर दिया कि वो हर रंग के मिजाज को अपना सकती हैं, हर रंग में ढल सकती हैं, हर रंग के गायकी को आपके सामने ला सकती हैं। जी हाँ, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कई गीत गाए और इन्हीं गीतों को आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे।

किधर गया जी। 1940 और 50 के दशक में गीता दत्त का जादू चल ही रहा था और कई फिल्मों में उन्होंने गाना गाया और बहुत सारी फिल्म जो है उनके निर्देशक गुरुदत्त भी रहे। फिल्म बाजी के सेट पर गीता जी से मुलाकात हुई थी युवा निर्देशक गुरुदत्त से। जी हाँ, दोनों में प्यार हुआ, 1953 में शादी हो गई। गुरुदत्त की फिल्मों ने गीता जी की गायकी को एक नया मोड़ दिया, एक नया दर्शन दिया कह सकते हैं, और उनके जो लिखे हुए गीत थे उसमें एक अलग तरह की फिलॉसफी भी थी ज़िंदगी की, और उसमें गीता दत्त की दर्द भरी जो आवाज़ थी उसका जादू तो चल ही रहा था। और कहते हैं कि प्यासा और कागज़ के फूल जैसी फिल्मों में उन्होंने जिस दर्द से गाया, जिस गहराई से गाया, वो आज भी सुनने वालों के रूह तक पहुंचती है उनकी ये आवाज़। जब वो गाती थी, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, तो ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी का पूरा फलसफा जो है वो इस दो लाइनों के बीच ही समा कर रह गया है। और जब बात हो रही है ज़िंदगी के इस फलसफे की जिसमें गीता दत्त की गहराई को हम तक पहुंचाया और उनकी आवाज़ का जादू इस तरह चला कि हम उनके गीतों से ही अपने ज़िंदगी के सारे मायने सीखते चले जाते हैं, अपने ज़िंदगी के हर उस मोड़ पर, हर उस पैमाने पर कहीं ना कहीं गीता दत्त का गाया हुआ कोई ना कोई एक गीत जो है हमारे दिल को उस समय छू लेता है, मरहम देता है, सुकून देता है।

गीता दत्त हिंदी सिनेमा की एक प्रतिभावान और प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर थी, जिसमें जिनकी आवाज़ में कमाल का जादू था, ताजगी थी, चुलबुलापन था। और गीता दत्त जो है वो मुख्य रूप से गायिका के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ फिल्मों में उन्होंने अदाकारी भी की थी। बाजी जो 1951 में आई थी, इस फिल्म में गीता दत्त ने एक गीत गाया, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। इसमें गीता दत्त ने कह सकते हैं कि इस गीत ने ही करियर की एक नई ऊंचाई जो है गीता दत्त को दी है, और जिसमें उन्होंने एक चुलबुले वेस्टर्न स्टाइल में गीत गाया, और इस गीत को इस तरह की स्टाइल कह सकते हैं कि इस स्टाइल को एक अलग पहचान भी दी। आर पार आई थी 1954 में, इसमें गुरुदत्त की इस सुपरहिट फिल्म में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी ये, और उनके गाए गीतों में भी भारतीय संगीत उद्योग में तहलका मचा दिया था जब गीता दत्त ने इस फिल्म में गीत गाया। 1955 में आई थी मिस्टर एंड मिसेस 55, इसमें गीता दत्त ने जो है गाया, क्लासिकल कॉमेडी एक फिल्म थी, और इसमें जो गाने थे वो गीता दत्त की आवाज़ में वो बहुत ही बहुमुखी गायिकी के रूप में सामने आई थी। और प्यासा में तो उन्होंने जो दर्द भरे गीत गाए, कहते हैं कि हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी प्यासा, जो 1957 में आई थी। और इसमें जो गीता दत्त के गाए हुए सभी गाने हैं वो बहुत ही गहराई वाले हैं, बहुत ही भावपूर्ण हैं, बहुत ही रूहानी कह सकते हैं कि जिन्होंने एक रूह तक पहुंचने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो गीता दत्त ने गाए हैं, और गीता दत्त की आवाज़ में जो एक रूहानी ताकत है, वो इन गीतों को सुनकर वो कहीं ना कहीं वो ताकत जो है हम भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उससे जोड़ सकते हैं, अपने दर्द को उनके दर्द भरी आवाज़ के साथ जोड़कर जो दर्द महसूस किया जाता है उसमें ये निखर कर आता है कि कितनी भी ज़िंदगी में परेशानी हो, कितनी भी ज़िंदगी के कह सकते हैं कि दुखों के बादल छाए हुए हों, वहाँ पर आप ही उस बादलों को हटाकर, उस अंधेरे को हटाकर रोशनी पैदा कर सकते हैं। और कहते हैं कि इस आवाज़ का जादू इतना था कि उस समय भी जितने भी लोग मोहब्बत करने वाले हैं उन्होंने एक तरह का रूहानी अंदाज, रूहानी ताकत महसूस की गीता दत्त की आवाज़ को सुनकर। तो इस रूहानी ताकत को आज हम फिर से महसूस करेंगे। आइए सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत।

1962 में फिल्माई साहिब बीबी और गुलाम। जी हाँ, मीना कुमारी के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन गाने गाए इस फिल्म में। और एक और गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, न जाओ सैयां छुड़ा के भैया। कहते हैं कि इसमें जो भी आवाज़ गीता दत्त ने मीना कुमारी को दी, इसमें मीना कुमारी और गीता दत्त की आवाज़ इतनी ज़्यादा मेल खा गई कि ऐसा लगता था कि जैसे ये दर्द भरी रूहानी गीत जो है वो मीना कुमारी की आवाज़ से ही है। मीना कुमारी जब पर्दे पर ये इस गीता दत्त ने इनको मीना कुमारी को आवाज़ दी तो ऐसा लगता था कि जैसे मीना कुमारी की ही ये दर्द भरी आवाज़ निकल रही है। एक तो अदाकारी मीना कुमारी की और उसमें दर्द भरे गीत गीता दत्त के, बेमेल जोड़। और इसके बाद भी बहुत सारी फिल्में आई थी। कहते हैं इससे पहले फिल्म आई थी कागज़ के फूल जो 1959 में आई थी, और इसमें एक तरह से गंभीर क्लासिक फिल्म में जो उनका दर्द था, इनके दर्द भरे जो गीत थे वो कागज़ के फूल में भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से इन गीतों को गाया। और बंगाली फिल्मों में भी इन्होंने बहुत काम किया। 1967 में एक फिल्म आई थी बधू बरन, इस फिल्म में इन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अभिनय भी किया। गीता दत्त ने फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया गीतों को गाकर, लेकिन बहुत कम लोग भी जानते हैं कि इन्होंने कुछ कुछ फिल्मों में काम भी किया, अदाकारी भी की। एक तो गीता दत्त ने अनुभव फिल्म में भी काम किया। उन्होंने 1971 में आई इस फिल्म में उन्होंने एक गाना गाया जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और आइए सुनते हैं वो गीत।

जी हाँ साथियों, फिल्म अनुभव के लिए ये जो गीत आप सुन रहे थे, मेरी जा मुझे जा न कहो, ये उनका गाया अंतिम गीत था। और आज भी उनकी मखमली आवाज़ का जो जादू है वो ये बयां करता है कि ताऊ उम्र इनकी जो गायकी है वो हमारे दिल में राज करेगी। बहुत सारे गाने हैं, बाबूजी धीरे चलने चलना, इस गीत का चुलबुलापन हो, या वक्त ने किया हसी सितम, इसकी मखमली आवाज़ हो, उदासी हो, गीत जी ने हर एक जज्बात को अमर कर दिया है। और चुलबुलेपन की हम जब बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन गाने भी उन्होंने गाए जो आज भी हम बहुत याद करते हैं। और कार्यक्रम के अंतिम छोर तक तो हम पहुंच ही गए हैं, लेकिन उनके गीतों की जो फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी है। और बस उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव पे इस गीत के साथ आप जो है इस कार्यक्रम से तो विदा लेंगे ही, लेकिन इनको इनके गीतों को ज़रूर सुनिए और खंगालिए और महसूस कीजिए। आइए सुनिए गीता दत्त की आवाज़ में गाया हुआ ये खूबसूरत गीत, और कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की भी इजाज़त दीजिए। और कहते हैं ना कि गीता दत्त के जो गाने हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे आज भी हमारे दिलों में।

0: साथियों, गीता दत्त की आज हम बात कर रहे थे और कहते हैं कि गीता दत्त ने जब गायकी में अपना हुनर आजमाया तो देवमर्मन और ओपी नैयर जैसे कई महान दिग्गज संगीतकारों को भी अपनी खास अदा से सजाकर उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को बहुत से खुशनुमा गाने दिए, बहुत से रूहानी गाने दिए। और कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाता है, इंसान चले जाते हैं, लेकिन रह जाती हैं उनकी यादें और उनकी कला। जी हाँ, गीता दत्त जैसी मखमली आवाज़ें कभी भी खामोश नहीं होती। जब भी दिल में मोहब्बत धड़केगा, दिल में रूहानी एक मासूमियत महकेगी, तो पुराने गाने, पुराने दिनों की ये आवाज़ फिर से महक उठेगी और फिज़ाओं में यूं ही गूंजती रहेगी। वक्त के पन्नों पर अंकित सुरों की ये महफिल अब यहीं सिमटती है, लेकिन गीता दत्त जी की जो आवाज़ है, उनकी भीनी भीनी जो मिठास है, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। सरों का सफ़रनामा कार्यक्रम और यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी तरन्नुम जहाँ को दीजिए इजाज़त। अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपा कर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक युवक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये प्रतिबंधित मादक पदार्थ इस महीने की 21 से 25 तारीख के बीच मुंबई और कल्याण में रोके गए 3 अंतर्राष्ट्रीय डाक पार्सल से बरामद किया गया। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है और कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीविका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amritlal Meena are also part of the task force. In a video

आप सुन रहे पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सुनहरे। आइए सुनते हैं अगला गीत और लेते हैं आनंद, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

अभी आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत गीत जिसको लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, और ये जो गीत है फिल्म मेरे हुजूर से। आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में और साथ हैं महेंद्र कपूर।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हमराज से ये खूबसूरत गीत, और पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सुनहरे में आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आरजू से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई

0: पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रीन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नासिक के बागलन तालुका में सिंचाई पंप चलाते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में 2 अन्य लोग घायल हो गए। निफाड़ तालुका के नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के कारण 429 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
0: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
2: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Union Cabinet had approved a draft bill on Friday to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का
4: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी फ्रेंड्स आवर इंटेंशन इज क्लियर देर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट पीओके विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान
3: जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया।
2: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. In Germany, the suspect in the deadly Berlin Pride attack claiming one life and injuring 29 was shot dead by the police in a city suburb. The suspect, identified as Abdul Balot, a German citizen with Lebanese roots, was killed following a nearly 24-hour search after the downtown Berlin attack. Berlin prosecutors added that the suspect had previously sought to join the militant Islamic State group. Indian weightlifter Meerabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kilograms in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105 kilograms in the clean and jerk, another Games record to finish with a total of 190 kilograms. With this victory, Meerabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games medal. Vice President C.P. Radhakrishnan, PM Modi and Home Minister Amit Shah congratulated Meerabai Chanu on her gold medal victory. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. Early opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे 1990 के दशक के कुछ चुनिंदा गीत।

0: और इसी खूबसूरत गीत के साथ मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम गीत बहार, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व IB निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, IIT मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। NCB ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सेखम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सी.वी. राधाकृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री राधाकृष्ण ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4था राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि इस शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms, headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amritlal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
3: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Union Cabinet had approved a draft bill on Friday to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
4: India has the capacity to respond to every misadventure of Pakistan in a manner far more severe than its imagination, and I want to give this clear message from this platform. This will be the consequence of every single misadventure aimed at India's sovereignty. Friends, our intention is clear. There will be no talks with Pakistan, and if there are talks, they will only be about POK, which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan.
3: The defense minister said this while addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. On the instruction of Chief Minister Rekha Gupta, Lata Gupta has been appointed chairperson of the Delhi Commission for Women, while Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission. A deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in Odisha from today, with the India Meteorological Department issuing red alerts for several districts. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centres in Mayurbhanj and Jagat Singhpur districts. Maritime operations have also been suspended and fishermen have been advised not to venture into the sea. In Germany, the suspect in the deadly Berlin Pride attack, claiming one life and injuring 29, was shot dead by the police in a city suburb. The suspect, identified as Abdul Baloth, a German citizen with Lebanese roots, was killed following a nearly 24-hour search after the downtown Berlin attack. Berlin prosecutors added that the suspect had previously sought to join the militant Islamic State group. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85-kilogram in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105-kilogram in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190-kilogram. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal. And that is the end of this news bulletin.
0: जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मेहदी हसन की आवाज़ में ये गजल दिल की बात।

0: मेहदी हसन की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ ही आज का गज़लों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुति भक्ति संगीत का प्रातकालीन कार्यक्रम अर्चना।

भक्ति संगीत के प्रातकालीन अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं धर्मपुरम पी स्वामीनाथन और साथियों द्वारा प्रस्तुत गुरु ज्ञान संबंधर की रचना।

ओलिविया, जे आ चाम राजा वाडियार की रचना सुनी। स्वर सीता लक्ष्मी वेंकटेशन और नीला राम गोपाल का है।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पी के गोविंद राव के स्वर में पुरंदर दास का देवरनामा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: अभी आपने सुना भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 में हैं। लीजिए अब सुने कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन। कलाकार हैं पोन कुन्नन रामचंद्रन। आपने प्रस्तुत किया है राग मध्यमती जो आदि ताल में निबद्ध है। संगीत दिया है स्वाति तिरुनाल ने और मृदंगम पर संगत किया है कुझल मन्नम KG रामकृष्णन ने।

नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे गायन पून कुन्नम रामचंद्रन का। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए आप सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब तो कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें।

5 बजकर 20 मिनट का समय रहेगा देशभक्ति संगीत का। 5:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम स्वर रंजनी। बजकर 10 मिनट पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का समय रहेगा 6:40 मिनट और आज आप सुनेंगे चाणक्य के विचार। 6:45 मिनट पर सुनिएगा रामचरितमानस से पाठ। आज आप सुन सकेंगे बालकांड का भाग 129। 6:25 मिनट पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

अब बजकर 10 मिनट पर सुनिएगा संगीतिका। आज आप सुनेंगी संचेता रॉय से द्विजेंद्र गीत। 7:30 बजे सुनिएगा गीतों भरी कहानी। क्षमा कीजिए, गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आठ बजकर 45 मिनट का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे उदय कुमार मलिक का गाया राग ललित। 9:15 पर अवर गेस्ट ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

0: 9:30 सुनेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी हरजीत कौर। 10:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां का। उसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सबरस। 11:30 सुनेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सितार वादन, कलाकार होंगे सलीम अहमद। आप प्रस्तुत करेंगे राग गुर्जरी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए तथा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीना भी कार्यबल का हिस्सा है। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जर्मनी में बर्लिन प्राइड फेस्टिवल में हुए घातक हमले के संदिग्ध को पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके में मार गिराया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। संदिग्ध की पहचान अब्दुल बल्लौत के रूप में हुई, जो लेबनानी मूल का एक जर्मन नागरिक है। बर्लिन शहर के बीचों बीच हुए इस हमले के बाद लगभग 24 घंटे की तलाशी अभियान के बाद उसे मार गिराया गया। बर्लिन के अभियोजकों ने बताया कि संदिग्ध ने पहले आतंकवादी इस्लामिक स्टेट समूह में शामिल होने की कोशिश की थी। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रेडेंस ने इससे पहले प्राइड फेस्टिवल के पास वैन से लोगों को कुचलने और चाकू मारने की घटना को संदिग्ध आतंकी हमला बताया था। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग

0: सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जागी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीति को मौका दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के ठिकानों पर ईरानी हमलों में जॉर्डन में 3 और इराक में 1 अमेरिकी सैनिक की मौत हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल खेल पदक जीतने पर वह भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Pralhad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan. The Defence Minister said this while addressing the 27th Kargil Vijay Diwas celebrations at Dras in Ladakh yesterday. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. Lata Gupta has been named chairperson of the Delhi Commission for Women with Shyam Bala, Malti Verma, Lata Sodhi, Sanrika Sharma Jha and Renu Bhalla appointed as members. Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission with Kuldeep Singh and Mohammad Haroon as members. Chief Minister Rekha Gupta stated that these initiatives aim to enhance the protection of women's rights, support their empowerment, ensure the welfare of minority communities, and safeguard their constitutional rights. A deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in Odisha from today, with the India Meteorological Department issuing red alerts for several districts. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centers in Mayurbhanj and Jagatsinghpur districts. Maritime operations have also been suspended and fishermen have been advised not to venture into the sea. US and Iran have paused attacks for a second straight day, raising hopes of renewed negotiations on an interim ceasefire after nearly 2 weeks of escalating military action. US Ambassador to the UN, Mike Walls, said yesterday, President Trump is giving diplomacy space, noting that Oman, Iran and other negotiators have been engaged in talks at all levels in recent weeks. Walls also dismissed suggestions that the US is running low on interceptor missiles used to defend against Iranian attacks. An Iranian army spokesperson yesterday said that Tehran halted retaliatory attacks in the region in response. Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kg in the snatch to set a CWG record in the category. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर सुबह के 5:10 में हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।
1: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें, इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के 1 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन 3 शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की

0: हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्र आसन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्ध मत्स्येन्द्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्धमत्स्येन्द्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है। मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्धमत्स्येन्द्र आसन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्धमत्स्येन्द्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं गायन, कलाकार हैं नदीम अहमद खान। आपने प्रस्तुत किया है राग अल्हैया बिलावल।